श्री राम के हाथों जब पल भर में शिवजी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्ग लोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देव लोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हो आया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे, किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो, हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिक पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे ए हरिहरन। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण, लता मंगेशकर के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ देर बाद यानी कि सुबह के 6:45 का समय होगा सुगम संगीत का। आप सुनेंगे रीना मिश्रा के स्वर में। सुबह के 7 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा का। सुबह 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार सुबह के 8:15 पर। सुबह 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। सुबह के 8:40 का समय होगा लोकगीत का कार्यक्रम माटी के महक। सुबह के 9 आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा जिसमें आज चर्चा का विषय होगा विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद आप सुनेंगे भेंट वार्ता लाइब्रेरी मैन से बातचीत नशा उन्मूलन और पर्यावरण सुरक्षा। भेंट वार्ताकार होंगे संजय कच्छप, उनसे बातें करेंगे आशा पिंगवा। सुबह के 9:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। सुबह 10 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, इसके प्रायोजक होंगे NCERT। सुबह 10:30 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा दोपहर के 1:10 पर आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा दोपहर के 1:20 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर के 2:55 पर आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा दोपहर के 3:00। शाम के 4:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम के 4:02 पर। शाम के 5:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। कार्यक्रम विवरण आप सुनेंगे शाम के 5:02 पर। शाम 5:05 का समय होगा कार्यक्रम गुलदस्ता का, जिसमें आज आप सुनेंगे एक ही गीतकार के लिखे हुए गीत। शाम के 5:40 का समय होगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी का, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा विश्व पर्यावरण दिवस पर। उसके बाद आप सुनेंगे पंच परगनिया लोकगीत प्रताप चंद्र सिंहदेव और साथी को। भेंट वार्ता आप सुनेंगे वृक्षारोपण एक पुनित कार्य है। भेंट वार्ताकार होंगे शिवनाथ महतो, उनसे बातें करेंगे कमलेंदु महतो। कार्यक्रम के अंत में सुनेंगे नागपुरी लोकगीत कलाकार होंगे मोहम्मद आजाद अंसारी और साथी को। शाम के 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 6:02 का समय होगा क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा। शाम के 6:30 का समय होगा बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया। शाम के 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची से सुनेंगे जिले में आजकल। शाम के 7:10 का समय होगा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। विषय होगा महिला सशक्तिकरण। विशेषज्ञ होंगे अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री। शाम के 7:45 का समय होगा आकाशवाणी के 90 साल। रात्रि के 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि के 8:45 का समय होगा समाचार संध्या का आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 9:00। रात्रि 9:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। रात्रि के 10:00 आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि के 10:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। और रात्रि के 11:05 का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का आकाशवाणी दिल्ली से। और रात्रि के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत रीना मिश्रा के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत रीना मिश्रा के स्वर में। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। कार्यक्रम जोहार चाईबासा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म आए दिन बाहर के इस गीत से, लता मंगेशकर के स्वर में।

अभी आपने सुना मुकेश और साथियों की आवाज़ों में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सिंदूर से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की।

अभी आपने सुना फिल्म सितारा का ये गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म स्वर्ग से सुंदर। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: अभी आपने सुना ये जरूरी संदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चायबासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सौतन की बेटी से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों की।

अभी आपने सुना फिल्म अंधा कानून का ये गीत आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म अंजाम से, अभिजीत के स्वर में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।

0: बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सिंह कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण

0: आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
1: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रास्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं

0: पहल दी। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को पांचवी पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ।

0: पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है। किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है। सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन। पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है। क्या हम सुन रहे हैं? पहले मौसम बदलता था, अब बिगड़ता है। प्रकृति से सिर्फ लिया, कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
3: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the four-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
2: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yog and promote healthier lifestyles across communities.
4: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रणव झा कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित। भाजपा की पहली सूची में झारखंड से पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के दिए निर्देश। विकास कार्यों में तेजी लाने पर दिया जोर। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग के लिए 6 और 7 जून को सभी मतदान केंद्रों पर लगाए जाएंगे विशेष कैंप। केरल में मॉनसून ने दी दस्तक। झारखंड में 17 से 20 जून के बीच मॉनसून के पहुंचने की संभावना। और धनबाद में आज से झारखंड राज्य सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज। प्रतियोगिता के आधार पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का होगा चयन। और अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रणव झा को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। हालांकि इस सूची में झारखंड से पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना एवं विकास विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं, बजटीय प्रावधानों और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नवाचार आधारित योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। विभाग के सचिव ने बताया कि इनोवेटिव स्कीमों की राशि 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत चयन के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट से भोजपुरी, मगही और मैथिली को हटाए जाने के मुद्दे पर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में मंत्रियों के बीच समन्वय की कमी का आरोप लगाते हुए सरकार की आलोचना की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि सरकार इस मामले में एक मत नहीं दिख रही है।
1: तो यहाँ पर सरकार में एक मंत्री कुछ कह रहा, दूसरा मंत्री कुछ और कह रहा है। भाषा का विवाद झारखंड में खड़ा हो रखा है या विवाद जानबूझकर के मूल जो मुद्दे है उसको भटकाने के लिए तैयार किया गया। आप किसी भी स्टेट में लैंग्वेज पॉलिटिक्स देखते, कोई फैसला लिया गया है तो उसके पहले प्रॉपर एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी है जिसमें प्रोफेसर होते हैं, लैंग्वेज के जानकार होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं। उसके बाद उस कमेटी के फैसले के दम पर कोई भी फैसला लिया जाता है।
0: वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस विवाद के जल्द सुलझने की उम्मीद जताई है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र मुख्यमंत्री को सौंपेगी और उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
2: कमिटी के प्रतिवेदन के बाद सरकार उस पर निर्णय देगी, तो हमें लगता है कि अभी प्रक्रिया चल रही है, तो प्रक्रिया अभी जब तक खत्म ना हो तब तक भारतीय जनता पार्टी विधवा विलाप करना छोड़ दे। जांच के पहले किसी को अपराधी घोषित कर देना, प्रक्रिया चल रही हो उस पर बयान दे देना और फिर बाद में बैकफुट पे आ जाना, तो ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है।
0: विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग के लिए रांची में 6 और 7 जून को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां बीएलओ सुबह 8 से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने बीएलओ और सुपरवाइजरों को गंभीरता से कैंप चलाने, शत प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने और लापरवाही बरतने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की कि वे अपने बूथ पर जाकर मैपिंग जरूर कराएं। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ईसीआई नेट के उपयोग को लेकर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में झारखंड के निर्वाचन पदाधिकारियों ने विशेष गहन पुनरीक्षण के विभिन्न चरणों में ईसीआई नेट के प्रभावी उपयोग और डेटा प्रबंधन की जानकारी प्राप्त की। आयोग के विशेषज्ञों ने प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत मार्गदर्शन किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स। और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय की योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है।
3: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर झारखंड के विभिन्न जिलों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर वन प्रमंडल और एलिफेंट प्रोजेक्ट द्वारा संयुक्त रूप से दो मुहानी क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। दिल्ली में हाल ही में हुई अग्निकांड की घटना के बाद बोकारो जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि जिले के सभी होटल, गेस्ट हाउस और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच के निर्देश दिए गए हैं।
4: पहला तो ये है कि उनका परमिशन चेक किया जाएगा, दूसरा ये देखा जाएगा कि वहाँ फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है, किस तरह की व्यवस्था है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीढ़ियों के पास बहुत सारी ऐसी चीजें रख दी गई हैं जिससे जाम हो गया है। इमरजेंसी एग्जिट पे ही बहुत सारे लोग बहुत कुछ सारी सामान रख देते हैं। मैंने इसका स्वयं देखा, महसूस किया है कि जो इमरजेंसी फायर एग्जिट है वहीं पर सामान रखे हुए हैं। फायर सेफ्टी के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी इस जांच टीम में रहेंगे।
0: जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि इनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं।
5: इन लोगों को पकड़ा गया, इसमें दो लोग हैं, जो एक है जाहिद हुसैन उर्फ विक्की जुगसलाई का रहने वाला है और एक मोहम्मद रेहान हुसैन है जुगसलाई क्षेत्र का। तो ये दोनों लोग पुलिस द्वारा पकड़े गए। इनके पास से लोहे का एक पिस्टल, 7.65 mm का एक जिंदा कारतूस, दो मोबाइल सेट इनके द्वारा इनके माध्यम से प्राप्त किए गए।
0: और अब मौसम। केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने के बाद अब झारखंड में इसके आगमन का इंतजार है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 17 से 20 जून के बीच संताल परगना क्षेत्र के रास्ते मॉनसून के प्रवेश की संभावना है। धनबाद के डॉक्टर जेके सिन्हा मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल में झारखंड राज्य सीनियर महिला पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन आज शाम 5 बजे होगा। झारखंड राज्य कबड्डी संघ और धनबाद जिला कबड्डी संघ द्वारा एसपी क्लब के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य की 36 महिला पुरुष टीमें और 30 तकनीकी अधिकारी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर कर्नाटक में होने वाली राष्ट्रीय सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का चयन किया जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने बिहार के मुजफ्फरपुर के अस्पताल में हुए अग्निकांड की खबर को प्रमुखता से लिया है। प्रभात खबर ने इस पर लिखा है, मशीन से निकला धुआं और आईसीयू में लगी आग, 5 लोगों की मौत। दैनिक भास्कर के लीड है, दिल्ली के होटल अग्निकांड में बोकारो की सुरभि की मौत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा प्रत्येक जिले में एक आईटीआई बनेगा मॉडल। हिंदुस्तान लिखता है, संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप और फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का निधन। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रणव झा कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित। भाजपा की पहली सूची में झारखंड से पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के दिए निर्देश। विकास कार्यों में तेजी लाने पर दिया जोर। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग के लिए 6 और 7 जून को सभी मतदान केंद्रों पर लगाए जाएंगे विशेष कैंप। केरल में मॉनसून ने दी दस्तक, झारखंड में 17 से 20 जून के बीच मॉनसून के पहुंचने की संभावना। और धनबाद में आज से झारखंड राज्य सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज। प्रतियोगिता के आधार पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का होगा चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो यह रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे कुरमाली लोकगीत कलाकार हैं संतोष महतो और साथी।

अभी आपने सुना लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आपने सुना कुर्माली लोकगीत कलाकार थे मनसा चरण महतो और साथी। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

0: उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। श्रोताओं, आज 5 मई, आज के दिन हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इस वैश्विक पहल में शामिल होने और आशा की किरण जगाने के लिए अपडेट संसाधन और अवसरों के लिए जुड़े रहें। श्रोताओं, पृथ्वी हमारी माता है और इसका संरक्षण हमारी प्रतिबद्धता है। तो आइए आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रण लें और प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। अब आइए श्रोताओं, सुनते हैं भेंटवार्ता एक लाइब्रेरी मैन से। हम मुलाकात कर रहे हैं संजय कच्छप से। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम संजय कच्छप है और मैं पूलहातू बड़ी बाजार चायबासा का रहने वाला हूँ, अस्थायी निवास हूँ, और मैं एक सरकारी सेवक भी हूँ। अभी तत्काल मेरी पोस्टिंग जो है कृषि उत्पादन बाजार समिति पाकुड़ और साहेबगंज में एज ए पणन सचिव के रूप में है। और मेरा जो पैशन है वो मैं अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के बीच में पुस्तकालय के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, और ये लगभग मैं 20 साल से ज़्यादा समय से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ, और इसलिए लोग जो है मुझे अब लाइब्रेरी मैन ऑफ झारखंड के नाम से जानने लगे हैं। मुझे ये बहुत खुशी है कि जो है मेरा काम को सराहा जा रहा है। वास्तव में शिक्षा ही समाज को एक दिशा देती है और हर कोई सक्षम है कुछ ना कुछ समाज को देने के लिए, तो मैंने ये अपने जीवन को इस दिशा में रखा है कि मैं पुस्तकालय के माध्यम से समाज में ज्ञान की रोशनी को लाऊं।
0: जी हाँ संजय जी, हमारा सौभाग्य है कि एक लाइब्रेरी मैन हमारे आकाशवाणी चैवासा में आए हुए हैं और उनसे हमारी बातें हो रही हैं। बहुत सारी जानकारी आपसे लेनी है, तो सबसे पहले आप जो लाइब्रेरियन का पोस्ट है क्या आपका?
1: जी ऐसा है कि लाइब्रेरी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस दिशा में सरकार

0: सहयोग कर सकें, जो अभी भी उनको अच्छी किताबें या मार्गदर्शन का अभाव है। तो ये हम लोग अपने सामाजिक दायित्व, नौकरी के अलावे सामाजिक दायित्व के तहत एक जो शिक्षा प्रेमियों का हमारा समूह है, हम लोग मिल करके जो है एक समूह मिलकर बनाते हैं, जो छुट्टियों के दिनों में हम लोग ये सारा काम करते हैं, लगातार काम करते आ रहे हैं। तो ये हम लोग अपने जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है बच्चों को अपने सैलरी के पैसे से चंदे करके जो है हम लोग छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र में पुस्तकालय का स्थापना कर उन्हें शिक्षा से जोड़ रहे हैं और शिक्षा के महत्व को बता रहे हैं, उनको मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ गैप है। मैडम
1: जी हाँ, ये एक बहुत कम ही देखने को मिलता है संजय जी, कि कोई अपने सैलरी के पैसे से उन लोगों के लिए, गरीब बच्चे जो है, और उसके लिए लाइब्रेरी खोलना, उसके लिए कॉपी पेंसिल किताब का उपलब्ध कराना उन्हें बहुत कम देखा जाता है।
0: वास्तव में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है मैडम, और सामाजिक प्राणी है होने के नाते उनके बहुत सारे दायित्व होते हैं। आपने देखा है कि कोविड के समय में जब पूरी दुनिया रुक सी गई थी, तो हम लोगों ने जो है जो अच्छाई था, मनुष्यता की अच्छाई को हम लोगों ने सभी ने प्रदर्शित किया। सभी ने जो है एक राशन बांटा है, दवाइयाँ बांटी हैं, मरीजों को हॉस्पिटल पहुँचाया है। तो ये कहीं ना कहीं वो उस पैंडेमिक में आपने देखा है कि एक मानवीय चेहरा को देखा है। तो हर मनुष्य में एक मानवीय चेहरा होता है, वो चाहता है कि कुछ करे, लेकिन इसमें एक अलग अलग इंटरेस्ट होता है। कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम कर रहा है, कोई ब्लड डोनेशन करके कर रहा है, कोई पेड़ पौधा लगा करके कर रहा है, यानी हर तरह के लोग जिनका रुचि है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा प्रेमी है, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है कि हम कहाँ जा करके कैसे लोगों को, बच्चों को मदद करें। तो इसीलिए हम लोगों ने जो है एक पुस्तकालय अभियान चलाया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया। तो जो भी शिक्षा प्रेमी जो चाहते हैं कि समाज ज्ञानमय बने, समाज से जो है अंधेरा दूर जाए, तो शिक्षा जो पर शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वैसे लोगों के साथ ही हम लोग जुड़ करके इस मैंने रिमोट एरिया में हम लोग जा पा रहे हैं। ऐसे एक व्यक्ति का कोई प्रयास नहीं होता है, अगर कोई रिजल्ट या परिणाम आ रहा है तो आप समझिए कि उसके पीछे बहुत सारे लोगों का बरसों का मेहनत है, उनके सेक्रीफाइसेस हैं, उनका सोच है कि समाज को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं। तो हर किसी के अंदर क्वालिटीज़ भी हैं, वो देना भी चाहते हैं। तो बस वैसे लोगों को हम लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। उसी तरह से हम लोग एक जगह इकट्ठा हो गए हैं शिक्षा प्रेमी। तो आप देख रहे हैं कि जो लाइब्रेरीज है, जो एक समय समाज में एलियन वर्ड्स था, कोई जानते नहीं थे, सिर्फ शहरों में था, कॉलेजों में था, लेकिन उसका भी एक्सेस लोग नहीं ले पाते थे। और जहाँ लाइब्रेरीज होती थी लगता था कि वहाँ कुछ संभ्रांत टाइप के लोग वहाँ जाते होंगे, लेकिन वास्तव में लाइब्रेरी तो हर व्यक्ति, हर बच्चों का हक है समाज में। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लाइब्रेरीज को ज़्यादा से ज़्यादा समाज में जो है उनको एक्सेस दिलाया जाए। सरकार अपना प्रयास कर रही है, लेकिन हम लोग अगर सामाजिक दायित्व के तहत से अगर हम लोग इससे जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से एक बेहतर परिणाम समाज में देखने को मिलेगा।
1: जी हाँ संजय जी, समाज की एक बुराई है जो कि एक परिवार को भी तबाह कर रही है और एक देश को भी प्रभाव कर रही है, वो है नशा मुक्त। इसका क्या होगा, आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, नशा जो है बिल्कुल एक अभिशाप है समाज के लिए, और नशा से कई पीढ़ियां बर्बाद होती हैं। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बर्बाद होता है, पीढ़ियां बर्बाद होती है। अगर कोई मुखिया समाज का, कोई परिवार का कोई मुखिया अगर नशा के लत में है, तो उनके घर में जो बच्चे हैं वो प्रभावित होते हैं, उनकी पढ़ाई, शिक्षा और सारा चीज़ जो है प्रभावित होता है। व्यक्ति बीमार होता है तो परिवार को झेलना पड़ता है। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है, और इसे दूर करने के लिए एक साझा रणनीति के साथ जो है हम सभी को एक साथ आना चाहिए। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि कोई अगर समाज में कोई युवा है या जो लोग हैं, उनको अगर कोई सही मोटिवेशन नहीं मिलता है या कोई सही माहौल नहीं मिलता है, तो लोग जल्दी नशा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कभी कभी होते हैं कि डिप्रेशन में आकर के नशा करते हैं, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो कर रहे हैं, कोई जो है साथ गलत संगति में पड़ गया है तो नशा कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट है तो शौक से शुरू नशा करते हैं, फिर बाद में वो आदी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सामाजिक बुराई है, और इसके जड़ में यही है कि हम जितना ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार करें नशा को हम हटा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा हमें दिशा देता है, मोटिवेशन देता है।

0: एक लक्ष्य देता है। तो जो अगर कोई हमारा और आपका अगर लक्ष्य हो तो हम गलत दिशा में नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लक्ष्य विहीन है, क्योंकि उनमें अज्ञानता है, शिक्षा का अभाव है। वो जानते हैं कि नशा से बुराइयां होती है, लेकिन कितनी बुराइयां होती हैं, कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, उनको आभास नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के माध्यम से हम लोग जो है और उन्हें जागरूक करके नशा को समाज से समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबकी भागीदारी होनी चाहिए। जैसे अगर एक परिवार में कोई मुखिया बहुत ज़्यादा नशा कर रहा है तो आसपास के लोगों को उनको बैठा के समझाना चाहिए, उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भी भेजना चाहिए अगर उनका नशा नहीं हो रहा। तो इस तरह से ये सोचना चाहिए कि हमारा पड़ोस का भाई अगर नशा कर रहा है तो मतलब मेरा परिवार का ही कोई भाई नशा कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उसको देख करके हमारे बच्चे भी जो है गलत रास्ता में चले जाएं।
1: हाँ।
0: तो अगर हमको स्वस्थ रहना है, हमको अगर नशा मुक्त रहना है, तो हमारे आसपास को भी नशा मुक्त करने की जरूरत है।
1: जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर हम जहाँ रहते हैं अड़ोस पड़ोस के लोग भी उसमें शामिल हो जाएं, उसे समाज से दूर भगाने के लिए, तो ये बहुत अच्छी होगी। और आप क्या कहते हैं, गांव में भी इसका एक सभा बुलानी चाहिए?
0: देखिए, हमारा सभा है, ग्राम सभा में आप देखे होंगे कि समाज में हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्राम सभा मुंडा मान की व्यवस्था हमारे कुलान में है, तो बैठकें हमेशा होती रहती है। तो हम लोगों को प्रायोरिटीज देना चाहिए और समाज की जो बुराइयां हैं उनको चिन्हित करना चाहिए। आज मैं बहुत सारे जहाँ लाइब्रेरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं तो वहाँ ग्राम सभा भी हम लोग करवाते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि लाइब्रेरीज होते क्या है, पुस्तकालय होती क्या है, उसको एक्सेप्टेंस दिलाएं। क्योंकि रूढ़िवादी परंपरा में क्या है कि जो आधुनिक शिक्षा को अभी तक शामिल नहीं किया गया, लेकिन आप भी जानते हैं कि हम अगर 21वीं सदी में हैं, हमारे बच्चों को भले हम रूढ़िवादी प्रथा के तहत हम सारी चीज़ों को मानेंगे, अपनी व्यवस्था को करेंगे, लेकिन हमें फॉरवर्ड भी देखना, आगे भी जाना है। तो हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना है, बेहतर IAS IPS भी बनाना है, जज भी बनाना है, और अपने परंपरा भाषा संस्कृति जल जंगल जमीन को भी बचाना है।
1: हाँ।
0: तो वैसे में हमको समाज को प्रायोरिटीज तय करनी होगी, ग्राम सभा को प्रायोरिटीज तय करना होगा कि हमारे रूढ़िवादी परंपरा को अक्षुण बनाए रखते हुए हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए लाइब्रेरीज हो, और इस लाइब्रेरी शिक्षा के मार्ग में अगर कोई भी बाधा आता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी पर्व त्योहार को काफी लंबा खिंचाता है, या शादी ब्याह एक लंबा खिंचाता है, तो वो हम लोग उसको खत्म नहीं करेंगे, लेकिन उसको हम लोग ये देख सकते हैं कि उसको शॉर्ट पीरियड करके जो है उसको हम लोग उसमें आगे जो है वो कर सकते हैं। चूंकि डाइवर्ट होते हैं बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, उनको ये चीजें। फिर बहुत सारा देखते हैं कि खेल कूद हमारे लिए बहुत जरूरी है, पुस्तकालय होना चाहिए हमारे बच्चों के लिए और खेल का मैदान होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कभी कभी कि वो मुर्गा खस्सी टूर्नामेंट्स जो होते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चे युवा उसी में एक समय में 6 महीना तक इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये चीज़ें भी जो है हमारे बच्चों को डाइवर्ट करते हैं। तो ग्राम सभा ये कर सकते हैं कि एक समय निर्धारित करें अपने क्षेत्र में और उनको प्रायोरिटीज दे, लाइब्रेरीज खोले, सरकार से डिमांड करे, और हम सारे चीज़ें भाषा संस्कृति के लिए विशेष पढ़ाई लिखाई के लिए भी सरकार से मांग करें। अभी देखिए बहुत सारा जो है धुमकुड़िया भवन बन रहा है, कला संस्कृति भवन बन रहा है, वो सारा चीज भवन भी बनाना चाहिए, क्योंकि वो भवन हमारा एक रिसोर्स सेंटर भी बन सकता है गाँव में। तो जब रिसोर्स भवन बनेंगे, अखड़ा बनेगा, और जब हम लोग बैठेंगे तो सामाजिक बुराइयां खुद ब खुद चले जाएंगे। हमको संवाद करना होगा आपस में कि हमारी मूल समस्याएं समाज में क्या क्या है।
1: जी हाँ, एक पर्व त्योहार होता है हमारे भारत सरकार में, तो आप तो जानते हैं अनेक तरह के पर्व होते हैं, और उन्हीं वही एक बहाना होता है उन्हें नशा करने का। तो क्यों ना जो दिन होता है मनाने का उन्हें सॉर्ट किया जाए। आप जैसे कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा होगा कि अगर पर्व त्यौहार को अगर हम सीमित दिन में बनाएं, तो लोग तो एक बहाना चाहते ही हैं, तो उन्हें बहाना भी कम मिल जाएगा।
0: एक्चुअली में क्या है कि ये आस्था का विषय है, लेकिन हम जो भी आज हमारे जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कल हमारे समाज के लिए संस्कृति बन जाएगा, और वो फिर आगे जाल चल के वो एक नियम बन जाएगा। तो हमें ये देखना है कि आज के परिदृश्य में सोचना है। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई पर्व त्योहार को छोटा किया जाए या बड़ा किया जाए, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हम लोग को अभी आधुनिक समय में ये समीक्षा करने की जरूरत है कि हमारे युवाओं को हम कैसे बेहतर दिशा में भेजते हैं और क्या चीजें हैं जो हमें जकड़ के रखी हुई हैं। तो ये हम लोगों को समीक्षा करने की जरूरत है, ग्राम सभा को समीक्षा करने की जरूरत है, स्थानीय प्रशासन को समीक्षा करने की जरूरत है और सरकार को भी समीक्षा करने की जरूरत है कि हम कैसे माहौल जो है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए दें। सरकार बहुत काम कर रही है आज झारखंड सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड सरकार में बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं, पोटो हो खेलकूद मैदान बन रहा है जो खेल के ओर प्रोत्साहन करना है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ें हैं। हर खेल के लिए जो है उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, रांची में कैंप लगाया जा रहा है, तो हम बहुत सारे बच्चे इस चीज की जानकारी नहीं है, तो हम लोगों को जो है ये सब सारा चीज जो सरकारी योजना की जानकारी देना चाहिए ताकि युवाओं को, बच्चों को एक लक्ष्य मिले। और जब बच्चे लक्ष्य का पीछा करेंगे तो जाहिर सी बात है जो गलत चीजें हैं वो खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। तो ऐसे में हम लोग चाहिए कि ये सारे चीजें जो है गांव गांव में जब लाइब्रेरीज खुलती है, हम लोग का बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज है जहां हम लोग सरकार के योजनाओं का जितना भी जो चीजें हैं उसको हम लोग रखते हैं, ब्राउजर वगैरह सब रखते हैं ताकि बच्चे जब या माता पिता जब पढ़ने आए तो उनको देखे। कृषि से संबंधित किताबें हैं, मैं जाता हूँ तो जिले से लेकर के आता हूँ और लाइब्रेरीज में रख देता हूँ, भिंडी कैसे कब लगाना चाहिए, कौन सी बीजें हैं, सारी चीजें तो ये लाइब्रेरीज में भी है। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को समाज में एक ऐसा केंद्र बनाना चाहिए जहाँ पढ़े लिखे लोग, अनुभवी लोग, समाज के शुभचिंतक लोग आ करके बैठे, सप्ताह में बैठे, 15 दिन में बैठे और समाज के बारे में चिंतन करें। तो हमको लगता है कि समाज में जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं वो दूर हो सकती है। हम संवाद विहीन हो रहे हैं, इंटरनेट में हम देखते हैं कि घर परिवार में सभी लोग के पास स्मार्टफोन आ गया, कोई आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया बहुत जरूरी है लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि हम अपने जड़ों को खोखला करते जाएं, पीछे कमजोर करते जाएं, सारी चीजें हैं। तो जो चीजें मूल चीजें हैं उसके विषय में हम लोगों को चर्चा करते रहना चाहिए, संवाद करना चाहिए, आपसी संवाद करना चाहिए। मैं युवाओं को भी यही अनुरोध करूंगा कि जो हमारे समाज के जो बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनसे जरूर संवाद करें, उनसे सीखें समाज को कैसे आगे बढ़ाना है। आधुनिकता बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया जरूर इस्तेमाल करें लेकिन सीमित इस्तेमाल करें, उनको अपने कैरियर के लिए इस्तेमाल करें, स्किल डेवलपमेंट के लिए करें, अंग्रेजी सीखने के लिए कीजिए, जापनीज सीखने के लिए कीजिए, मल्टी लैंग्वेज सीखने के लिए कीजिए, स्किल कंप्यूटर सीखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया में आ गए लेकिन हमारे युवा आज उनको ज्ञान के अभाव में जो है उनका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो ये भी एक समाज में बहुत बड़ी बुराई के रूप में जो आ रहा है जिसका खामियाजा आने वाला समय में जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा ना हो इसके लिए अभी से हम लोगों को साझा रणनीति करनी चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो है वो 16 साल से तक के बच्चों को सोशल मीडिया या इंटरनेट यूज़ करने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारत हमारा अच्छा देश है जो सबको आज़ादी देता है, लेकिन अगर कोई चीज़ें जो हमें एक्सेस करने का मौका मिल रहा है तो उसका अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए, ना कि उसका डिसएडवांटेज करके जो है हम उसको ये सारी चीज़ें करें। और ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और स्टूडेंट या युवा कोई ख़राब नहीं होता है, ख़राब समाज हो सकता है, शिक्षक हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। अगर हम अच्छे बन जाएं तो हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो अच्छा होगा। तो हम लोगों को खुद भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी समीक्षा करनी चाहिए कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि गलती में हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे जो है युवा हमसे जो है डिमोटिवेट हो रहे हैं या फिर हमको आदर्श नहीं मान रहे हैं। तो हमारे समाज में हम लोगों को रोल मॉडल बनना है, आदर्श बनना है और एग्जाम्पल सेट करना है ताकि आने वाला जो भावी पीढ़ी है उस एग्जाम्पल को देख के आगे बढ़े।
1: जी हाँ, उतना ही जरूरी है संजय जी शुद्ध पर्यावरण।
0: जी बिल्कुल, अभी देख रहे हैं कि अचानक बारिश हो रहा है, फिर कड़ा धूप हो रहा है, बीच में अप्रैल में स्टार्टिंग में इतना तेज गर्मी हो रहा था तो लग रहा था कि बच्चों लोग का स्कूल अभी ही बंद करना पड़ेगा, येलो अलर्ट जारी हो गया था और इतना से इतना तब बजे नहीं निकलना, इस तरह के जहां आपदा प्रबंधन की तरफ से आ गया था तो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर हम देखते हैं कि 21वीं सदी में जो है औद्योगिकरण और तेजी से हो रहा है, पर्यावरण का दोहन भी जो है कहीं ना कहीं विकास को बढ़ाने के लिए लोग कर रहे हैं, रोजगार उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में एक बैलेंस बनाने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक का रोल हम लोगों को अपनाना चाहिए। हम लोग जितने भी हमारे लाइब्रेरीज हैं, हम लोग वहाँ 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस में पृथ्वी दिवस में 22 अप्रैल को और ओजोन डे में, ये सारे चीज़ में हम लोग एक्टिविटीज़ में पेड़ पौधा लगाते रहते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि अपने जन्मदिन में पौधा लगाएं, और इस तरह से हम लोग कभी कभी कंपेन करके लगाते हैं। तो आपके दूर आप आज यहाँ जो है माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि हर लोग अपने जीवन में कम से कम एक पौधा तो जरूर लगाएं, और जब भी अपने माता पिता जो दिवंगत हैं, दादा दादी, उनके नाम पे भी लगाएं। कब्रिस्तान में काफ़ी जगह खाली रहता है, अभी भी बहुत ऐसे जगह है जहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो आपका भी अगर कोई ज़मीन ऐसे ही बंजर और खाली पड़ा हुआ है तो वहाँ पर उस टाइप का कोई पेड़ पौधा लगा दीजिए। और पेड़ पौधा ऐसी चीज़ें हैं, सिर्फ वो छाया या फल नहीं देते, हम लोगों को वायु भी शुद्ध करती है और एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप करती है।
1: जी हाँ।
0: और आप देख रहे होंगे कि शहरों में या अगल बगल जहाँ पेड़ पौधा नहीं है, पशु पक्षी भी आपको नजर नहीं आते, चिड़िया का चहचहाट नजर नहीं आता, कोयल का कू नजर नहीं आता, तो ये सब चीजें भी हम लोग मिस कर रहे हैं। तो कुछ प्रकृति को इसलिए भी बचाना चाहिए कि आने वाले भावी पीढ़ी को भी उसका आनंद लेना है, सारे चीजों को देखे, नहीं तो फिर ये किताब में पढ़ेंगे कि हाँ इसको गोरैया बोलते थे, इसको कौवा बोलते थे, इसको चील, जैसे चील अभी विलुप्त हो रहा है, बाज विलुप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को प्रकृति बचाने का प्रण लेना चाहिए, और सिलेबस में भी बच्चों का आ गया है प्रकृति के लिए, सभी प्रकृति प्रेमी हो गए हैं। और एक चीज है जो हम दूषित कर रहे हैं अपने पर्यावरण को, प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पान गुटखा खा करके कहीं थूक देते हैं, प्लास्टिक बोतल पानी फेंक देते जहां तहां। सबसे पहले तो घर से जब निकले तो एक बोतल अपना खरीद लीजिए, परमानेंट बोतल टाइप का, पानी लेके चलिए।
1: घर से
0: आप कहीं भी ट्रेवल करते हैं, कहीं भी चलिए, बाहर का प्लास्टिक का बोतल कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत इमरजेंसी में करना चाहिए। घर से थैला लेके चलिए ताकि सब्जी प्लास्टिक में ना लेना हो। मैं जब भी जाता हूँ थैला लेके जाता हूँ और कोई प्लास्टिक में हमको देता है तो हम बोले भैया प्लास्टिक आप रखिए, हम अपने घर में कचरा नहीं ले जाना चाहते, अपने समाज में कचरा नहीं ले जाना चाहते हैं। तो इस तरह से एक दृष्टिकोण हम लोगों को डेवलप करना चाहिए ताकि जो हमारा आसपास का पर्यावरण है जो है प्लास्टिक फ्री हो सके। और कोशिश करना है कि हम जिस गांव में रहते हैं उसको प्लास्टिक फ्री करना है। हमारा जितना लाइब्रेरीज है वो सब प्लास्टिक फ्री लाइब्रेरीज हम लोग उसको घोषित किए हुए हैं, और बच्चों को कहते हैं कि भैया जब भी आपको कहीं प्लास्टिक मिले लेकर के वहां डस्टबिन है वहां रख देना, इसको हम लोग फिर आप उसको रीसेल भी कर सकते हैं, उसको ये भी कर सकते हैं। तो जो भी चीजें हैं उससे कुछ आमदनी हो जाएगा तो हम लोग लाइब्रेरीज के लिए उसको कुछ खरीद सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। तो इस तरह का चीजें हैं हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिला प्रशासन भी हम लोगों को मदद कर रही है, आपस में लोग कर रहे हैं। एक गुड काउज को हम लोगों को फैलाना है और ऐसा समाज का निर्माण करना है जहां पर एक संवेदनशील समाज का निर्माण करना है जहां हम लोग हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें, और ये बहुत जरूरी है यदि हमारे पृथ्वी को लंबे समय तक
1: जीवित
0: रखना है तो। और ये पृथ्वी में सिर्फ हम नहीं रहते हैं, आप भी रहते हैं और आने वाली भावी पीढ़ी रहेगी। भावी पीढ़ी क्या बोलेगी कि हम लोगों ने सिर्फ दोहन किया, कुछ मॉडल नहीं बनाया, कुछ रास्ता नहीं बनाया। तो ये दायित्व आज हमारे लिए बहुत बड़ा दायित्व बन गया है और हम कर सकते हैं अगर हम उन्हें अपने आदतों में ले आए। तो ये ऐसा नहीं है कि हमको बोझ लगेगा, कोई भी चीज हैबिट हो जाने के बाद वो आपका जीवन का हिस्सा हो जाता है, तो अच्छी चीजों को हम लोग को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए।
1: जी हाँ। और वैसे भी संजय जी, जो प्लास्टिक हम लाते हैं घर उसे यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, इससे तो मिट्टी भी खराब होगी और हमारे जो पशु हैं पालतू पशु वो उसे खाएंगे तो उन्हें भी बीमारियां हो जाती हैं।
0: जी बिल्कुल, ये देखिए मैडम ऐसा है कि प्लास्टिक तो क्या है कि बहुत उसको आप गला भी नहीं सकते, वो बहुत सालों तक जो है हमारे मिट्टी में दब करके मिट्टी के प्रकृति को भी चेंज करेगा।
1: हाँ।
0: केमिकल और सारे चीजें हैं, तो ये जंगली जानवर को खाने को नहीं मिल रहा है तो वो प्लास्टिक को भी जो है वो कर रहे हैं, नाली जाम हो जा रहा है आपका। हाँ। ये सारी चीज तो बहुत सारे चीज मैंने दिक्कत हो ही रहा है इस सारी चीजों, तो संवेदनशील हम लोग को होना चाहिए। थैला एक विकल्प है, प्लास्टिक की जगह जब भी जाइए थैला लेके आइए। हम लोग अगर सभी हम लोग इस्तेमाल करते तो निश्चित रूप से आने वाले समय प्लास्टिक फ्री हम दुनिया कर सकते हैं। अभी और एक समस्या आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा का भी एक बहुत सारा समस्या आ रहा है। हम लोग हर 2 साल में मोबाइल चेंज कर रहे हैं, लैपटॉप चेंज कर रहे हैं, तो एक आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी जो है ई कचरा भी हम लोगों को इसके लिए निपटने के लिए समाज में ये करना चाहिए, चूँकि इससे भी जो है जो अगर हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अगर हम लोग फेंकते हैं तो उससे भी रेडिएशन निकलता है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो आने वाले समय में जो है इलेक्ट्रॉनिक कचरा में भी एक जागरूकता अभियान समाज में चलाने की जरूरत है मैडम।
1: जी हाँ। तो संजय जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। धन्यवाद बोलने के से पहले एक और मैसेज मैं युवा लोगों को देना चाहता हूँ, नशा से बचें। नशा समाज को बर्बाद करता है, ना सिर्फ एक पीढ़ी भर के आने वाले भावी पीढ़ी को नष्ट करता है, तो नशा से बचें। दूसरी बात है कि ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट पहने, हेलमेट लगाएं, बिना हेलमेट का बाइक मत चलाएं, क्योंकि आपका जान, आपका जीवन जो है सिर्फ आपका नहीं है, आपका परिवार का भी है। हाई स्पीड रफ ड्राइविंग मत कीजिए, तो और नशा से दूर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जिंदगी एक ही बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती।
0: जी बिल्कुल, जीवन एक बार मिलता है, और इस जीवन को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें ताकि आप हमेशा की तरह रोल मॉडल बन जाएं।
1: जी,
0: अपने आप को रोल मॉडल बनाइए और आने वाले भावी पीढ़ी के लिए आदर्श बनिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम। जोहार।
1: जोहार। अभी हम मिल रहे थे लाइब्रेरी मैन संजय कच्छप से।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन।

श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म गुप्त का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में।

अभी आपने सुना फिल्म कोई मिल गया का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है क्या दिल ने कहा। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की।

अभी आपने सुना फिल्म क्या दिल ने कहा का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म गदर से। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की ही।

0: इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम रसरंजन। आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अभी आप सुन रहे थे ये जरूरी संदेश। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
1: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
1: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगर पारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
1: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
1: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
1: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
1: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
1: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
1: जी विमलेश,

0: आपके शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
1: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
0: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। इस डाकघर की स्थापना 5 नवम्बर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुँचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800044559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज
3: की। बहुत अच्छे से शासन करिए।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
4: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए, हम आपकी
1: सेवा में सदैव तत्पर।
4: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
5: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
6: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये

संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांध कर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: आरबीसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को हैं। आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम, प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की। हमारा अगला कार्यक्रम जुहार रांची बस कुछ ही पलों में।

आप सभी का हार्दिक स्वागत है जोहार रांची के इस खास कार्यक्रम में और आप सभी श्रोताओं को आभा का जोहार। दोस्तों, हर रोज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे ढेरों जानकारियां साझा करते हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसकी शुरुआत हम करते हैं एक अच्छे से सुविचार के साथ। कहते हैं जीवन मुश्किल नहीं होता, हम अपने दिमाग से उसे मुश्किल बना देते हैं। बार बार सोचना, हर चीज को समझना, हर स्थिति को पकड़कर बैठ जाना, यही हमारे मन को भारी बना देता है। लेकिन सच बहुत सरल है, आपको हर विचार पर ध्यान देना जरूरी नहीं, हर बात को समझना जरूरी नहीं, हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। सादगी का मतलब कम करना नहीं है, बल्कि अनावश्यक बातों को सोचना छोड़ देना जरूरी है। थोड़ा भरोसा कीजिए, थोड़ा छोड़ दीजिए, जीवन को बहने दीजिए, क्योंकि जैसे ही मन सरल होता है हमारा जीवन अपने आप हल्का हो जाता है, क्योंकि हर शुद्ध भावना आपकी खुशी का आधार बनता है।

जुहार रांची में आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। तो आपको बता दें, केरल में गुरुवार को मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन झारखंड के लोगों को इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। झारखंड में 17 से 20 जून के बीच संताल परगना के रास्ते मॉनसून के प्रवेश करने की संभावना है। और आपको बता दें, 5 जून को रांची सहित राज्य के कई इलाकों में दोपहर बाद मौसम बदलने की संभावना जताई गई है।

आइए जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। तो इतिहास के पन्ने अगर हम पलटे तो जानेंगे कि 5 जून 1507 में इंग्लैंड और नीदरलैंड व्यापार समझौते पर सहमति हुई थी। सन 1659 में मुगल शासक औरंगजेब आधिकारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे और 1661 में महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया था। बात करें वर्ष 1674 में तो आज ही के दिन शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्य अभिषेक करवाया और 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाने के लिए पहली बार पतंग उड़ाई कि बिजली विद्युत का एक स्रोत है। 5 जून 1857 में कानपुर अंग्रेजों के हाथों से निकल गया और नाना साहब को पेशावा घोषित कर दिया गया था। बात करें 1875 की तो आज ही के दिन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पैसिफिक स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की गई थी। 1915 में डेनमार्क ने अपने संविधान में संशोधन कर महिलाओं को वोट का अधिकार दिया था। 1953 में आज ही के दिन डेनमार्क में संविधान लागू हुआ था। और आज ही के दिन 1984 में सिखों के धर्म स्थल पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को भारतीय सेना ने अंजाम दिया था। और 2005 में ताइवान ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। और आज ही के दिन 2010 में भारत सरकार ने सुरक्षा अनुबंध नियम के संशोधित रूप को अधिसूचित कर शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों में आम निवेशकों की कम से कम 25% हिस्सेदारी को अनिवार्य कर दिया था। और 5 जून 2013 में पहली बार एक अंग्रेजी अखबार में छपा कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी अमेरिका में लाखों लोगों के फोन रिकॉर्ड जुटा रही है। और बात करें वर्ष 2017 की तो आज ही के दिन सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark III D1 का सफल परीक्षण हुआ था।

हम बातें कर रहे हैं इतिहास की, तो जानते हैं किन हस्तियों ने आज इस दुनिया में कदम रखा था। तो बात करें 5 जून 1879 में, तो नारायण मल्हार जोशी का जन्म हुआ था, जो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। 1892 में सिकंदर हयात खान का जन्म हुआ, जो स्वतंत्रता पूर्व औपनिवेशिक काल में पंजाब राज्य के प्रधानमंत्री थे और भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर थे। गोविंद शंकर गुरु ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयाली भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, इस दुनिया में कदम रखा था 5 जून 1901 में। 1939 में सुब्रमण्यम रामास्वामी का जन्म हुआ, जो भारतीय राज्य पुडुचेरी के भूतपूर्व चौथे मुख्यमंत्री थे। और 1961 में रमेश पूर्व कृष्णन का जन्म हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं। और 5 जून 1972 में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ, जो उत्तर प्रदेश राज्य के 21वें मुख्यमंत्री हैं और ये हिंदू युवाओं के सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। तो हमारी तरफ से इन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों आज है विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। आज का दिन केवल एक तारीख नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी के प्रति हमारे संकल्प और जिम्मेदारी को याद दिलाने का दिन है। प्रकृति और पर्यावरण ने हमें जीवन जीने के लिए अनमोल उपहार दिए हैं, जैसे स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और हरी भरी धरती, लेकिन आधुनिकता और विकास की दौड़ में हम इन्हीं उपहारों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक पल के लिए अगर हम अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि क्या आज हमारी हवा उतनी ही शुद्ध है जितनी हमारी पुरानी पीढ़ियों के पास थी, क्या हमारे जल स्रोत सुरक्षित हैं, तो शायद हमें जवाब मिलेगा ना। ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक प्रदूषण और वनों की कटाई आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जो हमारे प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम आज से ही सामूहिक प्रयास शुरू करें तो शायद इससे हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। वर्ष में एक दिन पर्यावरण की रक्षा का संकल्प तो हम सब लेते हैं परंतु उस पर अमल नहीं करते, लेकिन पर्यावरण की रक्षा हमें हर कीमत पर करनी होगी, हमें ये समझना होगा। तो आइए इस पर्यावरण दिवस पर हम कुछ छोटे छोटे और महत्वपूर्ण संकल्प लें, जैसे पेड़ लगाएं और बचाएं। अपने घर के आसपास, अपनी बालकनी में या किसी खाली जगह पर एक पौधा जरूर लगाएं। प्लास्टिक को कहें ना। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें और कपड़े या जूट के थैलों को अपनी आदत बनाएं। जल और ऊर्जा की बचत करना सीखें। आवश्यकता न होने पर बिजली बंद करें और पानी की हर एक बूंद को बचाएं। और प्रकृति का सम्मान करें। अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें और दूसरों को भी जागरूक करें। प्रकृति हमें जीवन देती है, हमें पालती पोसती है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी प्रकृति और पर्यावरण की ढाल बने। याद रखें, पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार का काम नहीं है, यह हमारा और आपका साझा कर्तव्य है कि हम इस सुंदर धरती को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त रखें। तो आप सभी श्रोताओं को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

जुहार रांची में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह ना दें और ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अपनी दोस्त आभा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जुहार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वर यात्रा के 90 वर्ष पूर्व कार्यक्रम अधिकारी अनिल किशोर सहाय की मीनाक्षी शर्मा से बातचीत। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की।

0: नमस्कार श्रोताओं, भारत की आत्मा की आवाज, भारत के खेत खलिहानों, नदियों पहाड़ों, जल जंगल जमीन के साथ ही जन जन की आवाज आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर यात्रा के स्वर्णिम पड़ाव पर हम एक बार फिर आपका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं आवाज की दुनिया के आपके दोस्त मीनाक्षी आपके साथ हूँ। साथियों, हम सब उस संस्था के 90 वर्षों की शानदार यात्रा का उत्सव मना रहे हैं जिसने पीढ़ियों को जोड़ा है, जिसने संस्कृतियों को आगे बढ़ाया है, विरासत को सहेजा है और राष्ट्र चेतना को एक नया स्वर दिया है। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर यात्रा में आकाशवाणी रांची साक्षात्कारों की श्रृंखला के माध्यम से उन शख्सियतों से आपके मुलाकात करवा रहा है जिन्होंने इस संस्थान को अपना अमूल्य योगदान दिया, अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष इसके साथ बिताए और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसके साथ जुड़ने का काम किया। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं आकाशवाणी रांची में कई वर्षों तक कार्यक्रम अधिशासी के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले, इसके साथ ही आकाशवाणी के कई केंद्रों में अपनी सेवाएं देने वाले, यहां से प्रसारित कार्यक्रमों को सजाने संवारने वाले श्री अनिल किशोर सहाय जी। सर, सबसे पहले तो आपके आकाशवाणी में, आपके जाने पहचाने स्टूडियो में, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं।
1: धन्यवाद मीनाक्षी जी।
0: सर, जब हम 90 वर्षों की स्वर यात्रा का उत्सव मना रहे हैं आकाशवाणी की, तो यकीनन हर किसी के हृदय में एक रोमांच है, हर किसी की यादें जो है वो फिर से बहुत जीवंत तो हो उठ रही हैं। क्योंकि आप काफी लंबे समय से आकाशवाणी से जुड़े रहे, तो जब आप यहाँ प्रवेश कर रहे थे, पहला सवाल ये कि कैसा रोमांच था आपके हृदय में और आकाशवाणी के मायने क्या है आपकी जिंदगी में?
1: मीनाक्षी जी, मैंने 33 वर्षों तक आकाशवाणी में अपनी सेवा दी
0: जी।
1: और मैं अभी जब आ रहा था तो आप आकाशवाणी के हर केंद्र में देखेंगे अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। और मैं बताऊं कि मैं जब यूथ था, भागलपुर में मेरी पढ़ाई हुई
0: जी,
1: तो मैं अलीगंज में आकाशवाणी भागलपुर का ट्रांसमीटर था, स्टूडियो भी वहीं था, तो मुझे लगता था कि मैं इसके अंदर जाऊं कैसे, वहां तो अनाधिकृत प्रवेश वर्जित लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने कविताएं लिखनी शुरू की थी, तो युवानी कार्यक्रम में मेरा पहला प्रवेश हुआ और मैं पहले दिन गया था तो इतना रोमांचित था कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने एक एक स्टूडियो को देखा, घूम घूम कर देखा, ट्रांसमीटर क्या होता है, इंजीनियरिंग स्टाफ कहाँ बैठते हैं, और डॉक्टर गंगेश गुंजन जो हमारे DDG होकर रिटायर हुए, वे उसमें पुराने स्कूटी थे, उन्होंने कई बार मुझे बाद में अवसर दिया। तो ये जो एक शब्द है अनाधिकार प्रवेश वर्जित है,
0: ये अपने आप में रोमांच,
1: ये रोमांच पैदा करता है कि अंदर है क्या,
0: है क्या,
1: क्यों ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन वो सुरक्षा के कारणों से है, वैसा है नहीं, क्योंकि आकाशवाणी का काम ही है लोगों से जुड़ना, लोगों को जोड़ना। तो ये मैं आज भी आ रहा था तो मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा।
0: पुरानी बात आपको याद आ गई?
1: बातें मुझे याद आई
0: बिल्कुल। और सर, पहली बार जब आपके पास ऑफर लेटर आया होगा, पहली बार आपको ये सूचना मिली होगी कि जिस आकाशवाणी को आप अपने हृदय से चाह रहे थे, अपने दिल से आप चाह रहे थे, उस आकाशवाणी में आपका पदस्थापन हुआ है, आपकी नौकरी सुनिश्चित हुई है, कैसा था वो रोमांच, कैसा था वो?
1: हुआ ये कि अभी तो मान लीजिए कि हम लोग पत्रिकाओं में पढ़ते हैं कि फलां कवि की अच्छी कविता आई है, मैं खुद संपर्क करता था, उन्हें बुलाता था, लेकिन उन दोनों वैसे कोई बात थी नहीं। तो उसमें क्या था कि मैं TNB कॉलेज भागलपुर का छात्र था, तो हुआ ये

0: मैं मुझे लगा मैं आकाशवाणी में कविता पढ़ने जा
1: भले ही उसका
0: रहा
1: मानदेय कितना भी हो, लेकिन
0: पच्चीस
1: वो
0: रुपए
1: लेकिन वो जो कागज मिला होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट मिला
0: मत
1: होगा, वो
0: पूछिए।
1: अपने आप में उसकी
0: कुछ
1: अहमियत बहुत
0: कॉन्ट्रैक्ट
1: होगी
0: अभी भी मैंने संभाल कर रखे हैं। मैं कभी अगर अगर ये विजुअल होता तो मैं दिखाता।
1: जी
0: और मुझे उसके बाद उन्होंने परिचर्चा में भी बुलाया, एक नवोदित कवित्री की कविताओं की समीक्षा के लिए भी मुझे बुलाया गया। मुझे खुद आश्चर्य था, मैं खुद नवोदित हूँ और नवोदित कवित्री थी
1: लेकिन आकाशवाणी की मुझे लगता है ये खासियत है, वो हुनर को बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं और जो आपके अंदर टैलेंट है उसको पहचान लेते हैं और उसका सम्मान भी आकाशवाणी का केंद्र पूरी तरह से करता है। मैंने ऐसा बहुत महसूस
0: बहुत
1: किया सर।
0: आकाशवाणी का काम ही है टैलेंट को खोजना।
1: जी
0: आप जैसे मान लीजिए कि आकाशवाणी भागलपुर का 18 जिला प्रसारण क्षेत्र है, तो उन 18 के प्रसारण क्षेत्र के हर टैलेंट को आपको खोजना है।
1: बिल्कुल।
0: और मैं बताऊं कि मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के रूप में, और संजोग देखे कि मेरी पहली पोस्टिंग ही मुख्यालय दिल्ली में हो गई। मैं विविध भारती से वहां था, तो वह 5.5 वर्षों तक वहां रहा और वहां मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने यह सीखा कि कैसे केंद्र के इंटरनल मैटर में एक डीडीजी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कई घटनाएं थी जो मुझसे ही जुड़ी हुई थी, लेकिन उतना लंबा बहुत जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैंने ट्रांसमिशन रिपोर्ट में डीडीजी के हस्तक्षेप के बारे में लिख दिया था और मेरे स्टेशन डायरेक्टर ने डीजी को उनके अगेंस्ट में लिख दिया था। वो एक अजीब सी बात, पता नहीं मुझे ट्रांसमिशन रिपोर्ट लिखने में मैं हमेशा निडर रहा। मुझे लगता था कि गलत हुआ है तो गलत हुआ है,
1: बिल्कुल।
0: और लोग मेरे बारे में कहते थे कि ये कितना सुनता क्यों है, मॉनिटरिंग क्यों करता है। ये भी कहानी है, कई पुराने लोग
1: बिल्कुल
0: तो
1: वो काम
0: बताएंगे।
1: के प्रति आपकी ईमानदारी थी कि आप ध्यान से कार्यक्रमों को सुनते थे और उसकी ट्रांसमिशन रिपोर्ट आप
0: उसका एक कारण ये था मीनाक्षी जी कि मैं भागलपुर का रहने वाला था, दिल्ली में था, कोई काम ही नहीं था, मैं तो ज्यादा समय गुजारता भी था। मेरे मित्र भी वहीं बने थे, जितने अच्छे अच्छे लोग हैं नाम मैं बताऊंगा, वे सभी मित्र बने थे। उसके बाद मैं 5.5 वर्षों के बाद मुझे बिहार आना था, कुछ घर में घटनाएं घटी थी, तो भारतीय सूचना सेवा में मेरा चयन हो गया और मैं भारतीय सूचना सेवा में, आप जानती हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय,
1: बिल्कुल,
0: सूचना और प्रसारण दो सेवाओं से मिलकर बना है, तो हम लोग प्रसारण सेवा के लोग हैं। सूचना सेवा में 14 विभाग हैं, जो आप जितने आकाशवाणी और दूरदर्शन को छोड़ दीजिए,
1: पत्र पत्रिकाएं वगैरह,
0: नहीं नहीं डीएवीपी डीएफपी फिल्म एंड पूना का फिल्म डिवीजन, फिल्म डिवीजन, फोटो डिवीजन, पीआईबी, ये सारे विभाग भारतीय सूचना सेवा का
1: बहुत बड़े दायरे में काम करते हैं।
0: तो डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी में मैं फील्ड पब्लिसिटी अफसर होकर भागलपुर आया और मेरा चयन 1 वर्ष के लिए हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मुझे 5 वर्षों तक एक्सटेंशन मिलता रहा।
1: क्या बात है,
0: मैं समझ नहीं पाता था, मुझे लगता था कि क्या कारण है, हो सकता है मेरा जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जाता होगा और कुछ उनको लगता होगा कि मैंने काम किया है,
1: संतोषजनक से ज्यादा अच्छी होती होगी।
0: लेकिन जब मैं पुराने स्कूटी में प्रमोट हुआ तो मैं अपने मूल विभाग लौट आया
1: जी,
0: क्योंकि
1: तब आप प्रसारण सेवा में आ गए।
0: फिर प्रसारण सेवा में फिर आ गया
1: जी,
0: और मेरी पहली पोस्टिंग आकाशवाणी भागलपुर में हुई
1: जी।
0: वहाँ मैं 8.5 वर्षों तक रहा।
1: क्या बात है।
0: और जी
1: सर, अनिल सर, आपने जैसा बताया कि आपने तकरीबन 33 वर्षों तक आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दी हैं, तो कभी तो ऐसा समय आया होगा जब आपको लगा कि नहीं ये बहुत चुनौती भरा काम है, कौन से काम को आपने चुनौती के रूप में लिया और उस चुनौती को पार पाने के लिए आपने बहुत शिद्दत से कोशिशें की, कैसा कोई एक ऐसा वाक्य आप बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: दो तीन वाक्य बता देता हूँ, एक नहीं मैं बताऊँ कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, कार्यक्रम अधिशासी हिंदी में कहते हैं, उनका काम बहुत जोखिम से ही भरा हुआ है। जब हम एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भरते हैं तो उसमें हमारा कार्य बताया जाता है, प्लानिंग प्रोडक्शन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिफरेंट प्रोग्राम असाइन टू मी। वो असाइंड जो प्रोग्राम है उसका हम योजना बनाते हैं, उसको क्रियान्वित करते हैं, प्रस्तुति देते हैं और प्रशासन मतलब चेक भी समय पर मिल जाए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं
1: जी।
0: जब आप प्रोग्राम हेड के रूप में काम करेंगे तब आपको लगेगा कितने काम है, लेकिन इसके अलावा भी मैंने कई बार जोखिम उठाया। मैं एक दो चर्चा भी कर देना चाहता हूँ। एक बार यही रांची में मैं 2006 में डाल्टनगंज से ट्रांसफर होकर आया था और 2007 में अचानक पीएमओ से एक पत्र आया
1: जी,
0: उसमें देश भर के 10 चुने हुए कलेक्टर की चर्चा थी, उसमें झारखंड के 2 कलेक्टर थे, के सोन साहब और आराधना पटनायक, इन दोनों ने काफी अच्छा काम किया था। और वहां से आया चिट्ठी पीएमओ से, इन चीफ सेक्रेटरी ने जिनके काम के बारे में भेजा है आप वहां जाकर पता कीजिए उन्होंने यह काम किया भी है या नहीं। और उस समय के सोन साहब लातेहार के डीसी थे और आराधना पटनायक लोहरदगा की डीसी थी, तो 2 टीम बनी। लोहरदगा के लिए गणोरी राम जी गए, उन्होंने वहां पे डेयरी प्रोजेक्ट का काम किया था, दूध के क्षेत्र में अच्छा काम किया था, लेकिन ये लातेहार वाला के सोनू साहब का काम था,

0: बड़ा दुर्गम था, अब बहुत ज्यादा उन्होंने काम
1: बिल्कुल
0: किया
1: वो पहाड़ों पे जाते थे, वहां काम किया करते थे।
0: आप जानिए ना, आप तो बहुत पुरानी ब्रॉडकास्टर। तो हुआ क्या कि एक टीम बनी और मेरे साथ दिनेश लाल गए और हम हमारे साथ ड्राइवर थे, हम लोग गए। तो जिला प्रशासन को हमने सूचित कर दिया था, क्योंकि हमें पता था कि वो नक्सली क्षेत्र है। जिला प्रशासन ने हमें गार्ड दिया था गाड़ी में, तो उन्होंने पहले बता दिया था कि बिशुनपुर से जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको दिन में भी गाड़ी का लाइट जला के चलना और हॉर्न बजाते हुए जाना। हाँ। क्योंकि वो लोग अगर मतलब वैसा नहीं करेंगे तो वे समझेंगे पुलिस वाले हैं।
1: बिल्कुल।
0: हम लोग बिशुनपुर से जैसे ऊपर, उन दिनों से रोड भी नहीं बना था मीनाक्षी जी, हम लोग ऊपर गए, ड्राइवर ने हॉर्न बजाना शुरू किया, लाइट जला दिया हेडलाइट, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने जब ऊपर देखा तो बंदूक लिए हुए कई सारे लोग घूमते हुए नजर आए। हमें वो दिन भी याद है। और
1: सुनिए, लगा
0: मैं बता रहा हूँ, लगा तो जो लगा मैं तो धक सा रह गया ले जा, जोखिम कितना है और वो करना है। पीएमओ की चिट्ठी, आपको डीजी के यहाँ से पत्र आएंगे, होम मिनिस्ट्री से आएंगे, होम मिनिस्ट्री की चर्चा मैं करूंगा एक कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल।
0: तो इन्होंने हमें करना था। और फिर हम लोग वहां से गए तो हम लोग पहले महुआ डांडी सीधे चले गए, क्योंकि हमें जो पता था कि महुआ डांडी में काम हुआ है, डांडी कोना में जो असुर जाति जो विलुप्त होती है वहां भी हम गए थे। तो लौट कर जब आए तो जिला प्रशासन ने होटल नटराज विहार में जो कमरा हमें उपलब्ध कराया था गार्ड ने खोला, हम लोग कमरे में गए तो क्या देखा पता है?
1: क्या देखा सर?
0: एक पूरा पलंग उड़ा हुआ था, दो दिन पहले वहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उस कमरे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। और मैं और दिनेश जी तो सकते में, लेकिन अब हमें रात में तो वहां रुकना ही था
1: जी।
0: तो उन लोगों ने क्या किया था, पलंग का जो कोना टूटा था वहां ईंट से खड़ा कर दिया था। तो वो ड्राइवर और दिनेश से सो गए, मैं सोफा पर सो गया। ये आप समझ लीजिए क्या। उसके बाद अगले दिन हम लोग जब आए तो डांडी कोना एक गाँव है जहाँ विलुप्त होती है जनजाति असुर वहां रहते हैं। उनके बीच में के सोन साहब ने बहुत सारा काम किया था, बकरी पालन का, मुर्गी पालन का, उन्हें ऑटो दिलाया था, तो वो हमें जाना था। अब वहां से गए जो 5 किलोमीटर अंदर जंगल के रास्ते में, उसमें भी मैं काफी लोगों में दिखाई दिए ऊपर और हम लोग राम राम करके वहां पहुंचे और उन लोगों से हम लोगों ने इंटरव्यू लिया और वहां से चलाया। एक दूसरी घटना की चर्चा करना चाहूंगा, जब मैं आकाशवाणी भागलपुर में पोस्टेड था तो वहां पर बासुकीनाथ एक जगह है, आप जानते हैं। वहां पर हर साल फरवरी महीने में महामस्तकाभिषेक होता है। तो डीजी के यहाँ से वहां के लोकल सांसद ने पत्र लिख दिया था और पत्र आया कि आपको उसका कवरेज करना है, और कवरेज ही नहीं करना है, वहां एक संगीत संध्या भी आयोजित करना है। तो वहां एक भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ, हम लोगों ने किया, 11 बजे भजन संध्या समाप्त हो गया। चूंकि आकाशवाणी की एक बहुत अच्छी बात किया है कि हर चीज समय पर शुरू होता है, समय पर समाप्त होता है। तो 11 बजे हो गया। उसके बाद वहां के बीडीओ ने जो हम लोगों को डाक बंगला में ठहराने की व्यवस्था की थी, हम लोग देखने गए तो देखे कि उसमें जाले लगे हुए हैं, कई महीनों से खुला नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भागलपुर वापस लौट जाते हैं, खाना वाना खाते वाते एक बज गया, हम लोग लौटने लगे। दो जीप में, आपको याद होगा ब्लू कलर वाली जीप पहले आती थी यूनिसेफ की, वो आकाशवाणी को दिया गया था
1: जी।
0: हम लोग थे, हमारे स्टेशन इंजीनियर थे, डायरेक्टर थे, एक शांति जैन कलाकार थी मुजफ्फरपुर की, वो आई थी। उन्होंने कहा कि मैं भागलपुर जाके अपर इंडिया एक्सप्रेस पकड़ूंगा। हम लोग सत्य एक घंटे के बाद जहां पर बिहार और झारखंड का बॉर्डर है, वो भलजोर पुल है, वहां पर
1: कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे थे।
0: भलजोर पुल पर हम पहुंचे तो सामने देखा कि कुछ ट्रकें और बसें लगी हुई हैं लाइन से। हमारी भी गाड़ी जाके खड़ी हो गई। तो हम लोग का हेडलाइट जो देखा था ना, वो लोग छिप गए थे। दरअसल जैसे ही गाड़ी रुकी, 25-30 डकैतों ने हमें आके घेर लिया। वे डकैत थे।
1: क्या स्थिति रही होगी सर, मैं कल्पना कर रही हूँ।
0: फरवरी के महीने में हम लोग, इतनी ठंड थी,
1: फिर भी पसीने
0: से भर गए। मैं ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जानबूझ के बैठा था। सामने में आर्यन प्रसाद इंजीनियर थे, बीके शुक्ला साहब थे स्टेशन डायरेक्टर, मैं और अरुण पासवान पैक्स थे पीछे बैठे थे, एक और मैं शांति जैन थी, लेखापाल थे। एक परंपरा है कि जब स्टेज पर कार्यक्रम होता है तो कलाकारों को वहीं
1: वही चेक दिया जाता है।
0: तो एक लेखापाल
1: बहुत समृद्ध परंपरा है।
0: चेक बुक लेकर रखे हुए थे और सब सॉल उड़े हुए, लेकिन उन्होंने इतना ही नहीं किया, हम लोग को सभी को गाड़ी से बाहर निकाला और उस ठंड में सड़क पर एक लाइन से खड़ा कर दिया। हम लोग 12 लोग थे और सबको कनपट्टी लगाया, सबके सारे सामान छीने, मेरी भी अंगूठी और घड़ी गई, पर्स भी सबका ले लिया। उसके बाद वो पूरा लुटा और हम लोग 15 मिनट थरथराते तब उन्होंने कहा बैठो, फिर हम लोग जल्दी से बैठ गए। लेकिन उसके बाद भी नहीं, फिर उन्होंने वो किधर से गायब हुए हमें पता नहीं, लेकिन जब 4 बज गए तब हमें लगा भी लोग नहीं है। फिर धीरे धीरे आगे गाड़ी गई, हम लोग ही गए। हम लोग वहां से चले तो गए लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। भागलपुर पहुंचते ही हमारे स्टेशन डायरेक्टर ने बांका के एसपी को टेलीफोन किया, वो बांका जिले में पड़ता है। एसपी ने वहां से अपने डीएसपी वगैरह को भेजा, हमारा ये हुआ। फिर 2 दिन बाद टीआई, कुछ लोग

0: पकड़ाए, टीआई पैरेड हुआ, हम जेल में भी गए थे देखने के लिए उनको। लेकिन बात यह थी कि उसके अगले दिन, मीनाक्षी जी मैं बताऊं, उन दिनों स्थानीय स्तर पर इतने सारे अखबार निकलते नहीं थे, सारे अखबार पटना में छपते थे, सबका ब्यूरो कार्यालय भागलपुर में था, रांची में था। तो ब्यूरो कार्यालय वालों को भनक लगी, अगले दिन वो आए और उन्होंने
1: खबर बन गई।
0: और आपको आश्चर्य होगा कि पटना से छपने वाली सारी अखबारों का हेडलाइन था कि आकाशवाणी के अधिकारी कर्मचारियों को डकैतों ने लूटा। तो ये जोखिम जो है
1: खबर बनी सर, ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन जो डर का भय का माहौल रहा होगा उस चीज को याद करके शायद अभी भी सिरन होती होगी मुझे लगता है।
0: मैंने हम लोग तो मौत के मुंह से ही वापस आए थे। वैसे अवसर पर कभी दुस्साहस नहीं करना चाहिए, आप साहस करते हैं, दुस्साहस कभी नहीं होना चाहिए,
1: सजग रहना जरूरी है।
0: तो हमें वो घटना कभी,
1: वो तो ईश्वर का ये रहा आशीर्वाद रहा कि सब सुरक्षित निकल आए, दोनों ऐसे जो दोनों घटनाओं की आपने बात की। तो श्रोताओं आप भी सुन रहे होंगे अनिल सर से कि कितना दुरूह हो जाता है कई बार आकाशवाणी में काम करना, आकाशवाणी के पदाधिकारियों की जवाबदेही मुझे लगता है सिर्फ रिकॉर्डिंग करना और उसको ब्रॉडकास्ट करना भर नहीं है, लेकिन जब आप बहुत दुरूह क्षेत्रों में जाते हैं और किसी काम को अंजाम देने की जवाबदेही आती है तो हर मुश्किलात का सामना आपको करना ही पड़ता है। और सर इसके बावजूद आकाशवाणी तमाम मुश्किलें हो, तमाम चुनौतियां हो, बावजूद इसके आकाशवाणी रांची ने अब अपने स्थापना के 50 वर्ष स्वर्ण वर्ष का आयोजन किया। उस समय मैंने आपकी बहुत सारी भूमिका देखी और बहुत श्रृंखला में कार्यक्रम आयोजित हुए। सर उन अविस्मरणीय पलों को थोड़ा सा फिर से याद कर लेते हैं आज।
0: जी 2007 में आकाशवाणी रांची का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया था, काफी विस्तृत आधार पर। मैं 2006 के सितंबर में ट्रांसफर होकर आया, उसके पहले निवास चंद ठाकुर जी ने और शुक्ला जी ने बहुत अच्छे प्रयास से कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि 27 जुलाई हमारा स्थापना दिवस है। तो सैयद सिप्ते रजी साहब जो राज्यपाल थे वो उद्घाटन समारोह में आए थे और मैं ठाकुर जी के स्थान पर स्थानांतरित होकर आया था, तो अब वो सारा काम मुझे करना था। तो उसके बाद हम लोगों ने दो तीन बहुत सारे काम साल भर किए, लेकिन तीन कामों की चर्चा, चूंकि आकाशवाणी रांची की बात है
1: जी।
0: एक तो यह है कि जैसे आप अभी मेरा साक्षात्कार कर रही हैं, तो 13 कड़ियों का एक सुनहरे पल का साक्षात्कार कार्यक्रम मैंने किया था
1: जी। एक श्रृंखला
0: चली थी, हर सप्ताह वो कार्यक्रम प्रसारित होता था, उसमें दिनेश्वर प्रसाद जी, श्रवण कुमार गोस्वामी जी, अशोक प्रियदर्शी जी, डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार जी जैसे लोग
1: साहित्य और कला के क्षेत्र के जाने,
0: उनका इंटरव्यू मैंने लिया। दिनेश लाल जी एडिटिंग और डबिंग का काम करते थे, राजेश कर्मे जी ने भी बहुत उसमें सहयोग किया था
1: जी।
0: तो वो एक कार्यक्रम उन्होंने किया। दूसरी तरफ क्या हुआ कि एक योजना बनी कि 50 वर्ष है, उसके बाद तो 75 वर्ष होगा या 100 वर्ष होगा, तो हमें एक स्मारिका निकालना चाहिए आकाशवाणी रांची। अब इन 50 वर्षों में आकाशवाणी रांची ने क्या क्या किया है, तो मेरे सामने वो स्वर्ण तरंग है, लेकिन
1: मैं भी देख रही
0: विजुअल नहीं है,
1: लेकिन मैं देख रही हूँ, लेकिन और मैं उसको लेकर आया भी कर रही हूँ,
0: मैं उसको लेकर आया हूँ। ये स्मारिका हम लोगों ने निकाला था,
1: बिल्कुल, जो स्वर्णिम इतिहास है वो पूरा अंकित है
0: पूरा। और आपको आश्चर्य होगा इसके जो विषय लिए गए और इसके तीन कमेटियां बनाई गई, संपादक मंडल, वित्त समिति और प्रबंध समिति
1: जी।
0: तो स्वाभाविक था संपादक मंडल में मैं था और आत्मेश्वर झा थे और गौतम सेन गुप्ता साहब थे, गणोरी जी भी थे और श्याम किशोर सिंह को भी हमने रखा था। फिर ये ऐसे कार्यों के लिए आकाशवाणी के पास कोई फंड नहीं होता है, तो हमें विज्ञापन लेने थे, हम लोगों ने मैकॉन वगैरह सबसे विज्ञापन लिए, बहुत सारे विज्ञापन लिए, उससे फंड आया, तब ये छप आया। और उसके बाद एक ये इसमें जो विषय लिए गए वे सारे के सारे विषय, रेडियो नाटक और शिल्प सिद्धनाथ कुमार, झारखंड के लोकगीत गिधाय राम गोंझू, हिंदी साहित्य और आकाशवाणी अशोक प्रियदर्शी, आकाशवाणी को हम नहीं भूल सकते विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, आकाशवाणी रांची की उपलब्धियां श्रवण कुमार गोस्वामी, आकाशवाणी और रंगमंच कमल कुमार बोस, स्वस्थ चर्चा और आकाशवाणी डॉक्टर धर्मेंद्र,
1: मतलब
0: यानी उस क्षेत्र के
1: तमाम चीजों को समेटने की
0: लकड़ा जी के और विजय लक्ष्मी सिन्हा जी का इसमें ये भी था अनुभव, संस्मरण भी था। जो आकाशवाणी जिन जिन कार्यक्रमों को करता है उसके जो विशेषज्ञ लोग थे उनसे हम लोगों ने आलेख लिए,
1: बिल्कुल।
0: और इसमें जो शुभकामना संदेश हमें मिले वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती के सीईओ, डीजी और डीजी सबके मिले,
1: मतलब भारत सरकार से लेकर यहाँ तक
0: सबके मिले, मुख्यमंत्री के मिले, गवर्नर के मिले, सबके मिले, काफी प्रयास किया गया। एक तो ये काम हुआ, हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कम 50 वर्षों का इतिहास तो लोग कभी लौट कर पढ़ेंगे तो जान जाएंगे आकाशवाणी रांची क्या था,
1: और एक यादगार
0: क्षेत्र में और एक मूलवासी आदिवासी क्षेत्र में आकाशवाणी रांची ने बहुत सारा काम किया है, ये तो मैंने भी महसूस किया जो कि मैं दिल्ली और आकाशवाणी भागलपुर में भी रह चुका था उसके पहले। तो ये संस्मरण कार्यक्रम के प्रस्तुति से ज्यादा अच्छा है कि लोग जाने कि कार्यक्रम अधिशासी को

0: प्रशांत जी हैं
1: जी,
0: इस कार्यक्रम को समझो
1: क्या कुछ करना पड़ता
0: क्या
1: है,
0: क्या करना पड़ता
1: सिर्फ
0: है, क्या
1: टॉकर को इनवाइट करना या प्रोग्राम को की रूपरेखा बनाने लेना ही काफी नहीं होता है बल्कि उसको प्रसारित करने से लेकर जो आपके आमंत्रित अतिथि होते हैं उनको पेमेंट तक की जवाबदेही पूरी की पूरी
0: बिल्कुल। और आपको टेलीफोन भी आने लगेंगे, अगर आपको चेक नहीं जाएगा तो फिर आपको जाना पड़ेगा। आप ये मत समझिए कि आप उसमें पूरा अफसर है।
1: बिल्कुल सर, इस समय
0: एक और मैं बताऊँ, स्वर्ण जयंती वर्ष की एक
1: जरूर
0: अंतिम समय में हमने 3 दिनों की एक यहाँ प्रदर्शनी आयोजित की थी। ये भी अपने आप एक अनोखा था
1: जी।
0: 3 दिनों तक प्रदर्शनी आकाशवाणी रांची के सफर पर, और उसका उद्घाटन उसमें जो वाइस चांसलर थे रांची यूनिवर्सिटी के ए खान साहब, उन्होंने किया था। और वो उस प्रदर्शनी में हम लोग तो थे ही, लेकिन मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा, देवी राय जी, रमाशंकर जी और केसी सिन्हा जी, लोगों ने काफी सहयोग किया
1: जी।
0: और आकाशवाणी का काम एक टीम वर्क है, हमेशा याद रखिए।
1: बिल्कुल,
0: एक स्टेशन डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, एडमिशन चलाएगा, हम पैक्स भी नहीं कर सकते अगर हमारे ड्यूटी अफसर का अनाउंसर का सहयोग न मिले। एक टीम वर्क है, ड्राइवर न मिले हम वो भी में न जाए, भैया ध्यान अंकर न करे, हो ही नहीं सकता, वो ऑफिस का काम ही नहीं है वो।
1: बिल्कुल, साझा प्रयास।
0: इंजीनियरिंग स्टाफ ने भी बहुत मदद की थी, कैसे 3 दिन का आयोजन जो हुआ था उसमें जब खान साहब आए और उन्होंने उद्घाटन किया तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रांची विश्वविद्यालय में एक दिन छुट्टी कर दी थी
1: कि लोग आए,
0: पत्रकारिता विभाग के लोगों को कहा कि तुम 3 दिन वहां जाओ देखने के लिए
1: जी।
0: और पत्रकारिता विभाग के सारे लोग यहां आते थे। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात क्या हुई थी, आपको आश्चर्य होगा कि रांची के पास बहुत समृद्ध परंपरा है और है इसके पास सामान। भले हुआ क्या कि 50 वर्षों में जो वाद्य यंत्र थे, जो परिवर्तन हुए सारे वो उसमें,
1: अच्छा
0: तंबूरा जो कि आजकल यूज में नहीं आता है, अगर यहाँ म्यूजिक के स्टूडियो में प्रशांत जी कभी खोलकर देखेंगे तो वो उसके स्टोर में वो मौजूद होगा। वो जितने पुराने वाद्य यंत्र जो तब्दीली, वो हम लोगों ने प्रसारित किया,
1: प्रदर्शनी हुई,
0: और जो मशीनें जो तब्दीली हुई, कैसे हम लोग जब एडिटिंग करते टेप काट के सेलो टेप चिपकाते थे, आज तो बैठ करके एडिटिंग कर लेंगे,
1: स्कूल
0: पे करते थे, वो सारे मशीन वहां एग्जीबिट किए गए। और जो सबसे अच्छी बात क्या हुई कि श्रवण कुमार गोस्वामी जी के पास स्थापना दिवस का 1957 का उनको आमंत्रण पत्र गया था, वो पत्र उनके पास था, वो एग्जीबिट हुआ। तो ये हम लोगों ने सारा काम उस समय किया था,
1: बहुत अच्छी कोशिश रही और उन स्वर्ण जयंती के वर्ष को बहुत यादगार आपने बना दिया। और इसीलिए जो उत्साह मैं देख रही हूँ,
0: गौतम सेनगुप्ता साहब का भी नाम लेना चाहूंगा, वे हमारे प्रोग्राम हेड थे और उनके ही मार्गदर्शन में हम लोगों ने किया। मैंने बहुत कूल वैसा स्टेशन डायरेक्टर बहुत कम देखा और हमने सीखा भी उनसे बहुत कुछ।
1: बिल्कुल सर, ये तो आपके कामों की बात हुई और बहुत शानदार तरीके से आपने हर चुनौती और हर एक खुशी को आपने शामिल करने और लोगों तक पहुंचाने का काम किया आकाशवाणी में कार्यक्रम अधिशासी रहते हुए। लेकिन अब जब बहुत सारे चैनल आ गए हैं, हम प्राइवेट तौर पर भी देखते हैं, लेकिन आकाशवाणी की अपनी एक अहमियत है, आकाशवाणी का अपना एक स्थान है, आकाशवाणी की अपनी एक पहचान है, आकाशवाणी की अपनी एक निष्पक्षता है। तो इस निष्पक्षता और इस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए एक कार्यक्रम अधिशासी या आकाशवाणी से जुड़े लोगों को कैसी छोटी छोटी कोशिशें जरूरी बनती हैं?
0: आकाशवाणी के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि आकाशवाणी एकमात्र चैनल है जो भाषा, तथ्य और समय पर कायम रहता है।
1: बिल्कुल,
0: आपने कभी नहीं देखा होगा कि 9:15 का न्यूज 8:50 पर प्रसारित हुआ हो।
1: बिल्कुल,
0: पहले के कार्यक्रम काट दिए जाएंगे लेकिन कार्यक्रम समय पर ही शुरू होगा। हम अभी भी कम से कम, मुझे गर्व है कि आकाशवाणी भाषा पर कायम है, कभी समझौता हम नहीं करते।
1: बिल्कुल,
0: हम कोई अवांछित सब नहीं जाने देते, हम जो ये यार ये वे जो बोलते हैं कभी नहीं होगा, हमारा एक
1: मर्यादित
0: स्वस्थ परंपरा है ये आकाशवाणी का, ये हम इस तरह से शुरू करते हैं। और तथ्य, आकाशवाणी तथ्य पर विश्वसनीयता, तथ्य फैक्ट पर काम करता है
1: जी।
0: कल्पना का फीचर आप बनाएंगे, ड्रामा बनाएंगे तो हो सकता है स्थान हो, लेकिन आप जितने भी रिकॉर्डिंग करते हैं, टॉक करती हैं, वो सारे तथ्य पर कायम होते हैं और होते हैं। और आकाशवाणी की विश्वसनीयता मैं बताऊं कि मैंने बताया है शुरू में कि मैं कविता पढ़े जाता था तो कितना खुश रहता था, लेकिन एक जो बड़ी बात मैं बता रहा हूं, आकाशवाणी की नौकरी में मैं आया ही इसलिए क्योंकि मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया था और मैंने राज्य सरकार की नौकरी छोड़ दी थी। तो आप इसी से अहमियत का पता लगा सकते हैं कि आकाशवाणी का मेरे जीवन में कितना महत्व रहा होगा।
1: बिल्कुल, और बहुत अच्छे, बहुत यादगार से पल रहे होंगे, जिन यादों को आप समेट कर हमारे सामने ला रहे हैं, हमारे श्रोताओं के सामने ला रहे हैं, वो रोमांच मुझे नजर आ रहा है, हम अनुभव कर पा रहे हैं। सर, आकाशवाणी की ये यात्रा ऐसी ही चलती रहे, हम सब लोग जो इससे जुड़े हैं उनकी यही कोशिश रहती है। तो सर, बहुत मन करता है कि बहुत सारी बातें, क्योंकि इतने अनुभव आपके पास हैं, 33 वर्षों के अनुभव को 33 मिनट में समेटना

0: नामुमकिन होता है, फिर भी समय की, जैसा आपने कहा, समय का बहुत पाबंद होता है आकाशवाणी, तो समय की बंदिशों को ध्यान में रखते हुए चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप कुछ बताना चाहेंगे जो उनके लिए भी यादगार हो और हम सब के लिए यादगार हो जाए?
1: आकाशवाणी कितनी अहमियत वाली संस्था है
0: जी।
1: जब महात्मा गांधी आकाशवाणी दिल्ली गए रिकॉर्डिंग के लिए, तो उनकी रिकॉर्डिंग के तिथि पर एक आकाशवाणी का वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम भी होता है, आप समझ सकती हैं। उसी तरह कवि गुरु विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जब आकाशवाणी कोलकाता गए थे तो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने एक कविता ही लिख डाली आकाशवाणी।
0: और सर अगर संभव हो तो आप ये कविता हमारे श्रोताओं को सुनाए तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा।
1: मैं इसलिए सुना दूंगा क्योंकि उसका एक भावानुवाद मैंने खुद हिंदी में किया है।
0: अंग्रेजी में कविता,
1: हाँ कविता अंग्रेजी में थी, मुझे लगता है मूल कविता बंगला में ही होगा क्योंकि जब गीतांजलि को भी पुरस्कृत किया गया नोबेल प्राइज से तो उसका अंग्रेजी अनुवाद को ही किया गया था। लेकिन मेरे पास वो, क्योंकि मन की बात कार्यक्रम जब शुरू हुआ था तो उसके कुछ कड़ियों पर मैंने कुछ लेख लिखे थे, उन दिनों मैंने यह अनुवाद किया था और ये हिंदुस्तान अखबार ने उसको छापा
0: था। जरूर हमारे सभी श्रोता इसे सुनना चाहेंगे सर।
1: तो ये मूल कविता रविन्द्रनाथ टैगोर की है, शीर्षक है आकाशवाणी, उसका भावानुवाद मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ।
0: स्वागत है सर।
1: आकाशवाणी से आती वाणी को ध्यान से सुनो, आकाशवाणी से आती वाणी को ध्यान से सुनो, मानो पृथ्वी स्वर्गिक यश से नहाई हो। ज्यो नीले रंगों वाला आकाश ईश्वरीय वेदी पर समाया हो, ज्यो नीले रंगों वाला आकाश ईश्वरीय वेदी पर समाया हो, मानवीय संवेदनाओं से पूर्ण ध्वनि जो पहले सुनी नहीं गई, मानवीय संवेदनाओं से पूर्ण ध्वनि जो पहले सुनी नहीं गई, पृथ्वी से स्वर्ग तक की दूरी उज्ज्वल प्रकाश और ध्वनि से जीत ली गई।
0: वाह।
1: पृथ्वी से स्वर्ग तक की दूरी उज्ज्वल प्रकाश और ध्वनि से जीत ली गई।
0: जी।
1: आदमी की कल्पना संगीत के रूप में स्वर्ग से आ रही है।
0: वाह क्या।
1: आदमी की कल्पना संगीत के रूप में स्वर्ग से आ रही है और पूरब से पश्चिम तक संवाद सूर्य की रोशनी के समान तेजी से जा रहा है।
0: क्या बात है।
1: मानव मन ने अपने को कर लिया है कैद मुक्त, मानव मन ने अपने को कर लिया है कैद मुक्त और पार लिया आजादी होकर संयुक्त।
0: क्या बात है। मतलब गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी आकाशवाणी को इतनी महत्ता दी, इसके संवाद को, इसके संगीत को, इसके साक्षात्कार को अपनी कविता के चंद पंक्तियों में उन्होंने समेटने का काम किया। और सर आपकी लंबी यात्रा के स्वर्णिम पलों को आपने आज हमारे साक्षात्कार में समेटने का काम किया और हमारे श्रोताओं के सामने रखने का काम किया। तो बहुत सारी बातें हम चाहते हैं और मौका मिला तो हम फिर बातें करेंगे, लेकिन आज यही अनिल किशोर सहाय सर, हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका कि हमारे आमंत्रण को आपने स्वीकार किया और इतनी यादों को समेटे हुए आप हम तक आए और बहुत दिल खोल के आपने बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आकाशवाणी रांची का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, समय समय पर सेवानिवृत्ति के बाद मुझे बुलाते रहते हैं।
0: जरूर सर।
1: और जो हमारे श्रोता हैं उनको मैं इस 90 वर्ष के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप आकाशवाणी के कार्यक्रम को सुनते रहें। मैं तो अभी भी सुनता हूँ। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वर यात्रा के 90 वर्ष। अनिल किशोर सहाय पूर्व कार्यक्रम अधिकारी से मीनाक्षी शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की।
1: भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जग

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है आपके फरमाइशी गानों का कार्यक्रम आपकी पसंद बस कुछ ही पलों में।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आभा का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे सबसे पसंदीदा शो आपकी पसंद में। तो चलिए पहली पसंद लेते हैं सिकंदराबाद से। आप हैं किरण कुमार गगन पुत्र और गांधी चौक रोपर पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जयतेक वीरक, मीका वीरक। और ये सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दिल तुझको दिया का ये गाना, गीत और संगीत राजेश रोशन का।

अगला गाना है फिल्म क्रिमिनल से, आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, संगीत MM करीम का और गीत लिखे हैं इंदिवर ने। और इस गाने को सुनना चाहते हैं सरगुजवा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। और हैदराबाद से हैं अक्षय कुमार प्रभाकर, जेल रोड मथुरा से हैं वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार।

हमारे अगले श्रोता हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गवहानकर राही, श्रीमती सरिता गवहानकर और प्रिंस एकांश गवहानकर, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म हमराज का ये गीत। आवाज है अलका याग्निक की, बोल समीर के, संगीत हिमेश रेशमिया का।

हमारे अगले श्रोता हैं उत्तर प्रदेश से अमित कुमार और रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा लचनपुर से हैं, विश्वनाथ साहू लेवई से हैं, गुलाब दास मानिकपुरी और दतरेंगी से हैं भागवत वर्मा, और ये सुनना चाहते हैं 1981 की फिल्म सिलसिला का ये गाना, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, जावेद अख्तर ने गीत को लिखा है, संगीत शिव हरी का।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज में, नक्स लयालपुरी की रचना है, संगीत खयाम का, फिल्म है खानदान। और इस गाने को सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और अमित कुमार राय।

0: बहनों नमस्कार, हृदय तल से स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आपकी अनदेखी सी उपस्थिति भी हमें आपके आत्मीय साथ का एहसास देती है और आपका ये स्नेह हमें हर दिन कुछ नया करने की प्रेरणा देता है।
1: कितनी सुंदर बात कही राखी तुमने, तो मन में प्यार और आभार लिए आज के कार्यक्रम को लेकर हाजिर हैं हम दो सखियां राखी और निधि।
0: बिल्कुल, आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगी और इस चिलचिलाते धूप और मौसम की बेरुखी में भी अपना ख्याल रख रही होंगी, ये आशा करते हैं हम, है ना निधि?
1: हाँ बिल्कुल, हमारी बहनें अपना ख्याल तो रखती हैं और पूरे परिवार की देखभाल की भी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है ना राखी? तो सखियों, हरे भरे पेड़ पौधे, बलखाती नदियाँ, तालाब, झील, झरने, पक्षियाँ, और इन पक्षियों का
0: जो कलरव है,
1: लहलाते खेत हैं, मन का सारा तनाव हर लेते हैं। क्योंकि राखी ने बात की चिलचिलाती धूप की, तो मैंने सोचा कि मैं दूसरी तरफ ले चलूं अपनी सखियों को।
0: और थोड़ी ठंडक तो महसूस हो।
1: बिल्कुल, ठंडक ना सही लेकिन अगर शब्द भी ऐसे है ना राखी कि हम बिल्कुल उसी दुनिया में चले जाते हैं, है ना?
0: और हमारी प्रकृति हमें जीवंतता देती है, हम पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, हमारा जीवन इसी पर निर्भर है।
1: शुद्ध पर्यावरण, स्वच्छ जल, शुद्ध वायु हमारे जीवन की आवश्यकता है बहनों, ये तो हम सभी जानते हैं, और इसे बनाए रखने में हमारा ही योगदान है। आजकल आधुनिक जीवन शैली में हम प्रकृति का जो अंधाधुंध जो दोहन कर रहे हैं, इसे हमें रोकने की बहुत जरूरत है।
0: बिल्कुल, कटते हुए पेड़ और बढ़ते हुए कंक्रीट के जंगल ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। जल स्रोत सूखते जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं ये बता रही हैं कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति अब हमें सचेत होना ही होगा।
1: हाँ बिल्कुल, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हुए ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रकृति क्रुद्ध अगर होगी तो इंसान असहाय हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति के सामने हम सभी बेबस हैं।
0: हाँ, हमें हमेशा देखने को ही मिल रहा है आए दिन कि प्रकृति कैसे क्रुद्ध हो रही है और कैसे इंसान असहाय महसूस कर रहा है, और हमें समाधान ढूंढना होगा। ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वायु प्रदूषण की रोकथाम, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना, ये सब बेहद जरूरी है, जो कि हमेशा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन इसे दैनिक जीवन में प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है।
1: हाँ, और इसे इस पर हम अमल करते हैं लेकिन उतना नहीं जितना हमें करना चाहिए, वैसे जानकारी तो हम सभी के पास है। तो बहनों, इसकी शुरुआत घर से ही की जा सकती है। बिजली की बचत करें, पानी की बूंद बूंद बचाएं, और बच्चों को भी सिखाएं कि रोजमर्रा के कामों में पानी कैसे बचाना है, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, तो हम बड़े ही उनको सिखा सकते हैं, और बहुत ही कम उम्र से ये सब बातें जो हैं वो सिखाने की जरूरत है। क्योंकि बच्चे जो है ना राखी, उनको पानी से खेलना भी बहुत पसंद होता है, और इसी क्रम में वे पानी बर्बाद करते हैं तो उन्हें पता भी नहीं चलता।
0: बिल्कुल, जैसे
1: जिम्मेदारी है उन्हें बताने,
0: ब्रश करते समय या स्नान करते समय, हर समय, जैसे कभी कभी हम लोग नल खुला छोड़ देते हैं, कभी झरने खुले छोड़ देते हैं, ये सब जो है, इससे बहुत पानी बर्बाद हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये चीजें बहनों को सिखानी होगी, बच्चों को भी, और खुद भी वैसा ही करें, और पौधे लगाएं और उन्हें संरक्षित करें। जीवन के विशेष दिनों में पौधे उपहार दें, हर जन्मदिन कुछ पौधे अवश्य लगाएं, हर किसी के जन्मदिन पर, जैसे अगर घर में चार सदस्य हैं तो चारों अपने अपने जन्मदिन पर अगर पौधे लगाएंगे तो चार पौधे लग गए, है ना? और एक पेड़ माँ के नाम, इस अभियान का हिस्सा जरूर बहने।
1: बहुत सुंदर बात बताई कि अगर हम पेड़ लगाएं कुछ ऐसे अवसर पर तो हमें याद भी रहेगा, क्योंकि अपना जन्मदिन और खास दिन जीवन का तो हमें सबको याद रहता है। तो उस दिन ये भी याद रखें कि हमें एक पौधा जरूर लगाना है।
0: बिल्कुल, और हरियाली की रक्षा तो हमें ही करनी है। समाज में कई ऐसे उदाहरण हैं सखियों, जहां पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं ने आगे बढ़कर भूमिका निभाई।

0: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
2: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। ओह, जैसे UPI से।
5: अच्छा।
2: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
5: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी वो दिखाई भी UPI से मिलेगी।
5: आम भी ना मम्मी जी।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
6: बहनों, हम पुनः स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में।
7: हाँ, और निधि,

0: अभी अब कुछ जानकारियां दिलवाएंगे बहनों को हम। आज का विषय हमने रखा है जलवायु परिवर्तन की समस्या और हमारा दायित्व। इस संबंध में जानकारी दे रही हैं राखी और उनसे बातें कर रही हैं हमारी रेडियो सखी निधि। तो आइए सुनते हैं बहनों ये भेंट वार्ता।
1: आज जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट बन चुका है। यह एक ऐसी समस्या है जिससे भावी पीढ़ी बहुत प्रभावित हो सकती है। यह हमारे पृथ्वी के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। इससे लड़ना केवल सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का ही काम नहीं है, बल्कि ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए इसी संदर्भ में बातचीत करते हैं राखी जी से। राखी जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जलवायु परिवर्तन क्या है?
2: अभी मौसम में जो बदलाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से तापमान आप देख रही होंगी कि कभी बढ़ता जा रहा है, कभी अचानक बारिश हो रही है, कभी गर्मी आया जैसा लग रहा है। तो जो ये मौसम का जो पैटर्न में जो चेंज आया है, तो हम उसको जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अगर हम अपने क्षेत्र में पहले के तुलना में भी देखें, और जो यहाँ के लोग पहले के जो लोग देखेंगे, तो वो पाएंगे कि पहले यहाँ पे अच्छे से गर्मी भी नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी के मौसम को आप जब देखेंगी तो देखेंगे कि सुबह में बारिश हो रही है, शाम को धूप निकल के गर्मी हो रहा है। तो ये जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, उसी को जलवायु परिवर्तन।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले हम देखते थे कि जैसा हम आशा करते थे कि कोई मौसम इसी समय में आएगा, तो उसमें हम काफी बदलाव देखते हैं। और ये आपने सही कहा कि बारिश और आंधी, इसके बारे में हम कुछ भी बता नहीं सकते, और बहुत अचानक से मौसम में बदलाव आ जाता है। तो ये सब हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं और इसे ही हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और ये परिवर्तन जो है, अब ऐसा लगता है कि हर वर्ष ही हमें देखने को मिलता है, तो ये एक हम कह सकते हैं कि स्थायी चीज बनती जा रही है। और अब हमें ये बताएं कि इसके कारण क्या हैं।
2: ये बहुत कारण है इसके तो, लेकिन जैसे वो हम लोग का जो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, जैसे कि हम लोग जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला का चूल्हा या फिर लकड़ी जला रहे हैं, या फिर खेत में खरपतवार और धान का जो ये बस्ता उसको जला रहे हैं, तो उससे तो पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ज्यादा फैल जाता है।
1: बिल्कुल।
2: और इसके अलावा हाँ, मवेशी के मुंह से माने मवेशी से मिथेन गैस का जो निकलता है वो भी इस क्लाइमेट को चेंज करता है। ग्लोबल वार्मिंग भी इसका बहुत बड़ा कारण है। कारखाना से धुआं जो निकलता है, वाहन जो इतना चल रहा है, मतलब बहुत सारे चीज मिलके अभी वायु का क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो एक नहीं बल्कि बहुत सारे कारण हैं इसके। और इसमें
2: और पेड़ भी उतने ही कटते जा रहा है।
1: बिल्कुल, ये तो सबसे मुख्य बात आपने बताई कि पेड़ की अंधाधुंध जो कटाई हो रही है, उससे भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जल चक्र इससे बिल्कुल प्रभावित हो गया है। और वायु प्रदूषण कहने का मतलब है कि इसका मुख्य कारण है, और वायु का जो स्तर है वो बिल्कुल गिरता जा रहा है, खासकर दो गैसों की वजह से, जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। और ये तो हो गए इसके मुख्य प्रभाव, लेकिन इसके और कौन कौन से अन्य प्रभाव हैं, इसके बारे में हमें बताएं।
2: इसके प्रभाव आप देखेंगी तो पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है, साथ ही मौसम भी इससे प्रभावित हो रहा है। कहीं हम लोग देखते हैं कि बारिश हो रही है, कभी तेज आंधी आ जाता है, कभी कहीं पे सूखा पड़ रहा है। समझिए कि ये सारा ही जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जो पहले नहीं था, तो ये सब जो है वो पेड़ पौधा और पशु पक्षी सब पर गलत असर पड़ रहा है।
1: हाँ,
2: इसकी वजह इसके लिए हमारा मैंने इसी की वजह से हम लोग को जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और इससे हम लोग में भी हम लोग के जनजीवन में भी प्रभाव पड़ रहा है। लोगों में अधिक गर्मी पड़ने से या अधिक बारिश होने से आप देख रही होंगी कि हम लोग के भी स्वास्थ्य पे हानि हो रहा है।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि अचानक से मौसम में परिवर्तन होने से हमारा भी स्वास्थ्य बिल्कुल प्रभावित हो रहा है, लोग बीमार भी ज्यादा पड़ते हैं इससे। और जो आपने कहा कि पशु पक्षी जो हैं वो भी सभी पेड़ों पे ही निर्भर करते हैं और मौसम का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ता है, और जितनी भी जैव विविधता है यानी कि, तो वो सभी प्रभावित हो रही है। और तापमान बढ़ने से आप एक और चीज भी हम देखते हैं कि फसल पकने का समय या जिस तरह से फल तैयार होते थे पेड़ों में, हाँ, वो सभी चीजें जो है वो प्रभावित हो रही हैं। तो इसके मुख्य कारण तो आपने बता दिए, और इसके और भी मुख्य कारण के साथ साथ और भी छोटे छोटे जो प्रभाव हैं वो हमारे जीवन में आमतौर पर देखने को मिलते हैं। तो अब हमें ये बताएं कि इसका समाधान क्या है। यूं तो हम इसे बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कौन कौन से हम कदम उठा सकते हैं और इस दिशा में हम क्या कर सकते हैं इसे कम करने के लिए, इसे नियंत्रित करने के लिए, और साथ ही हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए?
2: ठीक है, इसके लिए हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें पौधा, पेड़ पौधा बहुत ज्यादा लगाना चाहिए। वृक्ष का हम लोग को पूरे वृक्षारोपण पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा है ऊर्जा संरक्षण करें, जैसे कि हम लोग बिजली का खपत कम करें, जैसे बेकार में जो बिजली जल रहा है, आप कहीं देखेंगे कि एक घर है तो उसमें 6 कमरे हैं तो 6ों में पंखा बिजली सारा चल रहा है,
1: बिल्कुल
2: कोई है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। तो हम लोग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग ऊर्जा को हम संरक्षण करें। इसके लिए आजकल बहुत सा उपकरण आया हुआ है, जैसे LED है और 5-स्टार वाले जितने भी उपकरण है उसका हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। और पर्यावरण के अनुकूल जैसे परिवहन का इस्तेमाल के लिए हम लोग को निजी वाहन को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग निजी वाहन एक गाड़ी लेके एक आदमी जाना है, उससे अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जैसे मेट्रो हो गया, बस हो गया, और अगर हम साइकिल का भी इस्तेमाल करें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और वातावरण के लिए भी अच्छा है।
1: हाँ बिल्कुल, और
2: अगर छोटा दूरी है तो हम स्कूटी नहीं निकाल के खुद पैदल चले जाएं।
1: बिल्कुल, साइकिल की सवारी तो बहुत ही लाभदायक है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और पर्यावरण अनुकूल भी है। और साथ ही प्लास्टिक वगैरह के उपयोग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: हाँ, ये तो है कि हमको जैसे हम लोगों को 3 R जिसको बोलते हैं ना, रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल का सच कुछ तो हम लोग को पालन करना चाहिए। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही खराब होता है, तो इसके लिए है कि हम जितना या तो हम लोग प्लास्टिक को यूज ही नहीं करें और नहीं तो कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जल्दी नष्ट नहीं होता है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये छोटे छोटे कदम हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उठा सकते हैं, जैसे आपने बताया कि सबसे पहले तो ऊर्जा संरक्षण और पेड़ लगाना, क्योंकि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो चुकी है और अगर हम हर व्यक्ति पेड़ लगाता है तो इससे काफी फर्क पड़ता है। बहुत सारी योजनाएं भी ऐसी हैं, अभियान भी ऐसे चलाए गए हैं जिससे कि हमें वनों की कटाई को हम किस बहुत हद तक हम भरपाई कर सकें। तो ये सब छोटे छोटे कदम हैं जो आम नागरिक उठा सकता है, तो यही हमारा कर्तव्य बनता है। राखी जी, आपने अपना कीमती वक्त देकर इतनी अच्छी जानकारी दी हमारी श्रोता बहनों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: बहनों। अभी आपने सुनी भेंट वार्ता, विषय था जलवायु परिवर्तन की समस्या और हमारा दायित्व। इस संबंध में जानकारियां दे रही थी राखी और उनसे बातें कर रही थी हमारी सखी निधि। और जानकारियों के बाद फिर से अब बहनों को क्यों न मनोरंजन की दुनिया में ले चलने दे।
3: हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा ख्याल है राखी।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल

0: के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: तो बहनों, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, हरियाली बचाने की बात कर रहे हैं, पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, है ना। और इसी क्रम में जो प्लास्टिक का उपयोग ना करने की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें ये भी बात करनी होगी कि उसको कैसे ना कहा जाए, है ना।
3: हाँ, यूं तो बहुत छोटे छोटे कदम हैं जिसके बारे में हमने चर्चा कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर हम बहुत हद तक पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं और जो जलवायु की परिवर्तन की जो समस्या है उससे हम निपट सकते हैं। लेकिन ये जो जानकारी है ये बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक जो है ये एक विकराल रूप धारण कर रहा है हमारी पृथ्वी पर, तो इस पर रोक लगाना बेहद ज़रूरी है। और इसे हम बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसे बहुत हद तक कम किया जा सकता है और इसके जो दूसरे विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं, उसके बारे में हमें जरूर सोचना होगा।
2: बिल्कुल, हम हमेशा कहा करते हैं, बहनों से भी बात करते हैं जब अपने कार्यक्रम के दौरान, कि बाजार जब भी आप जाएं बहनों, तो आप जूट का थैला अपने साथ जरूर रखें। इससे क्या होगा ना कि प्लास्टिक के थैले की जो जरूरत है वो नगण्य हो जाएगी,
3: बिल्कुल कम,
2: और सुंदर भी देखने में लगते हैं, अच्छे अच्छे जूट के थैले आते हैं, है ना, उसे लेकर ही जाएं। और बहुत कोशिश करें क्योंकि प्लास्टिक में अगर आप कोई खाने का सामान रखती हैं तो वो जहरीला हो जाता है। सुविधा होती है लेकिन बहुत ही ये जो है जहरीला हो जाता है। प्लास्टिक जब जलाते हैं हम तो उसका धुआं इतना जहरीला होता है कि पूरा वातावरण खराब हो जाता
3: बिल्कुल
2: है।
3: बिल्कुल, और अगर हम इसे नालों में फेंक दें या कहीं भी जलाशयों में डाल दें, हाँ, तो वहाँ पे पानी रुक जाता है और ये भारी समस्या पैदा कर सकता है। तो प्लास्टिक जमीन में भी प्रदूषण पैदा करता है और सबसे बड़ी बात है कि अगर प्लास्टिक इकट्ठा होते जाए तो वहाँ समझिए कि एक प्लास्टिक का पहाड़ सा बन जाता है,
2: हाँ,
3: क्योंकि ये सड़ता गलता नहीं है दूसरी चीजों की तरह, तो ये बहुत ही विकराल रूप धारण कर सकता है,
2: पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है बहनों। और हम सबों को मिलकर छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा इसे ना तो कहनी ही होगी, क्योंकि ठीक है हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उसको रोजमर्रा के जीवन में अपनाना पड़ेगा। और
3: हाँ,
2: देखो ना निधि, बातें करते करते घड़ी हमें इशारा कर रही है कि अब लेनी होगी बहनों से विदा, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अब अगले कार्यक्रम के लिए रखते हैं।
3: बिल्कुल, क्योंकि बातों बातों में तो पता ही नहीं चलता समय का। तो बहनों, हम आपको बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की, और अभी के लिए अपनी सखियों निधि
2: और राखी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: गृह लक्ष्मी,
5: महिलाओं का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का प्रसारण आप सुन रहे थे राखी और निधि के साथ।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,

0: किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। नकली हीरे।

0: आनंदपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की, महाराज की, महाराज की।
3: खास ऐलान।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
4: हाँ हाँ महाराज,
1: महाराज
4: बताइए।
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
4: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
5: जी महाराज, पूछिए। क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
6: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
3: जी महाराज,
4: महाराज की जय हो।
5: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
4: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
4: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।

0: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
1: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे। भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
2: हो सकता है?
1: अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
0: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
1: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज। यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें महाराज।
0: कहिए, मेरी आज्ञा है। आप सभी निसंकोच कहिए।
1: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से कराई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
0: क्या? और कोई शंका?
1: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है। बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
0: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
3: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।

0: सुनी आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाश्ता खाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं, वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है।

जब चावल उबल कर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं, उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6

0: 6% कर दिया है। उद्योग संगठन एसोचैम ने आरबीआई के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल कर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today to dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary health care across key specialities. The Prime Minister will also inaugurate several important initiatives of the Government of Gujarat, including modern power distribution upgrades, advanced effluent disposal and treatment infrastructure at Dahej Petroleum. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. The Reserve Bank of India has kept interest rates unchanged for the second time in a row in the current financial year, announcing the second bi-monthly monetary

0: 1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित सभी लोगों की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में कहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हमें वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करने की सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रकृति संरक्षण, स्वच्छ पर्यावरण और हरित भविष्य के लिए सामूहिक संकल्प लेने का आह्वान किया। श्री मरांडी ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाए, उसकी देखभाल करे और उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित रखे। हजारीबाग में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हरियाली महोत्सव की शुरुआत की गई। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस मॉनसून में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे।
1: गुरु के भांति भी इस बार भी 1 लाख पौधा लगाने का संकल्प किया है। तो सारे लोगों से, आप लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को मोटिवेट करें कि जो हजारीबाग को हरा भरा करने का प्रयास किया जा रहा है, सारे लोग एकजुट के होंगे तभी इस मुहिम को पूरा किया जा सकता है। एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई काम संभव नहीं है।
0: धनबाद मंडल के रजहरा स्टेशन पर मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। यात्रियों की सुविधा और सहायता के लिए रांची, मूरी तथा लोहरदगा रेलवे स्टेशनों पर विशेष सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अद्यतन जानकारी के लिए सहायता केंद्रों से संपर्क करने की अपील की है। रांची लोकसभा क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आज अरगोड़ा चौक स्थित मोहन मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल और रक्षा मंत्रालय के उपक्रम मिधानी के सीएसआर सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 और 7 जून को 2 दिन से झारखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे तथा पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बताया कि दौरे के दौरान संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
2: नितिन नवीन जी 2 दिवसीय सांगठनिक दौरे पर आ रहे हैं। कई बैठकों में जाएंगे, मंदिर का भी उनका भ्रमण है और मंदिर में भी वो माँ की दर्शन करेंगे। यहाँ हमारे ऑफिस ब्यूरो से भी बात करेंगे, कोर कमेटी से भी बात करेंगे। लगातार उनके जो प्रवास है संगठनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उनका बड़ा लंबा समय बीता है रांची में, तो हम बहुत उत्साहित हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहले दौरे से, और हमें पूरी उम्मीद है कि नई ऊर्जा का संचार करके वो जाएंगे।
0: झारखंड सिपाही नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2015 से जुड़े मामले में उच्चतम न्यायालय ने 888 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को रिक्त पदों के विरुद्ध इन अभ्यर्थियों के दावों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। झारखंड चैंबर की बस परिवहन उप समिति की कल हुई बैठक में बस परिचालन में आ रही समस्याओं पर चर्चा के बाद सभी रूटों पर बस किराया 18% बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इससे विभिन्न रूटों पर किराए में 40 से 100 रुपए तक की वृद्धि हुई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बस किराए में 12 से 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। चतरा सदर अस्पताल

0: में अत्याधुनिक आईसीयू सेवा शुरू कर दी गई है। इस मौके पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि आईसीयू सेवा शुरू होने से गंभीर मरीजों को जिले में ही बेहतर उपचार की सुविधा मिल सकेगी।
1: शुभारंभ हो रहा है, इस आयोग से है, यहाँ के नए सिविल सर्जन है और इनकी हृदयता के कारण हम यहाँ पर आईसीयू का नया शुभारंभ किया था। अभी तक हमारे यहाँ शहर में आईसीयू जो गहन चिकित्सा की व्यवस्था सदर अस्पताल में नहीं थी।
0: गढ़वा में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद ने राष्ट्रीय राजमार्ग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ योजनाओं में राशि निकासी के बाद ठेकेदार कार्य अधूरा छोड़कर चले गए हैं।
2: की बैठक में मुख्यतः कार्रवाई के लिए कहा गया था, उसी का अनुपालन प्रतिवेदन देखा गया, तो जिस विभाग के स्तर से कमियां पाई गई थी उसको इंगित किया गया कि ये आपके अनुपालन प्रतिवेदन में इस चीज की कमी है और भविष्य में ऐसा नहीं करने पर जिस भी विभाग के द्वारा उसमें कमी पाई जाएगी उस विभाग के पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की जाए।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक बढ़कर 23,441 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपए प्रति किलो है। श्रीनगर में आयोजित प्रथम प्रोफेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन इंडिया ओपन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पी विशाल और ईशान सिंह ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि आयुष राज, सिया शुक्ला, रिद्धिमा सिंह, नीरज लकड़ा और अद्या लिया ने रजत पदक हासिल किया। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, कहा एक पेड़ मां के नाम अभियान से बढ़ रहा है हरित क्षेत्र। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल से 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर, संगठनात्मक बैठकों के साथ राज्य के विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। झारखंड सिपाही नियुक्ति परीक्षा के 888 अभ्यर्थियों को उच्चतम न्यायालय से मिली राहत, अदालत ने राज्य सरकार और चयन आयोग को नियुक्ति पर पुनर्विचार का दिया निर्देश। झारखंड चैंबर की बस परिवहन उप समिति ने बस किराए में 18% बढ़ोतरी का लिया निर्णय। और श्रीनगर में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, पी विशाल और ईशान सिंह ने जीते स्वर्ण पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी में अनीता सेन को।

शास्त्रीय संगीत अनुरंजनी में आप सुन रहे थे अनीता सेन को। आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत में गजल।

एचआईवी एक विषाणु है जिसका संक्रमण एचआईवी संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। एचआईवी एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-097 पर संपर्क करे या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करे। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे थे गजल आशा भोसले की आवाज में। थोड़ी ही देर में मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार का प्रसारण होगा दिल्ली केंद्र से।

0: Hezbollah is part of efforts to reduce tensions in Lebanon and the wider West Asia region. Speaking at the White House, Trump said progress has been made in discussions aimed at reducing violence in Lebanon. He made the remarks after being asked about reports that Hezbollah had rejected a U.S.-backed peace proposal. He said he had discussed the issue with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and other regional leaders. India will take on arch rivals Pakistan in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup hockey tournament at Kakamigahara Hockey Stadium in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. India entered the last four after finishing second in Pool A with 9 points. India's Pragyananda Ramesh Babu remained in contention for the Norway Chess 2026 title after defeating world champion Gukesh Dhamaraju in round 9. The victory took Pragyananda to 15 points, just half a point behind leader Wesley, who has 15.5 points after beating Magnus Carlsen. India Meteorological Department has said conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Central Arabian Sea, entire Goa, parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, remaining parts of Tamil Nadu and parts of northeastern states during the next 2 to 3 days. The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahe, north interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,804 rupees in Gujarat today. Centre grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25%, reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal to arrive in New Delhi on 3-day visit today. World Environment Day being observed, government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. And India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under-18 Asia Cup hockey in Japan this evening. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार।

0: तुरंत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है।

0: मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
1: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2,00,00,000 से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
2: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
3: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
4: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और

0: ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और साथ ही FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। और इस कार्यक्रम को लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी दोस्त आभा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हवाओं से नहीं फौजियों की सांसों से लहराता है तिरंगा। वो तिरंगा जिसे हम त्योहारों में थामते हैं, वो रोज किसी फौजी के खून पसीने और अधूरी नींद से जिंदा रहता है। जब हम अपनों के साथ हंस रहे होते हैं तब कोई सरहद पर खामोशी से खड़ा अपने घर, अपने माँ बाप, अपने बच्चों की तस्वीर जेब में रखकर पूरे देश का घर संभाल रहा होता है। उसे ठंड नहीं लगती क्योंकि वर्दी के नीचे वतन की आग जलती है। उसे डर नहीं लगता क्योंकि उसके दिल में तिरंगे का भरोसा बसता है। हर गोली से पहले उसकी एक ही दुआ होती है, मेरे बाद भी मेरा भारत सुरक्षित रहे। हमारे लिए आज़ादी एक एहसास है पर उनके लिए एक जिम्मेदारी। हमारे लिए तिरंगा एक पहचान है पर उनके लिए सांसों से बंधा हुआ वादा। सलाम करते हैं हम उन फौजियों को जो जीते जी देश के लिए भी हैं और अगर जरूरत पड़े तो मुस्कुरा कर मिट जाते हैं हमारे भारत माँ के लिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत अनु मलिक का है, आवाजें दी हैं सोनू निगम, उदित नारायण, अलका याग्निक और कैलाश खेर ने।

मेरा रंग दे बसंती चोला। जी हाँ, बसंती रंग साहस, स्वतंत्रता और बलिदान का प्रतीक है, जो देश की खातिर मर मिटने की भावना को दर्शाता है। ये गीत था फिल्म शहीद का, देव कोहली के बोल थे, संगीत था आनंद राज आनंद का, आवाजें थी हंस राज और उदित नारायण की। अगला गीत फिल्म बॉर्डर से रूप कुमार राठौर की आवाज में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत अनु मलिक का।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजों में, रचना अमित भट्टाचार्य की है, संगीत प्रीतम का, फिल्म है लाल सिंह चड्ढा।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज होने वाली विभागीय समीक्षा बैठक को अचानक स्थगित कर दिया। 25 मई से जारी इस समीक्षा कार्यक्रम को रोककर मुख्यमंत्री आवास में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि पार्टी राज्य की दोनों राज्यसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने पर विचार कर रही है।
1: दोनों सीटों पर जेएमएम उम्मीदवार तय हो गया। चलिए, वो हम लोग सारे लोग जो झारखंड मोर्चा का पूर्व में भी परंपरा रहा है कि जो केंद्रीय अध्यक्ष
0: कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार प्रणव झा भी विशेष रूप से शामिल हुए, जहां चुनाव की रणनीति पर गंभीर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतने की रणनीति और गठबंधन के सहयोगियों के साथ समन्वय स्थापित करना था। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम ने दावा किया कि गठबंधन के सहयोगी एकजुट हैं।
2: हमारे झारखंड में फेडरेशन अलायंस की सरकार चल रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट को मिलाकर हमारा 56 हो रहे हैं और 56 को अगर हम आधा करते हैं तो दोनों सीट एकदम आराम से जीतेंगे।
0: राज्य के डीजीपी तदाशा मिश्रा आज पहली बार पलामू पहुंची। उन्होंने पलामू, लातेहार और गढ़वा के पुलिस कप्तानों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर नक्सल और अपराध की समीक्षा की। बैठक के दौरान संगठित अपराध, नक्सल गतिविधियों, नशाखोरी और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। डीजीपी ने नक्सलियों और आपराधिक गिरोहों के खिलाफ की गई कार्रवाई की सराहना की।
3: देख रहे हैं कि कैसा यहाँ पर स्थिति है, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, ऑन ट्राइंग ये सब रिव्यू हो रही है। ये रूटीन मैटर है, कोई विशेष हम लोग जिला वार रिव्यू कर रहे हैं। गढ़वा है, पलामू है, नंदा है, लातेहार, एक एक जिला का समय लग रहा। काम अच्छी हो रही है, एसपी लोग नए हैं, देख रहे हैं यंग है। जमीन का जो प्रॉब्लम है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। मेनली डिसीजन जो है उन लोग के स्तर से लिया जाता है, जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ
0: पुलिस। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को लगातार दूसरी बार 5.25% पर यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान घटाकर 6.6% और मुद्रास्फीति अनुमान बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर भाजपा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देशभर में पौधारोपण किया। रांची के धुरवा में प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने पौधा लगाकर राज्य में इस वर्ष 2,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने पर्यावरण संतुलन के लिए लोगों से पौधों की सुरक्षा करने की भी अपील की।
4: लगातार एक रचनात्मक कार्य के तहत अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा है एक पेड़ मां के नाम अभियान की उन्होंने शुरुआत की। आज से लेकर के 21 तारीख तक हम 2,00,000 से ज्यादा पेड़ इसे झारखंड प्रदेश में लगाने वाले हैं।
0: जामताड़ा में भी व्यवहार न्यायालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकृष्ण और न्यायिक पदाधिकारियों ने पौधे लगाए। इस मौके पर न्यायाधीश ने कहा कि पर्यावरण संतुलन और प्राणवायु के लिए पौधे को लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा करना भी बेहद जरूरी है। उधर पाकुड़ में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला प्रशासन और वन विभाग ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। छात्रों इस मौके पर उपायुक्त मेघा भारद्वाज और वन अधिकारियों ने पौधारोपण कर प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प लिया। कोडरमा में विधायक डॉक्टर नीरा यादव के चालक राजकुमार यादव की हत्या मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि 3 जून को 8 साल पुराने जमीन विवाद में यह हत्या हुई थी। थाना प्रभारी पर लापरवाही के आरोपों की जांच डीएसपी स्तर से की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अगला कार्यक्रम नॉन स्टॉप अंताक्षरी बस थोड़ी ही देर में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ಸ್ವಯಂ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: सभी श्रोताओं को आभाकार नमस्कार. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची और मैं हूं आपकी दोस्त आभा. लेकर आई हूं आपके लिए एक बेहद ही खास मस्ती से भरा शो, सुरों की महफिल नॉन स्टॉप अंताक्षरी. तो अपने चाय के कप को थाम लीजिए और तैयार हो जाइए गाने की इस अनोखी महफिल के लिए. जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंताक्षरी हमेशा से माँ अक्षर से शुरू होती है.

ये था नॉनस्टॉप अंताक्षरी का एक छोटा सा सफर। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे कुछ और सुरीली धुनों के साथ। तब तक के लिए आभा को दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आकाशवाणी रांची। नमस्कार।

ये आकाशवाणी रांची है। आइए सुनते हैं केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय है पर्यावरण। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं श्री नीतीश प्रियदर्शी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगर्भ शास्त्र विभाग रांची विश्वविद्यालय, और श्री विनय कुमार, ब्यूरो प्रमुख यूएनआई रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं पूनम किरकेट्टा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी रांची के स्टूडियो में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को आज पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर्यावरण पर ही आज हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो विशेषज्ञ यहां उपस्थित हैं, श्री नीतिश प्रियदर्शी पर्यावरणविद और असिस्टेंट प्रोफेसर भूगर्भ शास्त्र विभाग रांची विश्वविद्यालय, और श्री विनय कुमार स्टेट कोऑर्डिनेटर बिहार झारखंड और ब्यूरो प्रमुख यूएनआई रांची। तो मैं पूनम करकेटा आप सभी का स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं हम श्री नीतीश प्रियदर्शी सर से। हम आज पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और विश्वभर में पर्यावरण हर देश अपने स्तर से भी मनाता है पर्यावरण दिवस, इसकी क्या महत्ता होती है ये बताइए।
1: देखिए, पर्यावरण दिवस जहाँ तक मुझे लगता है हम लोगों को हर दिन मनाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण ही नहीं रहेगा, पर्यावरण डिस्टर्ब हो जाएगा, इकोसिस्टम अगर बर्बाद हो जाएगा तो फिर हम नहीं रहेंगे। और हम लोग जैसे बार बार कहते हैं, हम लोग का अभियान चलता है ना कि पृथ्वी बचाओ
0: जी,
1: तो पृथ्वी कैसे बचेगा जब पर्यावरण ही हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा। तो मैं सबको, अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि पृथ्वी बचाओ से ज्यादा जरूरी है अपने आप को बचाओ, क्योंकि पृथ्वी 4.5 बिलियन ईयर से इसी ब्रह्मांड में है। धरती का कुछ नहीं बिगड़ा है, धरती 5 महाविनाश कर चुकी है, हम 6ठे महाविनाश में प्रवेश कर चुके हैं और इसका सबसे बड़ा फैक्टर हम लोग हैं और प्रकृति का विनाश है। तो अगर हमको अपने को अगर बचाना है तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा, और पर्यावरण इसलिए हमारा काफी जरूरत है क्योंकि पर्यावरण से ही हमको सब कुछ मिलता है। जो हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, एम्बिशंस देखते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, सब देख रहे हैं, धरती पर विचरण कर रहे हैं, इसलिए कि पर्यावरण हमको बर्दाश्त कर रहा है। इसलिए पर्यावरण को वो रिस्पेक्ट देना होगा जो उसकी जरूरत है। वो हम रिस्पेक्ट जब तक नहीं देंगे पर्यावरण को, तो हमें फिर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्यावरण से ऑक्सीजन मिलता है, पानी मिलता है, सब कुछ मिलता है, वही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे।
0: जी जी, विनय कुमार जी, हम मना तो रहे हैं पर्यावरण दिवस, सरकारी स्तर पर मना रहे हैं और सरकार अपनी ओर से बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें हर एक व्यक्ति का क्या रोल होना चाहिए?
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है आज हम जहां बैठे हैं झारखंड में
0: जी,
2: इस भूमि में जो पुराने आदिवासी लोग हैं आज भी पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक हैं, आज भी जल जमीन और मिट्टी से उनको लगाव है, वृक्ष से लगाव है, वृक्षों को बचाने की बात करते हैं। अब जो उन्नत मानव हैं, जो विकसित मानव विकासशील देश हैं, वो भी अब पर्यावरण की तरफ लौट रहे हैं, उनको भी पर्यावरण की चिंता है, जबकि हमारे आदिवासी समाज के लोग पुरातन काल से पर्यावरण की रक्षा करते रहे, जल बचाते रहे, वृक्ष बचाते रहे, मिट्टी बचाते रहे। तो आप सोचिए कि हमारे जो लोग थे वो कितने साइंटिफिक रूप से आगे थे,
0: बिल्कुल,
2: जो आदिवासी समाज है कितना आगे था, जो हजारों वर्ष पहले ये लोग सोचते थे आज दुनिया के लोग सोच रहे हैं। आज अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, वो चाह रहे हैं कि पर्यावरण की रक्षा हो और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जन आंदोलन बने, इसके लिए हर कोई प्रयास कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है खास करके एग्जाम वॉरियर्स के रूप में, उसमें भी उन्होंने प्रकृति के प्रति सम्मान, जल संचरण, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की चर्चा की है। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पर्यावरण यहाँ का बेहतर हो, देश का बेहतर हो, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि मौसम पर असर पड़ रहा है, कहीं जब गर्मी के मौसम में भी बारिश हो जा रही है, कहीं बारिश के मौसम में गर्मी हो जा रही है, तो ये असंतुलन है, इसको आप पर्यावरण के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं।
0: जी जी,
2: तो पर्यावरण अगर आप नहीं बचाएंगे तो आने वाला भविष्य जो है वो बहुत ही कष्टकारक होगा। तो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आगे आने वाले समाज के लिए अभी से अगर सचेत और सजग नहीं हो जाएंगे तो फिर जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पर्यावरण पर खास करके केंद्र सरकार पिछले 12 वर्षों में काफी जोर दे रहा है और हर क्षेत्र में, चाहे वो वृक्ष लगाने के लिए, अब प्रधानमंत्री की एक और योजना थी एक पेड़ माँ के नाम, अब कितनी अच्छी योजना थी कि अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाएं। हर आदमी अगर एक एक पेड़ लगा रहा हो तो हमारा देश 140 करोड़ का है।
0: जी जी, इसी में मैं बात आगे बढ़ाऊंगी। इसके तहत 262 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं पेड़ माँ के नाम के तहत, और सिर्फ ये माँ के नाम नहीं, अगर हम इसे व्यक्तिगत तौर पर भी लगाएं, एक पेड़ माँ के नाम से लगाएं, खुद अपने लिए भी लगाएं, खुद आने वाली पीढ़ी के लिए भी लगाएं, तो ये और भी इसी से प्रेरित होकर, इसी योजना से प्रेरित होकर ये योजना और भी आगे बढ़ सकती है। अगली बात मैं आपसे करना चाहूंगी प्रियदर्शी जी कि सरकार ने जो लागू की है प्रतिपूरक वनीकरण यानी कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, जो नई कॉलोनी बसती है, नए उद्योग लगते हैं, नई सड़कें बनती हैं, तो जो वृक्ष काटने पड़ते हैं मजबूरी में उसकी जगह नए वन लगाएं, पेड़ लगाएं, तो इसमें किस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हम लगा तो रहे हैं पेड़ लेकिन कहीं हम अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं।
1: देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब हम पेड़ काटते हैं तो ये आप जान के रखिए कि उस पेड़ में कितने बासिंदे थे जो उस पर डिपेंडेंट थे, चिड़िया से लेके मनुष्य से लेके सारा कुछ, पूरा एक सिस्टम उस पर डेवलप्ड रहता है पेड़ के चारों तरफ
0: जी।
1: तो आप उस पेड़ को उखाड़ के कहीं, चाहे खत्म हो गया पेड़, चाहे आप काट दिए, पेड़ की मृत्यु हो गई, तो उस मृत्यु के साथ बहुत सारी कहानियां खत्म हो जाती हैं। तो आप जो नया पेड़ लगाइएगा पहली बात, तो वो पेड़ को पनपने फिर समय लगता है। तो जब भी हम पेड़ लगाने चलते हैं एक चीज को हमेशा याद रखना, क्योंकि आप जंगल हटा के पेड़ लगा रहे हैं
0: जी,
1: याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम को हटा के आप एक पेड़ लगा रहे हैं। तो वो चीज ऐसा होना चाहिए कि जो पेड़ आप लगा रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है, हमको डेवलपमेंट भी चाहिए, आप जंगल हटानी आपकी मजबूरी हो रही है, लेकिन हमको एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ हम एक भी अगर पेड़ लगाए, हर घर से अगर एक पेड़ लगता है तो आप खुद अनुमान लगा सकती हैं कि वो आने वाले समय में कितना बड़ा, वो जैसे हमने कहा ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वो एक पेड़ भी अगर हम लगाएं और उसको बचाएं तो मुझे लगता है कि आप एक पेड़ क्या, आप अपने क्षमता अनुसार दो पेड़ भी लगा सकते हैं, और जो जो डेवलपमेंट के नाम पर डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि जो मजबूरी है हमारी, तो उसमें आप और भी पेड़ लगाइए जरूरी है, लेकिन याद रखना होगा कि लोकल वृक्षों को लगाइए, बाहर से पेड़ मत मंगाइए। हमने देखा है रांची में जाके कई बार ऐसा हो कि जो बाहर से पेड़ आ गया आकाशिया वगैरह, तो वो क्या उखड़ गया तेज अंधड़ में,
0: और बाहर के वृक्ष इन्वेसिव भी होते हैं,
1: इन्वेसिव भी हो जाएंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपको छोटा सा उदाहरण देता है, यदि आप दशम फॉल जोना फॉल की तरफ जाइए तो आपको दिखेगा वहां पुटुस
0: जी, लंटाना
1: प्लांटाना व्हाइट व्हाइट इन्वेजन कर रहा है
0: जी,
1: बाहर से आया है, और जो हमारे जो पुराने पुटुस थे रंग बिरंगे फूल वाले वो अब गायब हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आप देखिएगा कि बहुत सी इन्वेजन होगा। आप बाहर वाले पेड़ को लाके लगाइए, जैसे आपका थेथर का पेड़ जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से लाया गया, उसी तरह आपका पार्थेनियम घास घूस आ गया अमेरिका से, तो वो इन्वेजन नहीं हो, आप लोकल पेड़ों को लगाइए, घास जो भी है, गाजर घास वही जिसको पार्थेनियम कहते हैं, आप उसको लगाइए जो कि यहाँ के लोकल पक्षी भी उसको अडॉप्ट कर सके, मनुष्य भी अडॉप्ट कर सके कि भाई हमारा वही पेड़ है, सब चीज है, वो लगाइए। और लोगों को जागरूकता लाना होगा, क्योंकि हमको याद है कुछ गाँव में हमने पेड़ लगाने गए, लोग नीम का पेड़ नहीं लगाने दे रहे थे, हमने गाँव वालों को अवेयर किया कि अगर आप एक नीम का पेड़ लगाइएगा तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहिएगा, एयर पोल्यूशन फिल्टर हो जाएगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, सब बहुत कुछ है, इसकी दवाइयां बनती हैं, इसी दवाई को वर्ल्ड के मार्केट में हजारों रुपये में बेचा जाता है और आपके पास मुफ्त में रहेगा
0: जी।
1: तो बहुत चीज है गांव में अभी भी।
0: आपकी बात से मैं इसी में जोड़ रही हूं
1: जी,
0: आपने लोकल पेड़ पौधों की बात कही, हम यहां लोकल मछलियों की भी बात करेंगे
1: जी,
0: क्योंकि हमारे यहां एक्वेरियम में बहुत सारी मछलियां आती हैं बाहर से, और जब लोग नहीं पाल पाते अपने एक्वेरियम में, उनको मुश्किल होता है, तो हमारे नदियों तालाबों में छोड़ देते हैं, ये कितना घातक है, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी।
1: देखिए वो मछली को आप लाके छोड़िएगा तो नेचुरली बाहर की मछलियां हैं, उनका सारा सिस्टम अलग होगा
0: जी।
1: और सबसे बड़ी चीज, अगर आप छोटे तालाब में छोड़ दिए रंग बिरंगी मछलियों को, वो तो मर जाएंगी
0: जी।
1: क्योंकि यहाँ की लोकल मछली, उसको जो तेलेपिया वगैरह जो भी है यहाँ का मछली,
0: तेलेपिया तो यहाँ की है नहीं, वो भी
1: बाहर से आई है, लेकिन इनसे पूर्वज हैं
0: जी,
1: यहाँ उनको रखा गया है, तो वो उनको खा जाएंगी, मार देंगी, चाहिए कुछ पानी को टॉक्सिन कर देंगी, तो ये बैलेंस नहीं होगा। क्योंकि आप देखिएगा जब भी दो कल्चर का इंटरमिक्सिंग होता है तो क्राइसिस जनरेट होता है। तो मछलियों को तालाबों मत फेंका कीजिए, वो आपके फ्रेश वाटर फिशेज हैं, एक्वेरियम में प्रोटेक्शन चाहती हैं, उनको भी वो भी जीव है, तो तब वो दिक्कत हो जाएगा, वो मछलियां भी अफेक्ट होंगी, ये मछलियां भी अफेक्ट हो जाएंगी, अब कोई एक मरेगा। तो इसलिए वो सिस्टम में भी करना है, चाहे पेड़ हो चाहे जीव जंतु हो, या इवन मनुष्य भी अगर अपना शहर छोड़कर किसी और शहर में बसता है तो उसको एडजस्ट करने में काफी समय लग जाता है, तो
0: उसकी संस्कृति तो नष्ट हो ही जाती है।
1: होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि वो सारी मछलियां जो होती हैं बाहर से आई रहती हैं, इसलिए यहाँ अडॉप्ट नहीं कर पाएंगी
0: जी। जी अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी विनय जी, सरकार ने नमामि गंगे के तहत बहुत काम किए हैं, नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत सारे काम किए हैं, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि ये किसी भूभाग के लिए, किसी देश के लिए कितना जरूरी है।
2: देखिए सबसे बड़ी बात है कि गंगा तो माँ समान है,
0: बिल्कुल,
2: और जो गंगा नदी का जल है वो इतना पवित्र जल है कि उसमें तो कीटाणु जीवाश्म वगैरह भी पाया जाता है और कीटाणु तो लगता ही नहीं, वायरस बैक्टीरिया उसमें पनप भी नहीं पाता है। तो मुझे लगता है कि जो गंगा नदी है उसकी पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए, और जो गंगोत्री से गंगा निकलती है, और झारखंड के इलाके में भी गंगा नदी आती है, साहेबगंज का इलाका जहाँ से गंगा गुजरती है बंगाल की तरफ जाती है, तो इस इलाके में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने पहल की और उस पर बड़ा काम हो रहा है देश में, और इसकी चारों तरफ सराहना भी हो रही है। अब आप अभी चले जाइए बनारस में, देखिए जिस तरह से वहाँ घाट का निर्माण किया गया है, हरिद्वार में जिस तरह से गंगा को बेहतर बनाया गया है
0: संवर्धन उसका।
2: हाँ, जी। तो हर जगह गंगा नदी, गंगा नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत हर जगह काम हो रहा है, और प्रदूषण मुक्त गंगा, जो गंगोत्री में जो सबसे शुद्ध पानी निकलता है गंगा का,
0: जी, जी।
2: तो वो पानी हर लोगों को मिले और जी। जीवन दायिनी कह सकते हैं, जीवन देने वाली है, तो इस पर प्रधानमंत्री का ध्यान गया है। इसके अलावा कई क्षेत्र में अगर आप देखिएगा तो प्रधानमंत्री ने काम किया, नरेंद्र मोदी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में उन्होंने काम किया, जैसे अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी उनका क्रांतिकारी काम रहा है
0: जी।
2: 50% बिजली का उत्पादन जो हो वो गैर जीवाश्म ईंधन के माध्यम से हो, इसको भारत ने प्राप्त किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारे पास तो पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, हम विदेश से पेट्रोल लाते हैं, और विदेश से जब पेट्रोल लाते हैं तो हमको विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, तो हमारी इकोनॉमी पर भी उसका असर पड़ता है
0: जी।
2: तो अगर हम वो बचाएं, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री का जोर है कि भाई आप सौर ऊर्जा से गाड़ी चलाइए, सौर ऊर्जा से बिजली पैदा घर में करिए, अगर आप सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करते हैं तो कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होगा,
0: बिल्कुल,
2: कार्बन के कारण ओजोन परत पर भी असर पड़ रहा है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री का सोच है कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो, और अगर पर्यावरण बेहतर रहेगा तभी जीवन स्तर बेहतर होगा, पर्यावरण बेहतर रहेगा तो लोग बीमार कम पड़ेंगे, तो हर दिशा में समाज के हर सेगमेंट के लिए केंद्र सरकार काम कर रही, नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, और ये उनकी बड़ी उपलब्धि
0: जी। प्रियदर्शी जी, केंद्र सरकार ने एक बहुत अहम कदम लॉन्च किया 15 अगस्त 2020 को, प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च करके, और हमारे झारखंड के लिए भी ये खास है कि हमारा जो साहिबगंज का इलाका है वहां से जो थोड़े से इलाके में गंगा नदी बहती है वहां भी डॉल्फिन पाई जाती है,
1: बिल्कुल,
0: और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो ये जो परियोजना है इससे न सिर्फ डॉल्फिन बल्कि ये किस तरीके से पूरे इको सिस्टम को एनहेंस करेगी उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहती हूँ।
1: देखिए, आप डॉल्फिन छोड़ दीजिए, आप कोई भी इस तरह की जीव जो हमारे विलुप्त होने की स्थिति में आ गई थी, फ्रेश वाटर डॉल्फिन, समुद्र की बात नहीं हो रही है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन, तो
0: गैंजेटिक,
1: हाँ गैंजेटिक है, और उसमें क्या होता था कि पहले हमको किसको अवेयर करना है, आने वाली पीढ़ी को, बच्चे को, हम, मैं बोलने में जरा भी नहीं चकता हूं कि हम लोग का जो एज हो गया, हम लोगों ने पृथ्वी के 40-50% भागों को बर्बाद कर दिया है, अब आने वाले समय बच्चों का, जिसको मोदी जी ने समझा कि भाई हमको इसको बचा के रखना है। तो जो डॉल्फिन वगैरह की बात कर रहे हैं, तो डॉल्फिन जब पानी में आएगा तो लोग, क्या होता है कि मनुष्य का थोड़ी संवेदना जगेगी पानी के प्रति, नदी के प्रति, कि इसमें डॉल्फिन, और डॉल्फिन को सबसे फ्रेंडली माना गया है मनुष्य से, तो कम से कम ये हुआ कि जो मछली जो हमारी है, क्योंकि देखिए हर जीव जंतु का धरती पे एक रोल है, तो डॉल्फिन का भी एक रोल है पानी में, बहुत चीज का सफाई का उसमें रोल है, पानी को पोल्यूशन फ्री करना, बहुत कुछ है, खूबसूरत लगती है और टूरिज्म करती है, और मछली सबसे सेंसिटिव होती है पानी में, जहां भी क्वालिटी चेंज होगा पोल्यूशन का, कुछ भी होगा, मछली पहले इफेक्ट होती है, तो एक इंडिकेटर भी होती है, तो इसलिए इस नाते डॉल्फिन के हम तो कहेंगे कि बहुत सारी मछलियां जो हैं जो कि ह्यूमन फ्रेंडली हैं, आप उनको भी प्रोटेक्शन दीजिए, डॉल्फिन तो है ही है। ये डॉल्फिन की परियोजना तो हम काफी सालों से सुन रहे हैं, गंगा फेज वन, गंगा एक्शन फेज टू, ये सब चलता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं नदियों को, गंगा नदी को स्पेशल माना गया हम लोग के हिसाब से, कि गंगा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, कई सारी नदियों को अपने साथ समाहित करते हुए चलती है, तो गंगा माँ का तो रूप ही है, और उसमें लेके सारी नदियों को चले, तो डॉल्फिन वगैरह बचेगी तो टूरिज्म डेवलप करेगा, नदी की क्वालिटी का पता चलता रहेगा, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो हमारी पुरानी, जो मनुष्य के सबसे करीबी जो मछली है वो जीवित रहेगी, आने वाले समय में हम, आने वाली पीढ़ी उसको भी देख के आह्लादित खुश होगी, क्योंकि ये डॉल्फिन है
0: जी। केंद्र सरकार ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया नदियों के संवर्धन के लिए, फिंगरलिंग्स जो है कार्प की, उंगलियों की साइज की, बहुत भारी संख्या में नदियों में छोड़ी गई, क्योंकि ये निचले स्तर के, लोअर लेवल के प्रीडेटरी सिस्टम में आते हैं, तो जो इससे ऊपर लेवल के जो है उनको भी सपोर्ट मिलेगा, और ये बहुत अच्छा काम रहा केंद्र सरकार का,
1: बिल्कुल,
0: छोटी मछलियों को नदियों में बड़ी संख्या में
1: डालने का। हाँ
0: जी, तो इससे जाहिर तौर पर जो बायोडायवर्सिटी है उसको एक सपोर्ट मिलेगा,
1: बूस्ट होता है जी।
0: विनय जी, केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन पर भी बहुत काम किया है। आज से कुछ साल पहले तक जो हम देखते थे शहरों की स्थिति, सफाई नहीं रहती थी, अभी लोग सफाई के लिए अवेयर हुए हैं। तो इस स्वच्छ भारत मिशन पर मैं आपसे,
2: जी, महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हुआ उन्होंने ही स्वच्छता पर जोर दिया था।
0: जी जी,
2: उन्होंने ही कहा था कि आदमी को स्वच्छ रहना चाहिए, वातावरण बेहतर रहना चाहिए
0: जी।
2: और प्रधानमंत्री ने भी शौचालय का निर्माण कराया, नरेंद्र मोदी भी इन चीजों को समझने का उन्होंने काम किया। और जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले शौचालय पर, देखिए है छोटी चीज शौचालय, लेकिन कितनी दिक्कतें होती थी महिलाओं
0: और कितनी महत्वपूर्ण बात,
2: कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो छोटी छोटी चीजों पर उनका, उससे पर्यावरण पर भी असर पड़ा, साफ सुथरा रहने का तरीका आया, बीमारियां कम हो गई, महिलाओं को थोड़ी इज्जत के साथ और उनके रहन सहन का बेहतर एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने अगर आप देखेंगे तो स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को मुक्त भारत बनाने का भी आह्वान किया
0: जी।
2: और इस दिशा में ज्यादा काम की आवश्यकता है
0: जी, जी।
2: और आज भी जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं एनपी शुक्ला, उनके मुताबिक 600 डिग्री तापमान पर अगर प्लास्टिक हम जलाएंगे तब ईंधन हमको प्राप्त होगा। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम देश में हो। अभी हम लोग क्या करते हैं कि सालाना अगर आप औसत देखिएगा प्रति व्यक्ति तो 11 किलो प्लास्टिक का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं,
0: बहुत ज्यादा है,
2: ये बहुत ज्यादा है, इसको आपको खत्म करना पड़ेगा।
0: हम तभी खत्म कर पाएंगे विनय जी जब हम इसकी जगह एक इको प्लास्टिक ले आए, तपियोका से बनने वाले प्लास्टिक जो थोड़े मोटे होते हैं लेकिन डिग्रेड हो जाते हैं, पोटैटो से बनने वाले इस तरह के हम अगर लेकर आए प्लास्टिक
2: तो ये देश
0: तो शायद हो सके।
2: अगर, अगर आप देश भर में आप देखिएगा ना तो 26,000 टन प्लास्टिक कचरा रोज निकल रहा है, रोजाना
0: जी,
2: और इसका 60% ही रिसाइकिल हो पा रहा है
0: जी। तो और जब ये नदियों तालाबों में जाते हैं तो ये क्या वहाँ त्राही मचाते हैं प्लास्टिक के थैले।
2: और अगर 60 बड़े शहरों का अगर आप सर्वेक्षण जब पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड ने किया था देश में
0: जी,
2: तो पाया गया कि 4,059 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है प्रतिदिन। तो इसको कम से कम करने की आवश्यकता है। पर्यावरण अगर बचाना है तो केवल प्रधानमंत्री के कहने से नहीं, आम लोगों की सहभागिता होनी चाहिए,
0: बिल्कुल किसी भी योजना,
2: हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि ये मेरा अपना काम है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: अगर सफाई करेंगे तो मेरा अपना काम है
0: जी,
2: बेहतर शौचालय बनाएंगे तो मेरा अपना काम है, कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे तो मेरा अपना काम है। अगर हर व्यक्ति, हर भारतवासी, हर झारखंडवासी, हर बिहारवासी अगर ये सोचे कि ये मेरा अपना काम है, अगर आज हम पर्यावरण को सुरक्षित नहीं करेंगे, पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी
0: जी।
2: तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आपको पर्यावरण को बचाना पड़ेगा
0: जी।
2: डॉट बॉल के लिए एक पेड़ लगाया जाता है, कितनी बड़ी बात है कि एक बॉल अगर डॉट

0: मतलब डॉट बॉल मतलब है कि उस बॉल पर गेंद बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना पाए, तो जितना उस तरह का बॉल हुआ होगा आईपीएल टूर्नामेंट उतना वृक्ष लगेगा। तो अगर आपका वृक्ष, चूंकि औसतन कहता है बेहतर पर्यावरण के लिए कम से कम 32-33% वृक्ष होना चाहिए जो आपका पूरा क्षेत्रफल, और 33% अगर देश के आंकड़े पर आप दे जाएंगे तो वो है नहीं, इवन झारखंड में भी 33% के आसपास नहीं है, कुछ कम ही है। तो अगर वृक्ष लगाएंगे, अब आप देखिए अगर आप हॉस्पिटल में जाती हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है, एक सिलेंडर का कितना कीमत लगता है
1: जी।
0: और पीपल का वृक्ष हो या वृक्ष से जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक पीपल का वृक्ष देश अपने जीवन काल में कितना ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है
1: जी,
0: उसकी कीमत आप जोड़ लीजिए। तो वृक्ष की उपयोगिता यहाँ पर है
1: जी,
0: कि आपको स्वच्छ हवा मिले। अब तो बड़े बड़े शहरों में तो ये है कि वायु को शुद्ध करने के लिए मशीन लगाया जा रहा है, प्यूरिफायर लगाया जा रहा है, घरों में प्यूरिफायर लगाया जा रहा है, जो हमको नेचुरल वे में मुफ्त में मिलने वाली जो चीज है उसके लिए। कहीं कहीं कहीं तो ऐसी भी स्थिति है कि पॉल्यूशन इतना है कि लोगों को ऑक्सीजन लेना पड़ता है।
1: सही बात है।
0: तो इस मामले में अगर आप कहेंगे तो झारखंड अभी भी बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ के जो हम शुरू में आपसे कहे कि जो आदिवासी समाज हमारा है वो ज्यादा साइंटिफिक डेवलप्ड समाज,
1: उनका
0: आज हम इसकी बात करते हैं वो हजारों साल पहले से वो इन चीजों को जानते थे कि पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए।
1: उनका जो इंडिजिनस नॉलेज है वो आज भी काबिले तारीफ है, और उनके नॉलेज को आज के बच्चे, उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि कैसे वो लोग इस तरीके से समझते थे, वो कैसे समझते थे कि इस जमीन के नीचे पानी का स्रोत है, वो कैसे पता लगाते थे। उनके पास तो कोई आधुनिक मशीन थी नहीं, लेकिन उनका पता लगाने का तरीका बहुत यूनिक था, क्योंकि वो प्रकृति को समझते थे, वो प्रकृति को जीते थे, साथ में रहते थे। प्रियदर्शी जी, केंद्र सरकार ने एक और बड़ा काम किया है वेटलैंड के संवर्धन के लिए, इस पर मैं आपसे दो शब्द चाहूंगी कि ये कितना बड़ा कार्य है और ये क्यों जरूरी था।
2: देखिए, वेटलैंड में सब आ जाता है, दलदल से लेकर नदी से लेकर समुद्र से लेकर सब जहां भी आपका है सब वेटलैंड में ही आता
1: जी,
2: है
1: जी।
2: और वेटलैंड पर जो काफी रिसर्च हुआ, शोध हुआ कि वेटलैंड का रहना पृथ्वी पर कितना जरूरी है। रांची में भी कई वेटलैंड थे जो अब नहीं दिखते हैं, एचईसी में था कुछ एक बड़ा वेटलैंड जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है,
1: कई तालाबों में तो दूसरी चीजें बन गई
2: हैं,
1: पावर स्टेशन
2: बन गए, घर बन गए, फ्लैट बन गए, सब बनते जा रहे हैं। तो जैव जो हमारा वेटलैंड एरिया, इस पर हमारे एक आर्टिकल भी काफी डिटेल में छपा था, तो वेटलैंड में हमको जहां भी क्योंकि अभी झारखंड में एक ही दो जगह का वेटलैंड डिक्लेयर किया गया ऑफिशियली, वो है दुमका के पास का जो वेटलैंड में डिक्लेयर किया गया है। लेकिन आपके हर शहर में उस तरह के क्षेत्र हैं, क्योंकि वेटलैंड होने से आपका सबसे बड़ा चीज क्लाइमेट मौसम पर असर करता है, अच्छा असर करता है, गलत असर नहीं करता है। प्रवासी पक्षियों का जगह होता है
1: जी।
2: पहला भूमिगत जल को रिचार्ज करता है, और जहां जहां कहीं बाढ़ आने की संभावना होती है वेटलैंड एक बैरियर की तरह काम करता है। तो आप वेटलैंड एक ऐसा जगह है जहां की आपको सारी चीजों का नेचर की तरफ से आपको फ्री में दिया हुआ है जो वो स्टोर करके रखेगा। तो हमने देखा है रांची के पास जितने वेटलैंड थे जो अब बहुत से गायब हो गए, लोग पुराने लोग सब पूछिएगा तो बताएंगे
1: जी।
2: और आज भी हमने देखा है कि एक वेटलैंड है, हम आपको आश्चर्य होगा जान के कि शहर का तापमान 40-41 था, मैं स्कूटर से उधर से गुजरा बरियातू की जाने की तरफ, अचानक लगा जैसे एसी की हवा आ रही है। तो सबसे रांची उसका खूबी था, रांची में इससे तापमान जहां 35-36 जाता था बारिश हो जाती थी, क्योंकि वेटलैंड वाटर स्टोर करके रखता था। तो ये एक हमारी स्थिति है,
1: भूगर्भ जल का भी
2: बहुत बड़ा, हमने कहा ना वाटर रिचार्ज जोन है, वो हम भूमिगत जल को रिचार्ज करके रख रहा है, प्लस पूरा ग्रीनरी है तो नेचुरली ऑक्सीजन भी मिल रहा है। ये अभी एयर जो ऊपर से आ रही है फिल्टर होके आ रही है, तो एयर भी आपको साफ मिल रहा है, हवा वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज है कि नेत्र को सुख मिल रहा है
1: जी।
2: तो सब चीज तो आपको प्लस ही पॉइंट मिल रहा है
1: जी।
2: तो क्यों नहीं हम वेटलैंड को बचाएं? वेटलैंड अगर नहीं बचेगा धरती सब तो फिर बंजर होने लगेगी। आज जो हम लोग मंगल ग्रह का फोटो दिखाते हैं ना नासा के द्वारा चाहे इसके द्वारा कि यहाँ पानी था, कभी यहाँ पानी रहा होगा, पानी का अपरदन के फलस्वरूप बना, क्या पृथ्वी उसी दिशा में जा रही है? तो कम से कम भारत सरकार की ये पहल, कोई तो सरकार इतनी गंभीर हुई है कि पर्यावरण को अपने मैनिफेस्टो में रखी है,
1: बिल्कुल
2: ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट रहा। तो मैंने कई बार का एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों के लिए हमने भी डाला था कंसेप्ट, अपना आइडिया दिया था कि बच्चों को जंगल घुमाइए, जंगल वॉक, कि बच्चे जाने कि उसके जंगल कैसा है, क्योंकि यहाँ के बच्चों को मालूम है कि रिवर थेम्स कहाँ है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि उसके गांव में कौन सी नदी बहती है। तो ये जरूरी है, इसलिए आज के समय में ये जो वेटलैंड का आपने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको बचाने की नितांत केवल सरकार का पहल नहीं, हमारा

0: हमारा भेजें। विनय जी, सरकार ने एक और बहुत बड़ी पहल की कि जो इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन उन्होंने किया एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए तो किया ही, इसमें खास तौर पर टाइगर के लिए, चीता को फिर से लेकर आए, लायन के लिए किया, लेपर्ड के लिए किया, ये सब जो बड़े प्रीडेटरी जानवर हैं उनके कंजर्वेशन के साथ साथ किस तरीके से आप इस काम को देखते हैं?
1: नहीं देखिए, पर्यावरण संतुलन आवश्यक है
0: जी,
1: क्योंकि जो प्रकृति ने हमें दिया है तो उसमें सारे सिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम है, और अगर इकोसिस्टम आपका डिस्टर्ब होगा तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। तो चीता की भी आवश्यकता है और प्रधानमंत्री ने चीता बाहर से लाने का भी काम किया है। टाइगर भी यहाँ झारखंड में भी जो अपना पलामू में है तो चीता वगैरह दिखाई पड़ रहा है। तो इस दिशा में अब बहुत कम टाइगर बचे हैं देश में, उसको बचाने की आवश्यकता है। तो इस दिशा में काम लगातार हो रहा है और खास करके वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर बहुत पहल कर रही है
0: जी,
1: क्योंकि धीरे धीरे विलुप्त भी हो रहा है बहुत सारा चीज, जैसे गिद्ध अब दिखाई कम पड़ता है।
0: गिद्ध के बारे में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि जो जानवरों को एक दर्द निवारक दवा दी जाती है, नाम मैं बोल रही हूँ,
2: बिल्कुल गिद्ध अब नाम बुला लेकिन वो है, लेकिन गिद्ध उस जानवर को खाता था
0: जी, और तो उसके लिवर अफेक्ट करके
2: होता था, गिद्ध इसलिए विलुप्त होने लगे
0: इसलिए भी। तो हमें ये सोच के
1: गिद्ध का काम क्या, तो गिद्ध भी पर्यावरण को संरक्षित करने में बड़ा, उसकी बड़ी भूमिका थी, बहुत बड़ी भूमिका थी। पुराने काल में भी, रामायण काल में भी, जब रावण लेके जा रहे थे सीता को, तो गिद्ध से ही मैंने हुआ था उनका युद्ध, जटायु गरुड़ से ही हुआ था जटायु, मैंने पुराने समय से ये लोग। तो मेरा कहना है कि अगर आप चीजों को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा, और इसमें हर व्यक्ति की सहभागिता आवश्यक है, हर व्यक्ति को अपना करना चाहिए। कोई सरकार करे, केंद्र सरकार करे, राज्य सरकार करे, नरेंद्र मोदी जी करे, हेमंत सोरेन जी करे, ये नहीं, हर व्यक्ति को करना है। हर व्यक्ति अपने अपना को दायित्व माने कि भाई अगर हम पर्यावरण बचाएंगे तो मेरा ये फर्ज बनता है, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहे हैं, आने वाली संतानों के लिए बचा रहे हैं।
0: बिल्कुल। और जब हम बात कर रहे हैं बड़े जानवरों की, तो प्रियदर्शी यहाँ पर झारखंड में खास करके जो मैन एलिफेंट
2: कॉन्फ्लिक्ट
0: है,
2: या
0: जो संघर्ष है
2: बिल्कुल
0: जंगली हाथियों और लोगों के बीच में, ये क्यों है और इस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी।
2: देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हाथी कॉन्फ्लिक्ट हमसे नहीं कर रहा है। हाथी आता है, विशालकाय शरीर है, और हम उसको छेड़ते हैं, उसको घायल करते हैं, वो गुस्से में आता है।
0: पहले तो हाथी नहीं
2: करता था, क्योंकि हाँ, इसलिए कि उसके पास पूरा चरागाह था, पूरा जंगल उसका अपना था, उसको जहाँ भोजन मिलता था विचरण करता था, तालाब था, तालाब उसका बहुत इंपॉर्टेंट जगह होता है, जहाँ उसका जो शरीर की तरह भारीपन जो है तालाब में प्रवेश करते वो हल्का हो जाता है, तो वहां वो क्रीड़ा करता था, सब कुछ करता था। उसको 2-3 गिलास पानी से काम नहीं चलेगा, उसको 1000-1000 लीटर पानी चाहिए, तो पानी उसको तालाब से मिलता था, सबसे बड़ी चीज क्या है। और हम लोग उसका आवाज जो था उसको छीनते चले गए, उसको छोटा करते चले गए। हाथी कहीं गया दूर, जब लौटा तो रास्ता में देखता उसका कहीं रास्ता ही नहीं है, भटकता है रास्ता,
0: आपसे खाना वो हमारे शहर में आ गया।
2: बिल्कुल, हम उसके जो है आवास में प्रवेश कर गए हैं, और उसका भोजन नहीं मिलेगा तो भोजन किससे मांगेगा, आप ही से मांगेगा, और अब आप जब नहीं दीजिएगा तो क्या करेगा, वो भी वही उपाय करेगा जो हम लोग करते हैं भोजन छीनने के लिए, वो भी वही करेगा। हाथी बहुत इंटेलिजेंट,
0: फिर से रिवाइव किया जाए,
2: बिल्कुल कर सकते हैं आप, उसमें गांव वालों का सहयोग होना चाहिए
0: जी।
2: और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जंगल की महत्ता, आप जंगल किसी में आप लगे, जंगल कम होगा तो क्या क्या त्रासदी आएगी। एक हम उदाहरण देते हैं, लॉकडाउन में 1 महीना लॉकडाउन रहा, प्रकृति खुश थी, जानवर सड़क पे बाहर
0: वापस
2: क्लेम कर रही थी, जानवर भी आ रहे कि भाई मनुष्य गया कहाँ, हम न्यूज में देखते थे हरिद्वार ऋषिकेश सब जगह जानवर रोड पे आ रहे हैं, तो नेचर क्या इंडिकेट की, मनुष्य अंदर रहेगा प्रकृति खुश रहेगी। तो इसलिए हाथी का जहां तक सवाल उठता है कि हाथी को छेड़िए मत
0: जी,
2: हाथी पर ऐसा कोई अस्त्र का इस्तेमाल मत कीजिए
0: जी,
2: तो जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, अफ्रीका, सब जगह, कारण यही है भोजन और उसका आवास, वो कम होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। हाथी जो है उसको बड़ा जगह चाहिए, वो अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपके पास हाथी आएगा ही
0: जी। तो इसके साथ ही आज की हम परिचर्चा यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी विनय जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को पर्यावरण के लिए?
1: नहीं देखिए, एक ही संदेश है, पर्यावरण बचाइए, अपना जीवन बचाइए।
0: प्रियदर्शी जी,
2: पर्यावरण अगर स्वस्थ

0: रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, पर्यावरण अगर बीमार हुआ तो हम भी बीमार हो जाएंगे, इसलिए इस चीज को समझना होगा।
1: बिल्कुल, और इसी परिचर्चा के साथ हम अपने दोनों जो हमारे गेस्ट हैं उनको धन्यवाद देते हैं, श्री नितेश प्रियदर्शी जी पर्यावरणविद और असिस्टेंट प्रोफेसर भूगर्भ शास्त्र विभाग रांची विश्वविद्यालय, और श्री विनय कुमार जी स्टेट कोऑर्डिनेटर बिहार एंड झारखंड, ब्यूरो प्रमुख हैं UNI रांची। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आप दोनों ने अपने विचार साझा किए, लोगों को जागरूक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्र की NDA सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय था पर्यावरण। परिचर्चा में भाग ले रहे थे श्री नीतीश प्रियदर्शी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगर्भ शास्त्र विभाग रांची विश्वविद्यालय, और श्री विनय कुमार ब्यूरो प्रमुख UNI रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही थी पूनम केरकेट्टा।

0: आकाशवाणी रांची से आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर रांची स्थित लोकभवन परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने नागरिकों से प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाकर ही भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। साहिबगंज के सुखसेना घाट पर आज विश्व पर्यावरण दिवस पर गंगा और डॉल्फिन संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने पर्यावरण रक्षा को जन आंदोलन बनाने की अपील की। देवघर में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने समाहरणालय प्रांगण में लीची का फलदार पौधा लगाया। इस अवसर पर परिसर में कुल 15 फलदार पौधे लगाए गए। उपायुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सभी जिलेवासियों से पर्यावरण को हरा भरा रखने का आग्रह किया। लोहरदगा व्यवहार न्यायालय परिसर में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर न्यायिक पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सिमडेगा महाविद्यालय में आज मेरा युवा भारत, एनएसएस और एनसीसी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण रक्षा की शपथ ली। जागरूकता के लिए पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताएं भी हुई। संस्था की लेखा अधिकारी सोरिना टेटे ने लोगों से घरों में बिजली और पानी बचाने की अपील की। पाकुड़ के अमरापाड़ा में कोयला खदान प्रभावित ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। ग्रामीण बिजली कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने, नए कानून के तहत 1,16,00,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने और खनिज ट्रस्ट की 90% राशि प्रभावित क्षेत्र में खर्च करने की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं उर्दू प्रोग्राम, प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की।

आकाशवाणी रांची से नशर हमारे उर्दू प्रोग्राम में हमारे तमाम सामईन का दिली खैर मकदम करती हूँ। सामईन को फौजिया का प्यार भरा आदाब। सामईन, आज आपसे मुखातिब है आपकी दोस्त फौजिया और हमारे साथ हैं हमारे साथी

0: मैं आपका दोस्त हिदायतुल्लाह। आदाब फौजिया,
1: आदाब,
0: और कैसे हैं?
1: बखैर हूँ।
0: तो फौजिया, बगैर देर किए हुए आप ये बताएं हमारे सामईन को कि आज किन तमाम मौजूआत पर आप हमारे सामईन से रूबरू हैं।
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो बात करूंगी हिदायतुल्लाह, आज ही का दिन 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे।
0: जी,
1: उसके बाद 6 जून को सुरक्षित भोजन बेहतर जिंदगी यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डेज, इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन। उसके बाद हम बातें करेंगे हमारे बाबा बिरसा मुंडा, जिनकी 9 जून को पुण्यतिथि है यानी के यौम वफात का दिन।
0: बिल्कुल फौजिया, आलमी यौम माहौलियात कहें या वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कहें, जो कि 5 जून को पूरी दुनिया में हम मनाते हैं। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद आवाम में माहौलियाती तहफ्फुज और ज़मीन पर बढ़ती हुई आलूदगी के बारे में शऊर बेदारी पैदा करना है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के इस खास मौके पर यह बात समझना बेहद ज़रूरी है कि कुदरत का एहतराम दरअसल ज़िंदगी का एहतराम है। हमारी ज़मीन और इसका माहौल खुदा की दी हुई वो अजीम नेमत है जो न सिर्फ इंसान बल्कि हर जानदार की बका की ज़ामिन है। जब हम दरख्तों को बेरहमी से काटते हैं, पानी को ज़ाया करते हैं या हवा को आलूदा करते हैं, तो हम सिर्फ कुदरत को नुकसान नहीं पहुँचाते बल्कि अपनी और आने वाली नस्लों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं।
0: बिल्कुल फौजिया, इस अहम दिन से जुड़ी अहम तफसीलात के बारे में अगर हम बात करें तो इस दिन का आगाज बाकायदा तौर पर अक्वामे मुत्तहिदा यानी UNEP के जेर एहतमाम 1973 से किया गया। मकसद हमारा क्या था? मकसद हमारा था कि माहौल को दरपेश संगीन खतरात से या मौसमियाती तब्दीली, प्लास्टिक की आलूदगी और जंगलात की कटाई के तई बेदारी पैदा करना। फौजिया, हम तो जानते हैं अभी प्लास्टिक का ज्यादा इस्तेमाल से कितने खतरात हैं, या आए दिन हम पेड़ पौधों को काटते हैं, इससे किस तरह के खतरात, मौसमियाती तब्दीली पैदा होती है, हमें बहुत ही खास तवज्जो देने की जरूरत
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल। जी हाँ सामईन, जमीन के हुस्न और इसके तवाजुन को बरकरार रखना हमारा सबसे बड़ा अखलाकी फर्ज है। लिहाजा इस संजीदा मसले पर महज बातें करने के बजाय हमें अमली कदम उठाने की सख्त जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: छोटे छोटे मसरूफियात जैसे दरख्त लगाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना और कुदरती वसाइल की हिफाजत करना।
0: फौजिया, जनूबी कोरिया ने प्लास्टिक फजला के इंतजाम में 70% साइकिलिंग की शरह हासिल की है और मुकम्मल हयातियाती प्लास्टिक को खत्म करने के लिए हदफ उठा रखा है।
1: बिल्कुल, तो सामईन आइए आज के दिन ये पक्का अहद करें कि हम इस खूबसूरत अमानत की हिफाजत करेंगे, क्योंकि कुदरत का तहफ्फुज ही हकीकी मायनों में हमारी अपनी जिंदगी का तहफ्फुज है। हर साल दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है, जिसका बुनियादी मकसद लोगों को सेहत बख्श और पाक साफ खुराक के तई बेदार करना है। सुरक्षित भोजन बेहतर जिंदगी महज एक नारा नहीं बल्कि तंदुरुस्त समाज की जमानत है। जब हम आलूदगी, बैक्टीरिया और हानिकारक केमिकल से पाक खाना खाते हैं तो हमारा जिस्म बीमारियों से महफूज रहता है। मिलावट शुदा और खराब गिजा न सिर्फ इंसानी सेहत को तबाह करती है बल्कि ये मुल्क की मुआशी और समाजी तरक्की में भी रुकावट बनती है।
0: बिल्कुल फौजिया, आपने बात किया कि आलूदा खुराक जो हमारे हैं, गंदे खाने हैं, उससे बहुत सारे बीमारियाँ होते हैं, जैसे कि आलूदा खुराक से लाहिक होने वाले अगर हम आम बीमारियों की बात करें फौजिया, तो टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, तपेदिक जिसे हम हैजा की बीमारी कहते हैं, ये तमाम बीमारियां होती है। और इसके अलावा इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक इन्फ्लुएंजा और जॉन्डिस, चूँकि लीवर को ख़राब होने की वजह से जॉन्डिस होने के पूरे ये रहते हैं। और फौजिया ये भी बताते चलें कि अगर मलेरिया और जॉन्डिस दोनों साथ में हो जाए तो बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए सामीन, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खाना जो खाएं वो ताज़ा खाना खाएं और गर्म करके खाएं। और एक चीज़ और फौजिया, लोग तवज्जो नहीं देते हैं कि जैसे कि हम मीट मछली अगर किसी चाकू से, नाइफ से काटते हैं और उसी नाइफ से जो है हम सब्जी काटते हैं, सलाद काटते हैं, ये भी सामीन बहुत बहुत बहुत गलत है। डिश वॉश जो होता है उससे साफ करें, ऐसे पानी से भी साफ ना करें, उसके बाद ही उस चाकू से आप सब्जी वगैरह काट सकते ताकि बीमारियों से होने का अंदेशा जो है कम हो जाए।
1: बिल्कुल सामीन, खेतों से लेकर हमारी थाली तक गिजा की सफाई और मेयार का खास ख्याल रखना हम सबकी अवलीन जिम्मेदारी है। बेहतर जिंदगी का सीधा ताल्लुक इस बात से है कि हम

0: से हैंड को
1: बिल्कुल
0: अपना साफ करें। और ये भी देखा जाता है फौजिया कि जैसे हम कहीं से अचानक जो है ना अपने हाथ को मुंह में या आंख में नाक में इस तरह से खुजली करने लगे तो ये नाखून के जरिया भी बहुत सारे इन्फेक्शंस वगैरह
1: बिल्कुल
0: होने के
1: सारे
0: खतरात
1: बीमारी का
0: रहते।
1: जड़
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: हाथ में ही होता है
0: जी
1: हिदायतुल्ला, ताकि जिस हाथ से हम खाते हैं अगर उस हाथ को हम साफ नहीं रखेंगे, क्योंकि हाथ हमारा बहुत जगह जाता है,
0: जी
1: हर चीज छूता है, दरवाजे का हैंड है, टेबल है, कुर्सी है, तो सब में कुछ ना कुछ कीटाणु जर्म्स
0: हाँ
1: रहते
0: बिल्कुल
1: हैं
0: बिल्कुल
1: जो हमारे हाथ में लग जाते हैं। और आप अगर उसी हाथ से खाना खा लेते हैं
0: बिल्कुल
1: तो वो जरासीम आपके अंदर चला जाता है।
0: जी
1: तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हाथ धोकर ही खाना खाएं।
0: बिल्कुल
1: बातें बहुत सारी हो गई हैं हिदायतुल्ला, तो अपने सामेईन को लिए चलते हैं नगमे की तरफ और सुनवाते हैं।
0: और नगमा जो हम सुनवाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत नगमा, आते जाते जो मिलता है तुमसा लगता है। आइए सुनते हैं सामीन ये प्यारा सा खूबसूरत सा नगमा।

श्रोताओं, गुलदस्ता कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ छवि। श्रोताओं, आपको आज एक ही गीतकार आनंद बख्शी के गाए कुछ गीत सुनवाएंगे। तो पेश है फिल्म त्रिदेव का ये गीत अमित कुमार और सपना मुखर्जी की आवाजों में।

0: आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 8 जून संध्या 6:30 पर।
1: इस कार्यक्रम के पुनः प्रसारण को आप सुन सकेंगे 9 जून सुबह के 9 बजे।
0: कार्यक्रम में प्रस्तुति स्वर होगा संगीता शर्मा और सुनीता हांसदा का।
1: लेखन और संकलन संगीता शर्मा और सुनीता हांसदा का।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे राजेश कुमार राय।
1: ये प्रस्तुति होगी आकाशवाणी चाईबासा की।
0: तो सुनना ना भूले आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम गुरुदत्ता में आज आपने सुना, फिल्म का नाम था, सबसे पहले आपको हमने सुनवाया फिल्म त्रिदेव से, और उसके बाद आपने सुना स्वर्ग से सुंदर फिल्म से गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, और आज आपको हम सुनवा रहे थे आनंद बख्शी के लिखे कुछ गीत। उसके बाद आपको हमने सुनवाया फिल्म सिंदूर का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ही संगीत था। श्रोताओं, समय है तो 2 मिनट हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सौदागर का ये गीत। आनंद बख्शी का ही लिखा हुआ ये गीत है और मनहर दास, सुखविंदर सिंह और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

श्रोताओं, इसी के साथ आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

सभी किसान भाई बहनों को कमलेंदु का सप्रेम जोहार एवं आज के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और वर्तमान समय में आंधी तूफान और तेज़ बारिश, कभी कभार वज्रपात भी, इस तरह से कई परेशानियाँ भी आती है और किसानों के लिए एक अच्छा सुरक्षा और एक मौका भी है, क्योंकि हम खेती बाड़ी की तैयारी कर रहे हैं। और किसान भाई बहनों, आज का दिन जैसे कि हम जानते हैं 5 जून हम सब के लिए बहुत ही खास और विशेष दिन है। 5 जून यानी कि हम सभी को स्मरण करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर, जैसे कि वृक्षारोपण पर। तो वृक्षारोपण भी हमारे लिए बहुत ही एक पुनित कार्य के है और आज के दिन को हम एक संकल्प दिवस के रूप में मानते हुए कहीं भी कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो, वृक्षारोपण पौधारोपण बहुत ही जरूरी है, सभी कोई करें, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, या महिला हो या फिर पुरुष हो, सब कोई एक कर्तव्य मानकर अपने पर्यावरण की सुरक्षा और हरियाली को बनाए रखने के लिए, स्वस्थ वातावरण को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करना बहुत ही जरूरी है। हम सभी पूरे क्षेत्र में जहाँ कहीं भी, चाहे वो बंजर जमीन हो, परती जमीन हो, या फिर खाली ज़मीन क्यों ना हो, या फिर सड़क किनारे में कहीं भी हम वृक्षारोपण कर सकते हैं, चाहे कि वो छायादार हो, फलदार हो, या हर प्रकार के हम पौधे लगा सकते हैं। पूरे क्षेत्र में संतुलित वातावरण बनाए रखने के लिए, स्वस्थ हवा और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दिनों दिन हमारा जलवायु और हर चीज ऋतु भी परिवर्तित होते जा रहा है, यानी कि हमारा पारिस्थितिक संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है, जल का स्तर भी नीचे चला जा रहा है। इसीलिए इन सभी से निजात पाने के लिए वृक्षारोपण बहुत ही जरूरी है। हम अपने सुरक्षा के लिए, अपने जरूरत के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए वन जंगल को काट रहे हैं और उसके अनुपात में हम वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं। परिणाम यही हो रहा है कि हम भीषण गर्मी से, बाढ़ और कई तरह के ऐसे आपदाओं से झेल भी रहे हैं। पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है और असमय बारिश हो रही है, गर्मी बहुत तेज बढ़ते जा रही है, जिसके चलते लू लगना और पेड़ पौधों का नष्ट होना ये भी स्वाभाविक है। इसीलिए संतुलित वातावरण को बनाए रखने के लिए हमें वृक्षारोपण पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। हमें अपने बच्चों को, आसपास के लोगों को, सभी को प्रेरित करना होगा और जागरूक करना होगा वृक्षारोपण के प्रति, और एक अभियान जैसा मुहिम चलाना होगा। चाहे हम कहीं से भी किसी भी प्रकार का पौधे हम लगा सकते हैं, वन विभाग के माध्यम से भी और कई ऐसे संस्थान के माध्यम से भी वृक्ष पौधे वितरित किए जाते हैं, ताकि सभी को हम आसपास में हरा भरा सभी को बना सकें, और इस तरह का अभियान जारी रहना चाहिए। तो आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही खास दिन है और इस दिन को विशेष दिन मानते हुए आप वृक्षारोपण के प्रति जरूर ख्याल रखें, ध्यान रखें, औरों को भी बताएं और वृक्षारोपण पर जरूर ध्यान दें। तो किसान भाई बहनों, हम आज बहुत ही विशेष विषय पर चर्चा कर रहे थे और इसे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सभी किसान हैं और किसानों के लिए, चाहे वो खेतीबाड़ी का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, सभी कोई वनस्पति के क्षेत्र में हम लोग जुड़े हुए हैं, प्रकृति के साथ हमें जुड़ना जरूरी भी है। तो आगे हम और भी चर्चा करेंगे और एक खास मेहमान से भी मिलवाएंगे वृक्षारोपण पर विशेष जानकारी लेते हुए। तो इसके पूर्व हम मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा पंच परगनिया लोकगीत।

0: प्रताप चंद्र सिंह देव एवं साथियों के स्वर में अभी हम आनंद ले रहे थे ये पंच प्रगणिया लोकगीत का। और इस लोकगीत के पश्चात किसान भाई बहनों, आज हम मिलते हैं एक प्रबुद्ध कृषक जो हमारे बीच में है। आज वृक्षारोपण पर विस्तृत जानकारी देते हुए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण करना एक पुनीत कार्य है। इस विषय को लेकर के हम मिलते हैं आज शिवनाथ महतो जी के साथ, जो वृक्ष लगाने पर कितना जोर दे रहे हैं और क्यों जरूरी है। तो आइए मिलते हैं शिवनाथ महतो जी के साथ। किसान भाई बहनों, आज हम मिलते हैं एक अनुभवी और प्रगतिशील कृषक हमारे बीच में है, शिवनाथ महतो जी। तो आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार।
1: जोहार सर।
0: तो शिवनाथ जी, आज जो हम खेती बाड़ी के साथ साथ हम एक नए विषय पर बातचीत करेंगे, जैसे कि आज का दिन है 5 जून, और हम सभी को जानते हैं कि 5 जून हमारा विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जानते हैं, और पेड़ पौधों के प्रति एक खास दिन है। तो आप जैसे कि खेती बाड़ी तो करते हैं, इसके साथ साथ हम वृक्षारोपण की अगर हम बातें करें, तो वृक्षारोपण हमारे जीवन के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कितना जरूरी है, क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं वृक्षारोपण के साथ साथ कहना चाहता हूँ कि सभी कोई अगर वृक्षारोपण करे, 5 जून ही नहीं, किसी भी दिवस में लगाए, अच्छा, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी हम लोगों का समय इतना गर्म चल रहा है,
0: हाँ,
1: कि उसको मौसम को सही करने के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। और वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं तो देखिए कितना कट रहा है, जल जंगल बहुत जगह कट रहा है। तो इसके लिए हम लोग कहीं भी लगाएंगे, और
0: हाँ,
1: मैं सलाह देता हूँ कि हर आदमी वृक्ष को जरूर लगाने का कोशिश करें।
0: तो 5 जून तो सभी कोई जानते हैं, छोटे हों बड़े हों, और हर व्यक्ति ये एक संकल्प दिवस के रूप में और खास दिन है वृक्षारोपण के लिए। तो क्या इस दिन तो सबको लगाना ही चाहिए? साथ ही जो भी आप अपने आसपास में, चाहे वो खेत हो, खलिहान हो, बगीचा हो, या फिर घर के आसपास में, या खेत के आड़ भी हो, तो ऐसे जगहों में भी तो हमारे जो श्रोता या फिर लोग लगा सकते हैं ना?
1: जरूर लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। और पेड़ लगाने से हम लोग को बहुत फायदा है।
0: अच्छा,
1: एक
0: अच्छा।
1: तो पेड़ में जड़ से हर जड़ छाल पेड़ का दवा का काम करता है।
0: अच्छा।
1: दूसरी मौसम देखिए, हम लोग का मौसम गर्म हो रहा है, उसको बराबर कर सकते हैं। जैसे वो ऑक्सीजन हम लोग का बहुत जरूरी है।
0: हाँ।
1: और पेड़ पौधा लगाने से ऑक्सीजन बहुत हम लोग को जरूरी ऑक्सीजन मिलता है। जैसे
0: मिलता।
1: एक एक पेड़, जैसे एक पेड़ का नाम लेते हैं, मोहगिनी बोल के एक पेड़ का नाम है।
0: हाँ।
1: जो 2400 घंटा ऑक्सीजन देती है।
0: अच्छा।
1: दूसरी बात है, जैसे एक पौधा छोटा सा तुलसी, तुलसी भी 2400 घंटा ऑक्सीजन देती है।
0: हाँ।
1: तीसरा है पीपल का पेड़, ये भी 2400 घंटा ऑक्सीजन देती है। इसीलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि पेड़ हर मनुष्य को, छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सबको कम से कम एक एक तो लगाना चाहिए।
0: हाँ।
1: और ऐसे नहीं कि हम 5-6 जून को लगाएंगे, नहीं, कभी भी किसी भी समय किसी भी महीना में लगा सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा। हाँ, विशेष करके बरसात के दिनों में अगर हम लगाना शुरू करेंगे तो फिर मौसम अच्छा रहता है, बारिश होते रहती है, तो पेड़ पौधे आराम से बच भी जाते हैं, और कुछ महीनों तक या कुछ वर्षों तक उसको सुरक्षित करने के लिए आप देखभाल करना पड़ता है ना?
1: हाँ, देखिए पेड़ पौधा कभी भी लगा सकते हैं, और उसको सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा कुछ करना, थोड़ा सा घेरान कर देंगे।
0: हाँ।
1: साल भर उसको सुरक्षा करके रखेंगे, उधर तो करना ही नहीं पड़ेंगे। और एक पेड़ मान लिया, हम 10 रुपया का ही पेड़ मान लिया, 10 रुपया का पेड़ लगा रहे हैं।
0: हाँ।
1: 10 साल के बाद हम लोग को लाख गुना फायदा
0: देगा। अच्छा अच्छा। हाँ, होता ही है।
1: इसलिए तो सभी किसान भाई, चाहे सभी को हम बताना चाहेंगे कि पेड़ एकदम जरूर अनिवार्य रूप से लगाएं। इस पेड़ लगाने से देखिए, अभी हम लोग का जैसे कारखाना, कल कारखाना वगैरह बन रहा है।
0: हाँ।
1: पानी की स्रोत एकदम घटते जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसीलिए पानी के स्रोत को ऊपर उठाने के लिए हर आदमी को पेड़ पौधा लगाना जरूरी है।
0: हाँ, ताकि मौसम भी अच्छा रहे,
1: मौसम भी अच्छा रहे, पानी का स्रोत भी ऊपर उठ सके।
0: हाँ। तो जैसे जब हम
2: अपने घरेलू बातें करें तो हम वृक्षारोपण करते हैं, और इसके साथ साथ जल स्तर नीचे चला जा रहा है उसको सही बनाए रखने के लिए भी हम लोग अपना सोचते हैं, और कुछ इसके लिए जागरूक भी होना होगा अपने आसपास के क्षेत्रों के जो भी लोग हैं छोटे बड़े। तो वृक्षारोपण में जैसे हम लोग कोई इमारती लकड़ी हो या फिर बागवानी के रूप में जो फलों की बागवानी हो, तो इससे बहुत कुछ तो लाभ मिलते हैं। जैसे फल की बातें करें तो हमको आर्थिक रूप से काफ़ी सहायता भी मिलती है ना।
1: हाँ, फल का बात करें तो बहुत सहायता। देखिए फल हर मौसम में होता है। जैसे नींबू देखिए मौसम में मतलब साल में 3 बार देती है।
2: अच्छा।
1: फिर आम तो सबसे इतना अच्छा पेड़ है, वो आम का छाल जड़ गुठली सब चीज दवा के रूप में काम देता।
2: हाँ,
1: है। और पत्ता तो हम लोग पूजा में लेते ही हैं।
2: हाँ,
1: इसीलिए आम भी बहुत ही अच्छा पेड़ है।
2: हुँ.
1: उसका आम का सब चीज हम लोग को सुविधा है।
2: हाँ,
1: और फायदेमंद है, इसलिए पेड़ लगाना। उसके बाद जैसे हुआ मोहगिनी हुआ है ना, मोहगिनी का फिर से नाम ले रहे हैं। उसके बाद फिर चंदन लकड़ी हुआ।
2: हाँ,
1: ऐसे ऐसे
2: बहुत कीमती
1: लकड़ी है। ये सब को लगाएंगे तो हम लोगों को कितना गुना फायदा है। फिर मौसम का भी सुरक्षा हो सकता है।
2: हाँ,
1: समय में।
2: हाँ,
1: इसलिए सभी से हम चाहते हैं कि प्रेरित करना चाहते हैं कि सभी को पेड़ लगाना एकदम जरूरी समझिए।
2: जैसे हम फलों की बातें करें तो फिर हम लोग का जो भी फल उल खाने को मिलता है बेचने के लिए भी इसका हम आर्थिक स्थिति के लिए ये करते हैं और व्यवसायिक तौर पर करते ही हैं। इसके साथ साथ जो भी पेड़ पौधे अगर बड़े हो जाएं और पुराने हो जाएं तो इनका हम लोग काट करके उनको फिर एक बार नया जीवन देते हैं। उसके साथ साथ हम जलाने के लिए लकड़ी हो जाता है और कोई इमारती कुछ ऐसे तख्ता या फिर पटरा वगैरह सब चिराई करके हम अपना कुछ बना भी सकते हैं अपना घरेलू उपयोग के लिए ना।
1: हाँ, पेड़ में वही सब बहुत प्रकार का फायदा है। एक तो लास्ट में जब पेड़ बड़ा हो जाता है काटते हैं तो उसमें घर घर में यूज कर सकते हैं।
2: हाँ, फर्नीचर
1: फर्नीचर वगैरह में बहुत प्रकार का कर सकते हैं।
2: जलाने का भी
1: यूज कर सकते हैं। और फिर जब पेड़ को काटते हैं फिर दूसरा कम से कम 2-4 पेड़ उसमें लगाना हम लोग को अनिवार्य रूप से चाहिए।
2: अच्छा। हाँ, और काटने के पश्चात हो सकता है वो इस पेड़ में और भी नए नए टहनियाँ निकलते हैं और वो फिर से एक पुनर्जन्म जैसा हो जाता है।
1: हाँ, पेड़ मान लिए काट देते हैं तो उसमें 2-3 फिर निकलता है पुनर्जन्म जैसा हो जाता है। इसलिए पेड़ उसको फिर बचा के रखेंगे फिर वही दोबारा काम देगा।
2: हाँ, अच्छा। तो शिवनाथ जी, जैसे कि हम वृक्षारोपण एक बहुत पुण्य कार्य है जैसे इस तरह का मानते हैं, तो फिर जंगलों में अधिकतर देखा जाता है कि आसपास के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में तो जंगल में चाहे पतझड़ के पश्चात देखा जाता है कि महुआ अगर आसपास में फल रहा है या फिर अन्य फल जो भी हम देखते हैं तो उसको चुनने के लिए थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरे जंगलों में आग लगा देते हैं। ये कितना उचित और अनुचित लगता है आपको?
1: देखिए जंगल में आग लगाना बहुत ही गलत है, लेकिन हम लोग का किसान भाई लोग चाहे बुजुर्ग लोग नहीं समझते हैं कि आग लगाते हैं और हम लोग वहाँ साफ सुथरा करेंगे, लेकिन जब जंगल में आग लगाते हैं तो बहुत से पौधे मर जाते हैं।
2: हाँ,
1: उसके बाद जीव जंतु भी
2: मर जाते हैं।
1: इसीलिए आग लगाना बहुत ही हानिकारक है और आग लगाना तो नहीं है चाहिए।
2: छोटे छोटे जो भी नए नए पेड़ पौधे जो निकलते हैं वो भी झुलस के खत्म
1: हो जाते हैं। इसलिए सबसे कहना चाहूंगा कि आग भरसक उसमें नहीं लगाया जाए, ऐसे ही साफ सुथरा कर दिया जाएगा।
2: हाँ,
1: चाहे पत्ता को उठा के एक जगह डाल दिया जाएगा तो पत्ता भी हम लोगों का कंपोस्ट खाद के रूप में आ सकता
2: बिल्कुल,
1: है।
2: बिल्कुल। जैसे अगर हम आग लगाने की अगर बातें करें तो फिर जो नए पौधे निकलने वाले थे या फिर उनके जो बीज गिरे हुए थे बरसात में फिर नए उगने वाले थे वो भी नष्ट हो जाते हैं।
1: वो भी नष्ट हो जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए आग तो नहीं है लगाना चाहिए।
2: पशु पक्षी भी तो अंडे देते हैं घोंसले, उनका
1: हाँ,
2: भी अस्तित्व तो खराब हो जाता
1: है। पक्षियों का अंडे खराब हो जाएंगे, फिर वो आमने सामने कुछ भी पशु भी रहते हैं तो उन लोग भी झुलस
2: के भी
1: काफी परेशानी हो सकते हैं।
2: सही बात है। तो अंततः हम देखना चाहें कि जैसे वृक्षारोपण के बारे में अगर हम बातें करें तो फिर आसपास में कहाँ से हमारे जो श्रोता हैं पेड़ पौधा लें या फिर कुछ भी आसपास में जो भी मिलता है फॉरेस्ट विभाग से उस सब से ला सकते हैं, या फिर बहुत ऐसे कुछ लोग भी हैं जो पेड़ पौधों को इधर उधर बेचने आते हैं, संपर्क में रहते हैं, इनसे भी तो प्राप्त कर सकते हैं ना?
1: हाँ, कुछ लोग बेचने के लिए भी आते हैं, उन लोग से भी संपर्क कर सकते हैं, और अभी संस्था थ्रू से संस्था से
2: बहुत कुछ पेड़ पौधे
1: वितरित किए जाते हैं। फिर अभी कहीं कहीं फॉरेस्ट विभाग में उसका नर्सरी किया जाता है, वहाँ से कम रेट में हम लोग लेके अपना उपयोग कर सकते हैं।
2: अच्छा, अगर चाहे तो जमीन कम है या फिर खेत है तो फिर खेत के आड़ में भी तो ऐसे सीधे बढ़ने वाले कुछ ऐसे पेड़ सबको लगा सकते हैं ना?
1: देखिए, हम लोग का जमीन कम है तो हम लोग आड़ में लगाएंगे, ऐसे ऐसे एक एक पौधा है आड़ में लगाएंगे तो उसका पत्ती गिरेगा मान लिया खेत में, तो उसका भी हम लोग को बहुत फायदेमंद होता है।
2: अच्छा अच्छा,
1: बहुत फायदेमंद होता है, क्या कि उसका पत्ती
2: सड़ेगा,
1: उसके बाद खाद के रूप में व्यवहार होगा, इसलिए आड़ में लगाना भी बहुत जरूरी है।
2: छायादार भी लगेगा, लोगों को अच्छा भी लगेगा,
1: लोगों को अच्छा लगेगा, फिर वो लंबा बढ़ेगा, उसके बाद वहाँ का पौष्टिक का वहाँ खाद के रूप में भी उसका जड़ भी अंदर तक जाएगा तो पानी का स्रोत ऊपर उठेगा, इसलिए लगाना आड़ में लगाना भी बहुत जरूरी
2: है। तो सिग्ना जी, आप तो काफ़ी दिनों से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ हम एक चीज़ और भी कहना चाहेंगे, जैसे कि जो हम आकाशवाणी की बातें करें तो फिर आज आकाशवाणी का जो दौर है वो 90 वर्षों तक का सफ़र है, और अब हम इसका अस्तित्व का देख पा रहे हैं पिछले कई वर्षों से, तो अभी पुराने श्रोता हैं तो आकाशवाणी के ये 90 वर्षों का सफ़र आप शुरुआत में कैसे लगता था, अभी क्या बदलाव आया है, पहले किस तरह का लगाव था रेडियो के प्रति, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, रेडियो के प्रति मैं कहना चाहूँगा, पहले बहुत हम लोग रेडियो से ही हर चीज़ सुन सकते थे।
2: अच्छा।
1: समाचार सुन सकते थे, फिर समय का मिलान भी कर सकते
2: अच्छा,
1: थे
2: अच्छा, हाँ।
1: जैसे हम लोग का घड़ी
2: हाँ।
1: घड़ी उस समय पहले बैटरी का नहीं था, पहले
2: स्प्रिंग
1: वाला था, हम लोग चाबी देते चाबी देना पड़ता था, चाबी
2: अच्छा,
1: देते थे, मान लिया चाबी से बंद हो गया तो वही रेडियो से हम लोग समाचार सुन के
2: अच्छा,
1: उस समाचार
2: अच्छा।
1: में सही टाइम में देता था, वही टाइम से हम लोग घड़ी का भी टाइम मिला सकते
2: अच्छा,
1: थे।
2: हमने रेडियो को बहुत विश्वसनीय और मानक समझ के आप एक उसको समझ के आप सब चीज काम करते थे ना?
1: हाँ, और अभी तो देखिए रेडियो का हर चीज मोबाइल में छीन लिया गया है, फिर भी अभी रेडियो का महत्व नहीं घटा
2: अच्छा,
1: है
2: अच्छा, हाँ।
1: बल्कि रेडियो का महत्व और बढ़ते जा रहा है।
2: अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। पहले जमाने में जैसे जब मोबाइल का जन्म नहीं हुआ था या फिर कहीं था ही नहीं, अब उस समय तो संचार का एक सशक्त और अच्छा माध्यम आकाशवाणी जो रेडियो है यही था, और उस समय से लोग इसको आज भी उसका अस्तित्व को समझ रहे हैं ना?
1: आज भी रेडियो का अस्तित्व को समझ रहे हैं, हालांकि मोबाइल छीन लिया लेकिन रेडियो में जैसे पहले
2: हाँ।
1: पहले हम लोग समाचार पत्र रेडियो से ही सुनते थे,
2: अच्छा,
1: अखबार तो बहुत कम आता था, जैसे
2: हाँ।
1: देहात वगैरह में, देहात में रेडियो था, रेडियो में एक जगह बैठ के मतलब वहाँ संग से बैठ के वहाँ सुनते थे।
2: अच्छा, पूरा ग्रुप में,
1: पूरा ग्रुप में सुनते थे, और हम लोग इतना जैसे बिना का हुआ
2: हाँ।
1: शिवा का हुआ, इसको सुनने
2: अच्छा,
1: के लिए पूरा ललायित होते थे।
2: हाँ, रेडियो सिलोन से जो भी प्रसारित होते थे वो बहुत ही एकदम लोकप्रिय भी लगता था,
1: बहुत लोकप्रिय लगता था, गाना सुनने के लिए हम लोग ललाए थे, इस समय यही गाना देगा, उस समय सब
2: अच्छा आपस में पूरा
1: चर्चा करते थे।
2: अच्छा अच्छा, हाँ। तो उस समय का जो लगाव था लोगों में, और क्योंकि संचार का माध्यम भी बहुत कम था और टीवी का जमाना भी नहीं था उस समय,
1: हाँ,
2: रेडियो में ही ज्यादा लगाव रहता था,
1: टीवी का माध्यम नहीं था, रेडियो में ही लगाव था, रेडियो रेडियो एक पूरा सभी के मन में विश्वसनीय पैदा करता था,
2: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
1: सभी को विश्वास हो जाता, हाँ इतना समय में हम लोग को ये समाचार मिलेंगे, बीबीसी का समाचार इतना समय में मिलेंगे,
2: अच्छा अच्छा, अच्छा।
1: सेलोन का समाचार इतना समय में मिलेंगे,
2: पहले से निर्धारित था और उसको उसके अनुसार आप इंतजार भी
1: करते थे।
2: अच्छा अच्छा, मतलब उसमें पूरा कोई किसी प्रकार का कोई मिथ्या नहीं, पूरा एकदम सही और सटीक मानते हुए आप उसमें चलते थे, और जो भी समाचार दी जा रही है मौसम के बारे में, घटना के बारे में, तो सब चीज़ आप लोग सही मान के उसके अनुसार ही अपना दिनचर्या में आप लोग चर्चा भी करते थे ना?
1: हाँ, उसके अनुसार हम लोग चर्चा करते थे, और यही हम लोग का रेडियो ही एक विश्वसनीय माध्यम था।
2: हाँ हाँ हाँ हाँ, चाहे खेती बाड़ी की बातें करें, चाहे मनोरंजन की बातें करें, तो हर चीज इसी में हमारा समय गुजरता है।
1: शिक्षा के माध्यम में खेल खेल के समाचार, फिर कोई भी समाचार उसे हम लोग उसको पूरा विश्वसनीय रूप से मानते थे और सुनते थे।
2: अच्छा अच्छा, तो आज जो बाजारों में देखा जाता है कि ट्रांजिस्टर या रेडियो कहीं दुकानों में बहुत कम ही दिखते हैं या फिर नहीं के बराबर, सब एक मोबाइल फोन में ही सिमट गया है, तो यहाँ से भी तो बहुत कुछ ऐसे ऐप्स हैं या फिर कुछ ऐसे मैंने माध्यम है जिसमें हम लोग हर सेंटर को सुन सकते हैं, इस तरह का भी तो लगाव है ना इसमें भी?
1: हाँ, इसमें भी उस तरह का लगाव है, जैसे पहले हम लोग सुनते थे BBC न्यूज और एक FM।
2: हाँ,
1: FM तो अभी भी है, हर जैसे मोबाइल में भी FM रहता है।
2: हाँ, तो बहुत सारे केंद्र है,
1: केंद्र है, उसे सुन सकते हैं। तो रेडियो, हालांकि रेडियो अभी पहले से घटा है, लेकिन वो मोबाइल में अभी वो एप्स डाल के हम लोग
2: सुन सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आपने हमारे श्रोता साथियों को, किसान भाइयों को, अपने रेडियो के प्रति अपना लगाव और उनका महत्व के बारे में और उनका 90 वर्षों का सफ़र के बारे में और इसके साथ साथ जो भी हम वृक्षारोपण की बातें की है, इस पर काफ़ी कुछ अनुभव अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार
1: जोहार।
0: तो किसान भाई बहनों, अभी हम मिल रहे थे शिवनाथ महतो जी के साथ और वृक्षारोपण पर विशेष जानकारी दे रहे थे। इसके पश्चात हम 90 वर्षों का सफ़र जो आज आकाशवाणी का हो रहा है, इस पर भी कुछ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे और इसी भेंटवार्ता और जानकारी के साथ ही आज का खेती गृहस्थी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप कमलेंदु को विदा दें, सभी को पुनः एक बार जोहार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको ले चलते हैं हमें रांची केंद्र, जहां से आप कुछ ही पलों में सुनेंगे मुख्य समाचार।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर कल सुबह 11 बजे रांची पहुंचेंगे। इस सिलसिले में रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के भव्य स्वागत और सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। पूर्व मध्य रेलवे के बरवाडीह गरवा रोड खंड पर मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 27 घंटे बाद भी अप ट्रैक पर परिचालन बाधित है। मलबे को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जबकि वैकल्पिक रिवर्सल लाइन से मालगाड़ियों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। हादसे के कारण आधा दर्जन पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। हजारीबाग जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आज भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया। रामगढ़ स्टेशन मुख्यालय के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में केंद्र से आए अधिकारियों ने सेवानिवृत्त जवानों की पेंशन और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं को सुना। राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज मेदिनीनगर में पलामू प्रमंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निरंतर अभियानों से राज्य जल्द नक्सल मुक्त होगा। डीजीपी ने भूमि माफिया पर नकेल कसने और लापता बच्चों की बरामदगी के लिए एसआईटी गठन की बात कही। गोड्डा के कर्पूरी नगर में 3 दिनों से बिजली गुल रहने से गुस्साए लोगों ने आज सरकंडा चौक जाम कर दिया। स्थानीय निवासियों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही और छोटा ट्रांसफार्मर लगाने का आरोप लगाया। बिजली सहायक अभियंता सुरेंद्र गुप्ता के आश्वासन और तत्काल ट्रॉली ट्रांसफार्मर लगाने के बाद जाम हटाया गया। रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में आज नशाखोरी के खिलाफ 2 दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के सैफ उमर और सीआईपी के डॉक्टर संजय कुमार मुंडा ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम हो अखड़ा।

निया आकाशवाणी रिया चे भाषा केंद्र तना एफएम रिया 101.7 मेगाहर्ट्ज श्रवण अहिमे तना ना यू पिंग छः बजाय ने ते दो मिनट हो बसिकाय ना कार्यक्रम हो आकड़ा अहिमे चिबन लगे ना अलिंग बिठा जू कि ने मैं हेंद्र भैया सभीन को अलिंग पे ते जोहार जो दिन लगे गे स्पुरे लिंग सागमा गुत डे इना को मियन मियत लिंग अहिमे चिबन ना आयुम लगे एफएम रेडियो जपा रगे तैन पे छे मर ना तरंग बिन जपाओ जो ने एंड्रा द एला अयम चिबिना लिंग सभी को एरते अटकर जगर रिया जगरते तो मिना अब निम दारू रिया घून उन्होंने नाते चिकन लपा को बैठा या निम दारू मियन ऐसु बुगिन दारू तेने अब लगिन निया निम दारू जो अब सभी हतुरे बिठाओ गया उन्होंने निम दारू एते अब ना नलका जट सिंगे मिते ऐसे पूरे पुसुरी को कसरा को लिखना को हो बन गया नो गाँव को जाना है तो गाँवन रही हो निया को अब पता है ते लेकर के अब सबिन कर कर सबिन निया है ते अब लाभ एडी दे अनो निया रिया गुण इन लिखा गे मेना यदि अब इन रे फुंसी को या कसरा लिखना को जे जाना जितना ते बो तो याना ते बो गाँवन रहो निन रिया पता रीड गुंडे के ते इन रे तपान रे एना ऐसो अंजा गाँव को बुगिन हुआ अनो एन फुसरी किन ते फुसरी को ऐसो अंजा के बुगिन हुआ एन लेका ते नन निम्दारुरी या गुण में ना अनो निया जो अबो लापा मैंने रे दो अनो मेना ची नन रे आलापा अबो सीता करकट किन ते समालाई रे गे बारी बंदा अपिए पता एन्ना तगवगुंडे के ते नरे रसे उड़े अब हमोरे पुसुरी खसरा अनो मलेरिया हसुलकन हसुको का नामा इनकते ने नेनरिया लापको मेना अब नन निम्दारुरिया करकते बु करकडन रदो अब मलेरिया हसुको का नामुए पुसुरी खसरा लेकन हसुको एतबु पंचाव दयो इना मनते अते निम्दारु को तैन रदो निया को काम एंडा अते अदर कर अनो निया को भुगिल का जोग सुनते हो बनो निया अब हमोरिया लगे दो निया को लपा में ना इन साथ साथ रे ने निम्दारु रिया अनो मियन गुण में ना अब जान जितना कबू हेरिया बिडी अब एन रे चिदु को जिदु को उपनो एन रदो नन रिया पता को गे जुका जुका थरके ते गोटा नी दे निया दारे तुपु के ते गपते रहना वारोल के ते ची चलने के ते इना ते स्प्रे तर दो ची इर्चित कर दो सभी निकन चिदु को गोजुआ निलेकन गुण कोनो फे को मिना ने निम्दार रहे इन्दर दो ना दबो चिरगल के डॉक्टरों मर सभी अबो ने निम्दार को मीपियन वाजा पार ताइनो का अंदर तिकिन सिंगे पेंग जदि अबन उमुल बन सनंगा एंदर निम उमुल कर बन गीति दई रियो अबिना होमो स्वास्थ्य तयो तिसिंगे जानकारी रिया जगर छे अटकर जगर दो नन मोल रगे चबाव तना एला अंचनम लिंग आयु में छिबिना अलबन थोड़ा न दूर है।

0: Naben ayam tan tekina hero probria duran pulmati part pingwa undo julikwa. Nen hero probria duran janam ela bepta jagar. Habu nen pachim simbumre espure inkan tight gamina jingelchi abu malaria kage chaba tanraka atkarwa undo ena. Indo tishinge bise enrage abu ayam liya juka mar.
1: Tiba akan study re Dr. Sarita Jamudha tikin. Akin ACC Hospital jik penere kin paititne Dr. Ria. Endo juar Dr. Sep marabe.
2: Juar.
1: Endo aben lo te na malaria hasu chikete hasu e chilikete bu buginwa. Ando chilikete bu urumia chi ni malaria hasu ga hasu itne men lekan jagar ko mina. Endo air jati itu doktor aling inaling kuli binachi aben do ben doktor akan itu jauge hasu rokutan ko ben bugin kutan aben nel kutan aben na ajong aben ta ate chicken hasu te hasu ken ko pura ko jutne
2: inka do sabin tararen hasu ren ko mina kuwa
1: yeah.
2: Men do especially malaria te hasu ten ko esu pura te ko hujue ko
1: acha
2: yeah ando inka chuki abu nintado malaria ren hasu wala kira ko jada minakoa
1: yeah.
2: Ina mente nintado malaria hasuge sabiko ete pure do minar
1: acha malaria suben menia ya tarado rabanga subu menia inake okoe do uruyu hasu ko menia yeah. Nen hasu chiliken hasu tene
2: nen hasu do actually malaria parjibi chalte te hubawa
1: yeah.
2: Nen malaria parjibi ko do char tara ren ko minakwa
1: acha
2: neko do plasmodium falciparum ko mitakwa plasmodium vivax plasmodium ovale ando plasmodium malaria tene
1: yeah.
2: Mendo nen parjibi ko abue homore do tin tarika te ko boluwa ko
1: acha
2: pehla tarika do tana chi agar mada anopheles sikie
1: yeah.
2: Nen parjibi te sankramit kane अगर किसी हो को हुए ये इन रे नेन मलेरिया हसु हसाबी ये आंडो दूसरा दो तना ची अगर मलेरिया ते पीड़ित के न हुआ मायम मेरो बुगिन हो रे बु हटिंगिया इन रे आंडो तीसरा तना ची गर्भवती महिला अगर मलेरिया हसु हसु के ने इन रे दो आया गर्भ रे पलान तन होन इन बूटी द्वारा शेनुआ
1: अच्छा sikiria jagar ben jagar kida sikido nemin sikiko domina ko chiliken sikiko hue keren ina hoba
2: amendo khas tararen sikie tene
1: yeah.
2: En sikie do ko mitie mada anopheles sikie
1: acha yeah. Ini ing sama hue kero ba achi ini asutani hue ke te itani hue amente ina do ba otna
2: iya yeah. Ayer chilking kaji kida
1: yeah.
2: Inka ge chi nen sikie do mendo malaria te hasuteni hoe हुए किए एने ते इटानी अंडो हुए उरे ये तब एनरे नेन हासु दो हटिंग ना एन इटा होरे
1: अच्छा अच्छा नेन सिकी ते बचावन ते आको चिकन उपाय को मेना डॉक्टर अबन पाते
2: या नेन सिकीए दो बचावन लगी दो खास करके उआ करे छिलके निदे पेन गीती केन समय दो कभी पी रे कागीती तिया दरकार पी माने उआ ते बाहर रे कागीती तिया दरकार उआ भीतर रे गीती तिया दरकार आंडो मच्छरदानी लगाओ कहते गीती तिया दरकार उसके बाद नेन सिखिए दो दोड़ा रे मीना दिरिया दा को रे माने जान आ रियो रुकाओ कना हप्पा तरीके केन दा नेन रे नेन सिखी अंडा एमी है इना मेनते अगर अमा उआ आसपास रे नीलकन दोड़ा को मन मीना रे दो नेन दोड़ा को पेरे ततिया दरकार आंडो नाबरसिन दे इनका बाजार रियो सिकिए गोगो एतिया रेट को एसुना मुआ चिलकेत माने अगरबत्ती लिखना को या गुड नाइट मेंत्रियो हुजुए तो निलकना को कम से कम निदे पेंग जुलके ते गीती ती आदर करा आंडो आसपास अब वा आसपास को हमेशा साफ सुथरा गे रिके के ते दुर कर जान झाड़ा झाड़ी को लिखना मीना इना को इमन कटाव ततिया दुर करा
1: एंडो

जय हिंद बच्चों। आज की नन्ही दुनिया सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को अंजु दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों आपको मालूम है आज कौन सा दिन है? बच्चों आज विश्व पर्यावरण दिवस है। अब बताइए ये पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारे चारों ओर का वह प्राकृतिक आवरण है जिसमें हम रहते हैं। यह हमें जीवन के लिए आवश्यक शुद्ध हवा, पानी और भोजन प्रदान करता है। इसे संरक्षित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है ना? हमारे आसपास का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। अगर आपको पर्यावरण का अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता दे रही हूँ, और पर्यावरण दिवस हम क्यों मनाते हैं ये भी हम बात करेंगे, ठीक है? पर्यावरण सभी जैविक और अजैविक घटकों से बनता है। हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना चाहिए। यह हमें भोजन, पानी, वायु आश्रय देता है। यह हमारे दैनिक जीवन में अहम योगदान देता है ना? भोजन, पानी, वायु तो हमारे दैनिक जीवन में साथ देता है ना, काम देता है, ठीक है? पर्यावरणीय प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ रहा है। स्वस्थ पर्यावरण प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है। तो हमें क्या करना है? प्रकृति की रक्षा करनी है, पर्यावरण को ध्यान देना है। क्या करना है? पेड़ लगाना है ना? सबसे पहले तो पेड़ लगाना है, तभी हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, प्रदूषण कम होगा, है ना? हमें पेड़ लगाकर तथा पानी बचाकर पर्यावरण को बचाना चाहिए, और पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है बच्चों, ठीक है? तो अब हमने जाना कि पर्यावरण क्या है। अब हम क्यों मनाते हैं पर्यावरण दिवस, इस पर बात करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल हम 5 जून को मनाया जाने वाला एक वैश्विक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य लोगों को प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है, जैसे हम बातें कर रहे हैं, ठीक है? इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 1972 में इसकी स्थापना की गई, और इसके बाद 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तब से हर साल 140 से अधिक देश इस आयोजन में हिस्सा लेते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, वनों की कटाई, जैव विविधता के नुकसान जैसे गंभीर मुद्दों पर लोगों को शिक्षित करना, बताना हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, और क्या करना है, वनों की कटाई हमें नहीं करनी है। हमारे पेड़ कट जाते हैं तो हमें हमारा पूरा वातावरण दूषित हो जाता है ना? दुनिया भर की सरकारें व्यवसायों और आम नागरिकों को पर्यावरण को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करना भी इसका उद्देश्य है। हर वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा एक विशिष्ट विषय और एक मेजबान देश चुना जाता है। इस दिन लोग पौधे लगाने, सफाई अभियान चलाने, पर्यावरण के अनुकूल आदतों जैसे प्लास्टिक का उपयोग कम करना को अपनाने के लिए संकल्प लेते हैं। आप बच्चों पर्यावरण संरक्षण के बारे में अधिक से अधिक जानकारी और इससे जुड़ी पहलुओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस का आधिकारिक जैसे इससे जानकारी लीजिए, और

आप जहाँ पेड़ लगाना है, सबसे बड़ी बात तो पानी बचाना है। और हम जो प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, बोतलों का उपयोग करते हैं, उनको यहाँ वहाँ ना फेंक करके उनको एक जगह इकट्ठा करना है, प्रदूषण नहीं फैलाना है। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है, आपको भी सीखना है, हम सबको सीखना है, और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है, सबको बताना है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा बच्चों? विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में हमने बातें की। ठीक है, चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। सुनते हैं पहले एक जरूरी संदेश।

0: सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे रखा गया आम बोले रुड़ तबन में अल परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोर आए को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो वो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रनबला देवी गाँव बारे भक्त कहाँ तो घर आए में हमारे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए है
5: मुकुम बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा मिका
6: अन्य मुकुम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने मिल पुरी उड़ी ने बागिया तो कि दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तो मैं दूर दूर गई हैं तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेरे मिया
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया नु तुम ते ना आप ही लेते ना
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण निशुल्क चिकित्सा बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क कन्यादान हेतु अनुदान उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: हमने सुना एक जरूरी संदेश, चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आपको एक जानकारी दे देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे जिले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता

पिता नहीं है, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में है। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत पोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है, इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकतानुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक कि वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष और दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवार को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी है तो जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या फिर 9090700489 पर संपर्क करें, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चायवासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई पश्चिमी सिंहभूम द्वारा जन सूचना जारी। हमने जानकारी ली बच्चों, चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

0: आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 8 जून संध्या 6:30 पर।
1: इस कार्यक्रम के पुनः प्रसारण को आप सुन सकेंगे 9 जून सुबह के 9 बजे।
0: कार्यक्रम में प्रस्तुति स्वर होगा संगीता शर्मा और सुनीता हांसदा का।
1: लेखन और संकलन संगीता शर्मा और सुनीता हांसदा का।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे राजेश कुमार राय।
1: ये प्रस्तुति होगी आकाशवाणी चाईबासा की।
0: तो सुनना ना भूले आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: तो कैसे हैं आप लोग?
1: हम सभी अच्छे हैं।
0: अच्छे हैं। स्कूल जा रहे हैं आप लोग?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, तो आज हमारी नन्ही दुनिया में कौन कौन हमारे साथ शामिल हुए हैं? कौन है? आपका नाम क्या है बेटा?
2: मेरा नाम अर्चना देवगम है।
0: अर्चना देवगम है। आपका नाम?
3: मेरा नाम दीपांजलि गोप है।
0: हाँ।
4: मेरा नाम शुभांकर गोप है।
5: मेरा नाम विश्वनाथ होनागा है।
0: और
6: मेरा नाम जस्मीन होनागा है।
7: मेरा नाम जयंती पिंगवा है।
8: मेरा चेन्नई पिंगवा है।
0: चलिए,

0: अच्छा ये बताइए, अच्छा आप लोग स्कूल जा रहे हैं कि नहीं?
1: जा रहे हैं।
0: अच्छा तो अच्छा तो हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तो आप लोग के लिए, आप लोग के पास मेरे लिए क्या क्या है बताइए, कुछ सुनाने के लिए है?
2: जी कहानी
0: है, कविता है, और क्या क्या है? गाना नहीं है, कोई गाना नहीं गाएगा?
2: नहीं।
0: गाना आता है बेटा आपको? कैसे वाला गाना आता है बताइए तो, आता है? कौन गाना गाए? कस्तूरी अच्छा गाती है, जब छोटी सी थी तो ये बहुत गाना गाती थी।
2: जी डांस भी बहुत अच्छा करती थी।
0: हाँ अच्छा, लेकिन आज उन लोग को गाना सुना है तो कैसा रहेगा?
2: बहुत अच्छा रहेगा
0: ना, मजा आएगा ना
3: जी, सबको गाएंगे तो अच्छा लगेगा।
0: नहीं पहले आप सुनाइए, उसके बाद सबको सुनाएगा। आप विनती सुनाइएगा। अच्छा सबसे पहले तो विनती सुनाना चाह रही है, तो विनती हम लोग सुन ले पहले।
1: जी
0: हाँ चलिए चलिए चलिए चलिए सुनाइए
3: विनती। उसने सूरज चांद बनाया, उसने तारों को चमका, उसने धरती रच दी न्यारी, फल फूलों से रच दी क्यारी, पंछी को तो गीत सिखाए, सरसी नदियों को सरसाया, तितली के पंख सजाए, कैया से निद्दू दुआ, उसने मानव जन्म दिया है, जीवन का वरदान दिया है, उस ईश्वर को सदा मना, उसे स्नेह से शीश झुका।
0: वेरी गुड, ताली हो जाए। इतना सुंदर। अच्छा विनती हम लोग सुनते हैं करते हैं, और क्लास शुरू होने से पहले आप लोग क्या करते हैं बताइए, असेंबली में
2: सबसे पहले तो
0: प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करना चाहिए ना? हाँ प्रार्थना करना चाहिए ना, विनती प्रार्थना होता है
2: जी,
0: है ना? तो उससे हम लोग को क्या क्या मिलता है, क्यों करते हैं हम लोग?
2: अपने अच्छे दिन
0: के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, है ना
2: जी? हाँ,
0: उसमें मन शुद्ध होता है। गुड, वेरी गुड। अच्छा ये तो हम लोग विनती सुन लिए, अब किसकी बार ये, कौन सुना रहा है? चलिए सुनाइए। कहानी सुनाएगी? अच्छा
3: मैं कहानी सुनाऊंगी, कंजूस।
0: कंजूस, अरे कंजूस वाली कहानी, चलिए।
3: एक आदमी था, उसका नाम श्यामू था। एक दिन उसको नारियल की जरूरत पड़ गई। वह नारियल लेने बाजार पहुंचा। उसने दुकानदार से पूछा, एक नारियल कितने का? दुकानदार बोला, 1 रुपए का। श्यामू बोला, 1 रुपए में 2 दे दो ना। दुकानदार बोला, आगे मिलेंगे। वहाँ आगे गया, वहाँ 1 रुपए में 2 नारियल मिल रहे थे।
0: 2 नारियल मिल रहे थे, ठीक।
3: श्यामू बोला, 1 रुपए में 4 दे दो ना। दूसरा दुकानदार बोला, आगे मिलेंगे। वह आगे गया, वहाँ 1 रुपए में 4 नारियल मिल रहे थे। श्यामू बोला, 1 रुपए में 8 दे दो ना। तीसरा दुकानदार बोला, आगे नारियल का पेड़ है, वहाँ से तोड़ लो, कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। श्यामू पेड़ के पास पहुँचा, उसने पेड़ पर चढ़कर पहले कभी नारियल नहीं तोड़े थे। वह पेड़ पर चढ़ गया, खूब सारे नारियल तोड़ लिए, पर जब उतरने को सोचा तो डर लगने लगा। उसने ऊंचे पेड़ से कैसे उतरूं? बस पेड़ पर लटके लटके ही चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, बचाने वाले को 100 रुपए दूंगा। इतना ही है।
0: अच्छा क्या शिक्षा मिला इससे बताइए तो?
2: जी हमें कंजूस नहीं रहना चाहिए। नहीं तो हम ही

0: जय हिंद बच्चों।
1: पहले कभी नारियल नहीं तोड़े थे, वह पेड़ पर चढ़ गया, खूब सारे नारियल तोड़ लिए, पर जब उतर
2: जी हाँ। मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बूढ़ा बैल और सियार। एक बैल था, जब वह बूढ़ा हो गया तो उसका मालिक उसे जंगल में छोड़ आया। बैल बूढ़ा जरूर था, लेकिन वह बहुत समझदार था। वह अपने गुणों, कमजोरियों और नापसंद और पसंद को अच्छी तरह जानता था। सुरक्षा की भी भरपूर व्यवस्था थी। बैल ने सभी परिस्थितियों का आकलन किया और सुख शांति के साथ आराम से वहाँ जिंदगी बिताने का निश्चय किया। जंगल में रहते रहते बैल की दोस्ती अन्य जानवरों से भी हो गई। सियार से उसकी घनिष्ठता ज्यादा थी। बैल शाम से अकेले रहता था। उसका साहस देखकर सियार उसे समय समय पर खतरों से सचेत करता रहता था। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा हो गया। सारा दिन खाते पीते और आराम से रहने के कारण बैल अच्छा खासा तंदुरुस्त हो गया था। एक दिन की उसे एक शेर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। बैल घबराया नहीं, तरह बैल ने समझदारी और हिम्मत से अपनी जान बचा ली। अब दोनों मित्र आत्मनिर्भर होकर मजे से रहने लगे। थैंक यू।
0: वेरी गुड, ताली हो जाए। अच्छा, कहानी भी हो गया, कविता भी हो गया।
3: इतना।
0: अच्छा, कहावत सब कोई जानता है? कहावत ऐसे ही कान लगाना, मतलब
2: कान लगाना,
0: हाँ,
2: चुगली करना,
0: ध्यान देना, कान भरना, मतलब
2: चुगली करना,
0: कान लगाना, ध्यान देना। और आप क्या क्या सुनाएगा?
4: माला फेर जुक बया मिटा न मन का चारी के मन का फेर, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, तिनका काबू न नींदाए, पांव तले जो होए कबू उड़ी आखिर पैर, अब कई आधार गया नने ही गया सने ही, ये तीनों जब ही कहा कुछ दे ही, जो राहिम गति दीप की कुल का बुद्ध गति सोए, बारे उजियारे जले बड़े अंधो अंधेरो होए, राहिम देख बड़े इनको लगुन दीजिए डायरी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, आपकी पहुँच बिचारी के कर तब करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लाबी सर, भले बुरे सब एक से जो लो बोतल नाही, जन पर तू है काक पीक रिंतु वशन का माही, सब सहायक सबल के को नवी निवल सहाय, भवन जगवत आग कौन दिवी देत बुझाइए।
0: वेरी गुड, ताली हो जाए। उसका देखिए, इसका सुनाने का तरीका कितना सुंदर है ना
2: जी।
0: हाँ, गाना गा के ना वैसे होता ना, कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, आप बाबू कुछ सुना रहे हैं?
2: क्यों
5: भी आया, सुंदर भी आया।

इसी के साथ आज का हमारा नन्ही दुनिया का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अंजू दीदी को दीजिए विदा। जय हिंद।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम नन्ही दुनिया। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको ले चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल बस कुछ ही पलों में।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक, दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने के संकेत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

0: नितिन नबीन झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर कल पहुंचेंगे रांची। प्रदेश भाजपा ने तय की सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने मेदिनीनगर में की प्रमंडलीय समीक्षा। बच्चों के लापता होने के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित। भूमि माफियाओं पर भी कसेगा शिकंजा। राज्यपाल ने लोकभवन परिसर में किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का किया आह्वान। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले दो दिन बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने धनबाद और बोकारो समेत 13 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता बैजनाथ राम ने बताया कि कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री से दोनों राज्यसभा सीटों पर जेएमएम प्रत्याशी उतारने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत किया गया है।
1: देखिए, जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता है सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े, और इसके लिए हम लोगों ने माननीय केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन अचानक से विदाउट कंसेंट कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम घोषित हो गया है, तो भाजपा को रोकने के लिए आवश्यक है कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े।
0: राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने महागठबंधन की एकजुटता पर भरोसा जताया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा दोनों सीटों पर दावा करने के संकेतों के बीच कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जेएमएम कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह अटूट है। पार्टी नेता राजेश ठाकुर ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा चुनाव को लेकर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही लेंगे और सभी दल मिलकर चुनावी रणनीति तय करेंगे।
2: सभी लोग सोच समझ करके फैसला लेंगे, और इस संदर्भ में जो बेहतर है वो हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू जी ही बता पाएंगे, क्योंकि वही लगातार बातचीत कर रहे थे। और प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी की गठबंधन पूरी तरह एकजुट है, हमारे दोनों जो गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो चुनाव।
0: इस बीच अब से थोड़ी ही देर बाद रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में पार्टी के सभी विधायक दल शामिल होंगे, जहां चुनाव की रणनीति और गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाने पर गंभीर चर्चा की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर कल सुबह 11 बजे रांची पहुंचेंगे। इस सिलसिले में रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के भव्य स्वागत और सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि नितिन नबीन के झारखंड दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है।
2: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहला झारखंड प्रवास है, तैयारियां चल रही है और बहुत उत्साह है। आप देखेंगे पूरा शहर सज रहा है, लोग मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उनका जन्म भी इसी झारखंड रांची में हुआ है, वो बड़े भी पले बड़े भी यहाँ से, और भी उनका निकटता है।
0: हजारीबाग जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आज भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया। रामगढ़ स्टेशन मुख्यालय के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में केंद्र से आए अधिकारियों ने सेवानिवृत्त जवानों की पेंशन और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं को सुना। कर्नल नीलेश श्रीवास्तव ने कहा कि लंबित समस्याओं को मुख्यालय भेजकर फीडबैक लिया जाएगा।
3: यदि किसी की कोई समस्या थी तो हमारे पास एक मैकेनिज्म है कि उनकी जो भी समस्या है वो हम एक ग्रीवांस फॉर्म में रजिस्टर करेंगे, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेंगे, और यदि वो इंडियन आर्मी के किसी भी आर्म से कंसर्न हो हम उस रिकॉर्ड ऑफिस को संपर्क करेंगे और उस रिकॉर्ड ऑफिस को उनकी समस्या बताएंगे और इंश्योर करेंगे कि वो रिजॉल्व हो, और इनको कॉन्टैक्ट करके हम फीडबैक लेंगे कि वो रिजॉल्व हुई कि नहीं।
0: राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज मेदिनीनगर में पलामू प्रमंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निरंतर अभियानों से राज्य जल्द नक्सल मुक्त होगा। डीजीपी ने भूमि माफिया पर नकेल कसने और लापता बच्चों की बरामदगी के लिए एसआईटी गठन की बात कही। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर रांची स्थित लोकभवन परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने नागरिकों से प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाकर ही भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए मानवीय गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए।
4: लोगों से अपील भी करना चाहूंगा कि भाई एक पेड़ मां के नाम आज से कम प्रारंभ हमें करना चाहिए, ताकि पर्यावरण को हम सब लोग बचा सके। पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसको हम लोग ठीक, अगर ठीक भी हमसे सब लोगों को करना, हर व्यक्ति का एक योगदान हो सकता है तो पौधा लगा करके हो सकता है।
0: लोहरदगा के बक्सी डिपा में नवनिर्मित जैव विविधता पार्क का उद्घाटन आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सांसद सुखदेव भगत और उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रकृति की रक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से एक एक पौधा लगाने और इस पार्क को संरक्षित रखने की अपील की। धनबाद के झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित परिवारों के लिए आज बैलगढ़िया पुनर्वास स्थल में नए उप डाकघर का उद्घाटन किया गया। सांसद ढुल्लू महतो और प्रमंडलीय डाक अध्यक्ष राजीव रंजन ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। सांसद ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को बैंकिंग और डाक सेवाओं का लाभ अपने ही क्षेत्र में मिलेगा।
5: यहाँ पे उप डाक घर नहीं था, बहुत परेशानी होती थी। यहाँ पे हमारे कोयला मंत्री जी आए थे, उस समय हम लोगों ने आश्वस्त किए थे कि बहुत जल्द यहाँ पे उप डाक घर हम लोगों ने खुलवाने का काम शुभारंभ हुआ है। इससे बहुत तरह का लाभ यहाँ के लोगों को पहुँच पाएगा, लोगों का समय का बचत होगा, लोगों को आसानी तरीके से कोई एक साधारण से साधारण लोग वहाँ पे जाकर अपनी हर सुविधा को वहाँ पे जानकारी ले सकता है।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो और संताल परगना सहित 13 जिलों के लिए तेज हवाओं और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची और खूंटी सहित 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राजधानी रांची में 6 और 7 जून को बारिश की संभावना है। झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग के 5वें मुकाबले में कुल्हान डायनेमोज ने पलामू वॉरियर्स को 7 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पलामू वॉरियर्स ने ईसा केशरी के 54 रनों की मदद से 136 रन बनाए। जवाब में कुल्हान डायनेमोज ने 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने के संकेत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचेंगे रांची। प्रदेश भाजपा ने तय की सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने मेदिनीनगर में की प्रमंडलीय समीक्षा। बच्चों के लापता होने के मामलों की जांच के लिए SIT गठित। भूमि माफियाओं पर भी कसेगा शिकंजा। राज्यपाल ने लोकभवन परिसर में किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का किया आह्वान। और राजधानी रांची समेत राज्य में अगले 2 दिन बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने धनबाद और बोकारो समेत 13 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: उसमें काम कर रहे हैं, एक शॉर्ट स्टोरीज पर जो शॉर्ट मूवी, इसके अलावा जो झारखंड की जो सभ्यता या यहाँ पर जो हेरिटेज है, ये सब के लिए विकसित सकते हुए हम लोग उसके लिए डॉक्यूमेंट्री भी हम लोग मैंने रोजगार फरक भी हो, रोजगार से जुड़े, और मुख्य रूप से झारखंड राज्य स्तरीय है और झारखंड के ही लोग।
1: पलामू में थाना एवं चेकिंग पॉइंट के लिए डायल 112 के तहत 36 नई बाइक दी गई। पुलिस लाइन में समारोह आयोजित हुआ। पलामू के डीआईजी किशोर कौशल एवं एसपी कपिल चौधरी ने बाइक रवाना की। मौके पर डीआईजी किशोर कौशल एवं एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि
2: ये झारखंड सरकार के द्वारा सभी जिलों को चार पहिया वाहन और दोपहिया वाहन उपलब्ध कराए गए, जिससे कि सघन रूप से वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। उसी चरण में पहले
3: This ecosystem has really evolved and got transformed, I would say, in India. And today it contributes almost 30% to the GDP, 35% to manufacturing, 60% to employment, and 48% to exports. So that is the reason why a lot of people say it has become the backbone of the Indian economy.
4: Usually, anyone engaged in entrepreneurship is looking at a business opportunity and then they're looking to create a system to exploit that opportunity. How do you see the government supporting this energy and spirit?
3: I would say the policy support has been a major of this ecosystem. And the way the policy has also, you know, formed in the last few pensions, MSME

0: Rajesh, thank you so much for being with us.
1: Thank you.
2: In the special series, 12 Years of the Modi Government, you are listening to an exclusive interview with Bharat Kheda, Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, on major reforms and initiatives for the growth and empowerment of MSMEs. Interviewer was Arjun J. Chaudhary. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ विशेष साक्षात्कार साक्षात्कार कर रहे थे अर्जुन जी चौधरी। ये कार्यक्रम के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया AIR और YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष विशेष कार्यक्रम। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 साल विशेष कार्यक्रम हमारे चाईबासा केंद्र के द्वारा।

सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी ने अपनी शानदार यात्रा के 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 8 जून 1936 को इस ऐतिहासिक सेवा की शुरुआत की गई थी, जिसने आज़ादी के समय से लेकर आज तक देश के हर कोने में मनोरंजन, शिक्षा और समाचार पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अब अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी। इस गीत को आवाज़ दिया है किशोर कुमार ने और गीत लिखा है मजर सुल्तानपुरी ने, संगीत है एसटी बर्मन का। इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम पंचौनिया तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंचोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक आराध्या चंचोलिया, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर वीरक, जेतेंग वीरक और मिका वीरक, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृषि श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीला, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म चलती का नाम गाड़ी का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंधा छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है बेताब। शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है आरडी बर्मन का। इस गीत को सुनना चाहते हैं दुर्गाई सैलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभरनी से सी आर कुलकर्णी, गांव गीता सरायकेला से राधा कृष्णा को, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, सुमित गोप, शुभम गोप, विक्की गोप, राजू गोप, विनोद गोप, सरस्वती देवी, गीता देवी, रीता देवी, सुनीता देवी, उमा कुमारी और भारती। बड़ा पंबो सुपाई साई से हैं देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा ताती, प्रकाश, ललित प्रधान, शावदेव नायक, सुदर्शन प्रमाणिक। चक्रधरपुर गांव गेलिया रोहर से बनमाली बेसरा, कोमल बासंती, सिद्ध कुमारी, अनु और पूजा। चलिए इन सब की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं ये प्यारा संगीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 8 जून संध्या 6:30 पर।
1: इस कार्यक्रम के पुनः प्रसारण को आप सुन सकेंगे 9 जून सुबह के 9 बजे।
0: कार्यक्रम में प्रस्तुति स्वर होगा संगीता शर्मा।

0: सुनीता हांसदा का,
1: लेखन और संकलन संगीता शर्मा और सुनीता हांसदा का।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे राजेश कुमार राय।
1: ये प्रस्तुति होगी आकाशवाणी चाईबासा की।
0: तो सुनना ना भूले आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से।
2: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आपको हम सुनवा रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म क्रिएचर 3D का ये गीत। अरिजीत सिंह की आवाज़ में टोनी कक्कड़ का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं पुंडाकाटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी देवी, संजय महली, रघुनाथ चढ़त और NS महली। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी, VP रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, BK पुरी, कैलाश पुरी, अनीता पुरी, ममता पुरी, मेघा पुरी, पूजा पुरी, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लालसा कपूर, रमा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीश पुरी, सतीश पुरी, राकेश पुरी, विनोद पुरी, पाली पुरी, DC पुरी, अरुण पुरी, नेहा पुरी, एकता पुरी, शम्मी पुरी, बोधी पुरी, सुनील पुरी, VK पुरी और RS पुरी। इस गीत को सुनना चाहते हैं नारायणपुर कैलाश बाबा आश्रम से, खरसवां से हैं खेत्रो मोहन साहू, नायडू महतो, बाबा कैलाश जी, मुखिया बड़ा आमदा, पंचायत से प्रधान मारी सोए, नाज मंजिल महसूल, सीतामढ़ी बिहार से हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, रुबीना वसीम, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अभिहा नाज, शाहिन नाज, नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख, और आई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल शेख, नुजहत जहा नाज, कांति निकेतन राजनगर से कुश्वेश्वर प्रसाद गुप्ता और रुद्र गुप्ता, मौलडिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, वरिवी वारी, वंदने, दीपक संतोष, राहुल बिट्टू, आयुष गीतेश, अनु तनु, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो, मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक प्रधान, तनुश्री प्रधान और नीलपानी प्रधान। चलिए, सबके फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं संपन्न होता है। जाने से पहले हम आपको अपना पता बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम रजनीगंधा, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चाईबासा, पिन कोड है 833201। तो अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए

बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय

0: सेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. Now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। इस समय रात्रि के 10:01 होने को हैं। आइए सुनवाते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल।

कार्यक्रम महफिल सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पेश कर रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में ये गजल।

श्रोताओं, इन्हीं गजलों के साथ आज का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग।

कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं इस सुरों के रंग कार्यक्रम में घरौंदा फिल्म का ये नगमा रूना लैला और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ों में। गुलजार के बोल हैं, संगीत है जयदेव का।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरु किरा। अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है गोरा और काला। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग छवि के साथ। इसके पहले आपने सुना गाइड फिल्म से गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, और फिर आपको हम सुनवा रहे थे जवानी फिल्म का गीत आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ में, और उसके पहले आप सुन रहे थे गोरा और काला से मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। जैसा कि मैंने पहले कहा था, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म चितचोर का ये गीत यशोदास के स्वर में।
1: मैं 18 साल का था 1984 में, तो जो उस उम्र में सब करते हैं मैंने भी किया। मुझे एक आई स्टार्टेड लाइकिंग अ गर्ल, लड़की का नाम गौरी था, तो मैं उनके घर के पास जाकर या जहाँ पे नॉर्मली लवर्स मिलते हैं गार्डन्स में या डिस्कोथेक्स में या रेस्टोरेंट्स में, जाकर उनके लिए गाना गाया करता था, विच वॉज़ गौरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया बारा आके यहाँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के

विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।